सिखाई है, टीम वर्क विंस। और वीकेंड भी तभी यादगार बनता है जब अपनी गैंग के साथ हंसी, गाने और मेमोरीज शेयर की जाए। सो कीप द वाइब्स हाई एंड कीप लिसनिंग टू क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ओयोंटिका।

0: बजट। मतलब विरानी ज्वेलर्स पे एक्सक्लूसिव डिस्काउंट है सिर्फ मिर्ची लिसनर्स के लिए। 0% मेकिंग चार्जेस ऑन 22 कैरेट एंड डायमंड ज्वेलरी, और पुराना गोल्ड दो तो 100% वैल्यू मिलेगी ट्रेड इन में। सिर्फ फ्रीडम ही फ्रीडम,
1: ओनली ऑन 92.7 FM रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी। इट्स हॉट।
2: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
3: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
4: Gulabi saadi ani lali lal la. Disate me bari raja photo mazaka.
5: T-Series present The Mall 4.
6: Gulori bina chatni kaise bani?
5: Starring Ajay Devgan, Arshad Varsi, Ritesh Deshmukh and Javed Jaffrey. Directed by Indra Kumar. Releasing on the 10th of July. A complete family entertainer.
7: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए। इसीलिए लाइन मॉर्गेज असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स, आल्सो ऑफरिंग जीरो क्लोजिंग कॉस्ट रीफाइनेंस ऑप्शन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155। लॉग ऑन टू lionmtg.com।
8: लिस्नर है मैं, बैक टू बैक गाना सुनेगा,
9: बैक टू बैक गाना सुनेगा।
8: Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
10: 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
11: It's 8:30 p.m. Mirchi time check. RK Jewels. Get amazing deals on exquisite collection on wide range of flawless and stunning jewelry collection. RK Jewels. Best quality, best price.
12: Ladies and gentlemen, we are gonna go. We are gonna go. We are gonna go.
13: On a ride.

बैक वंस अगेन. फुटबॉल का रूल सिंपल है, 90 मिनट्स में कुछ भी हो सकता है. और वीकेंड का रूल एक अच्छा गाना पूरा मूड बदल सकता है. एंड दैट इज व्हाट वी डू ऑन क्लब मिर्ची. सो कीप डांसिंग, कीप स्माइलिंग, वी जस्ट गॉट स्टार्टेड. डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची, ऑल योर ओन थिंग आउट विद यू टुनाइट.

सॉल्यूशन लेस स्ट्रेस मोर बेस ऑफिशियल मेल्स मंडे देखेंगे आज सिर्फ प्लेलिस्ट सब पार्टी प्लान्स डिस्कस होगा ऑन क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची और योंतिका.

यू नो हर स्क्वाड में एक फ्रेंड होता है जो हर गोल पे कमेंट्री करता है और एक जो सिर्फ रील्स बनाता है। आप कौन सी कैटेगरी में आते हो मुझे बताना है तो आ जाओ मेरे इंस्टाग्राम पे oyontika AYANTIKA। आई एम अ बॉन्ग एंड हियर्स योर नेक्स्ट सॉन्ग ऑन क्लब मिर्ची।

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: Na chuskiyon mein, na sustiyon mein. Apni subah karein start chustiyon mein. Cricket se lekar soccer ka shor, music, masti and much more. Success aur finance ka dose, weekdays 8 se 11 har roz. News aur masti ka silsila. Mirchi Mornings with Priscilla.
2: Enjoy your golden days with Kalyan Jewelers. Get up to 50% off on making charges. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Iselin, New Jersey. Conditions apply.
3: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
1: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
3: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर
1: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
3: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इज़लिन।
4: तेरा क्या होगा कालिया?
5: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
4: अब मिर्ची खा।
6: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

Welcome back. बारिश की ठंडी हवा, फेवरेट पीपल और लाउड म्यूजिक. ऑनेस्टली इससे बेटर वीकेंड कॉम्बो एग्जिस्ट ही नहीं करता. तो शूज पहन लो या स्लिपर्स, बस ग्रूव करना मत रोकना. DJ Richard Mirchi, Oyontika, your host for the night on Club Mirchi.

कहीं शूट आउट हो या अंताक्षरी, प्रेशर सब जगह होता है। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि यहाँ मिस भी किया तो अगला गाना आपको फिर डांस करवा देगा। ऑफ कोर्स ऑन क्लब मिर्ची, डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ऑयो विद यू टुनाइट।

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: Mirchi.
2: हेलो, संदीप नागपाल जी बोल रहे हैं?
3: हाँ जी बोल रहा हूँ।
2: हाँ जी, डीडीए से बोल रहा हूँ। आपका ये ड्राफ्ट भेजना है वापस, आपने डीडीए फ्लैट के लिए अप्लाई किया था ना?
3: तो हुआ कैसे है, मतलब तो बड़ी उम्मीद थी भाई के निकलेगा हमारा।
2: अब सर ये किस्मत की बात है सर, इसमें तो कुछ कर नहीं सकते ना। अब जिसके निकल गए हैं वो लकी है सर। मैं तो बस आपसे ये कह रहा था, ये 7,500 रुपए का आपका ड्राफ्ट है जो वापस करना है, कहाँ कुरियर कर दूँ, आप आगे ले लेंगे इसको। 7,500 रुपए का?
3: अरे भाई साहब, मैंने 1.5 लाख रुपए जमा किया था, मैंने 7,000 रुपए दे रहा हूँ मुझे आप।
2: नहीं नहीं सर, ये 25,000 रुपए आपके प्रोसेसिंग फीस के कट गए।
3: किस चीज की फीस?
2: प्रोसेसिंग फीस जो आपने अप्लाई किया था ना डीडीए के फ्लैट के लिए।
3: तो भाई साहब ऐसा कहीं मेंशन नहीं था कि मैंने पहले, मतलब इसकी फीस कटेगी नहीं कटेगी?
2: सर हर चीज मेंशन नहीं करी जाती ना, मैं आपको आगे बता रहा हूँ। 50,000 रुपए आपके मशीन जो आपने बनवाई थी ना लकी ड्रॉ के लिए मशीन, उसके 50,000 रुपए कट गए आपके।
3: मतलब मेरे ड्रॉ के लिए कुछ स्पेशल मशीन बनी है क्या?
2: सर आपके ड्रॉ के लिए नहीं सर, करोड़ों की मशीन है, आपके ड्रॉ के लिए नहीं, सबके ड्रॉ के लिए बने, उसे पर्चियां डलती है बहुत सारी करोड़ों के हिसाब से, वो मशीन महंगी आती है। 20,000 रुपए आपके प्रिंटिंग के कट गए हैं, 30,000 रुपए हमारे डीडीए का लोगो चेंज हुआ है, आप लोगों की वजह से लोगो चेंज होता है, और 15,000 रुपए सिक्योरिटी के हमने काटे हैं क्योंकि सिक्योरिटी हमने लगा रखी है, कभी किसी को गुस्सा आ जाए ना। 7,500 रुपए आपके बचते हैं।
3: ये भी तुम्हें रख लो, ये हमें तुम फोन क्यों कर रहा हो?
2: ऐसे कैसे रख ले यार, आपका पैसा आपको वापस देंगे
3: हम। भाई आप ही रखो यार, आप मतलब हमें रख लो, बीच में रख लो हमें।
2: अरे यार
3: आप टूट रहे हो पब्लिक को यार।
2: तो यार ये आपको पहले सोचने चाहिए ना संदीप जी, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कर रहा ना, ये तो कम डीडीए की तरफ से। आप एक तो गुस्सा ना करें, एक सेकंड फोन आ रहा है, रुकिए रुकिए। हेलो, हाँ हाँ जी बोल रहा हूँ डीडीए से। सर आपके 5,882 रुपए बनते हैं, आके ले जाइएगा ठीक है। हाँ संदीप जी,
3: अभी अभी आप कह रहे थे ना 20,000 रुपए करने के नाम है, जो नाम लोगो चेंज करा अपना डीडीए ने।
2: आप मुझे बताइए, आप मुझे बताइए,
3: तुमने एक आम इंसान तुमने बनाया ठीक है ना। हाँ? भैया पैसे भाड़
2: मगा। आप मेरी बात सुनिए, आप वैसी टेंशन लग रहे हैं, मेरी बात सुनिए संदीप।
3: हाँ बोलो बोलो
2: संदीप, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, आप रेडियो मिर्ची पे, आपका मुर्गा बन गया है।
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अपने सपनों की ऊंचाई को छूने के लिए एम्स एजुकेशन हमेशा आपके साथ है।
5: The College of Health Sciences offers various degrees and certifications in pharmacy tech, medical billing and coding, EKG and phlebotomy, medical assistant and many more in-demand healthcare careers.
4: Get clinical experience and job assistance at the most reputed hospitals and medical centers. Training is provided online and on campus. For enrollment call 908-222-0002 or visit aimseducation.edu.
6: Enjoy your golden days with Kalyan Jewelers. Get up to 50% off on making charges. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Iselin, New Jersey. Conditions apply.
7: Tera kya hoga, Kalya?
8: Sardar, maine aapka namak khaya, Sardar.
7: Ab, mirchi kha.
9: Radio Mirchi, it's hot.
10: Ladies and gentlemen, we are gonna go!
9: On a ride.
11: Club Mirchi.

हेलो पार्टी स्क्वाड, गोल सेलिब्रेट करने का एक तरीका स्टेडियम में होता है और दूसरा डांस फ्लोर पे. हम सेकंड वाला चूज करते हैं. क्लब मिर्ची रेडी फॉर अनदर बैंगर. डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ऑल योर टुगेदर बेबी.

देख न जाए कोई खागी शिवाओं की ओ साकी साकी ने साकी साकी आपस आओ देख न जाए कोई खागी शिवाओं की।

0: मतलब विरानी ज्वेलर्स पे एक्सक्लूसिव डिस्काउंट है सिर्फ मिर्ची लिसनर्स के लिए। 0% मेकिंग चार्जेस ऑन 22 कैरेट एंड डायमंड ज्वेलरी, और पुराना गोल्ड दो तो 100% वैल्यू मिलेगी ट्रेड इन में। सिर्फ फ्रीडम ही फ्रीडम,
1: ओनली ऑन 92.7 FM रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी। इट्स हॉट।
2: Enjoy your golden days with Kalyan Jewelers. Get up to 50% off on making charges. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Iselin, New Jersey. Conditions apply.
3: Ladies and gentlemen, we are gonna go, we are gonna go, we are gonna go
4: on a ride.
5: Club Mirchi.

हम हो सकता है अगला गाना वही बन जाए आपके लिए। डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची और योंतिका एक साथ, दिस इज क्लब मिर्ची बेबी।

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है।
2: कोहली गोज डाउन द ग्राउंड, कोहली गोज आउट ऑफ द ग्राउंड।
1: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
3: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
1: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर वन, सिर्फ एक ही होता है,
4: एक ही होता है।
1: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिस्नरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।
5: लेडीज एंड जेंटलमैन,

वीकेंड ऑफिशियली तब शुरू होता है जब वॉल्यूम बटन ऊपर जाता है, तो स्पीकर्स रेडी रखिए क्योंकि क्लब मिर्ची की पार्टी अभी तो बस वार्म अप ही कर रही थी। डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ऑन टुगेदर।

वीकेंड की सबसे बड़ी ट्रॉफी क्या है पता है? मंडे को ये कह पाना, बॉस वीकेंड वाज वर्थ इट। तो छोड़ो सारी टेंशन और चलो नेक्स्ट ट्रैक के साथ सेलिब्रेशन कंटिन्यू करते हैं ऑन क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ओयंतिका।

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: Mirchi.
2: हेलो हेलो बेटा नवनीत,
3: आप कौन?
2: पापा कहाँ हैं?
3: पापा तो बाहर हैं, आप बताइए।
2: बेटा ऐसा है, आपके पापा और मैं हम बचपन से बड़े अच्छे दोस्त हैं। मेरे को बता रहा था आशीष, आपके पापा ने बताया था मेरे को कि बेटा है, उससे बात कर लेना फोन पे, कभी उससे पूछ लेना। मेरे को आपके पापा ने कहा था कि मेरा बेटा कभी कभी शरारत भी करता है, चलो हर बच्चा कर देता है, लेकिन आशीष दिल का बड़ा अच्छा है, क्योंकि मेरे बचपन का दोस्त है ना आपका पापा, वो किसी को डांट नहीं सकता। अच्छा बेटा, तुम्हारे पापा ने मेरे से ये कहा था आशीष ने कि तू ना नवनीत को फोन कर लियो, क्योंकि वो तो कभी डांटता नहीं है आपको किसी बात पे। तो अभी अभी आपके पास एक मिनट है क्या?
3: लेकिन आपको काम क्या है?
2: बस एक मिनट तक मेरे को आपको डांटना था।
3: पापा ने कहा था?
2: चुप कर। पापा ने कहा था मेरे दोस्त का पीछा ले रखा है तूने, उठा के पटक के रख दूंगा, बता रहा हूँ मैं तेरे को।
3: क्या हुआ अंकल?
2: बेटा आपके पापा ने कहा था मेरे से कि वो टाइम पे वो निकल गए हैं, उनको कुछ जरूरी काम था, आपको डांटने का दिल कर रहा था तो वो डांट नहीं पाए, तो मेरे से कहा था आप डांट देना मेरे, तो दोस्त है ना हम आपस में।
3: अब मुझे क्यों डांट?
2: चुप कर।
3: किस तरह बात कर रहे हैं मेरे से? आप मेरी बात सुनो, मैं पापा से बात कर लूँ।
2: पापा से बात करेगा दांत तोड़ दूंगा, ऐसे बैठे बैठे पापा की तरफ से डांट रहा हूँ मैं। क्यों कर रहा था तूने?
3: पापा को ऐसे किस बात का बुरा? मुझे ये भी नहीं
2: पापा को किस बात का बुरा लगा, इससे मेरे को क्या लेना देना है। असल में पापा आपके बड़े बिजी हैं आज, तो मेरे को मैसेज किया था उन्होंने कि वह उसको डांट देना।
3: लेकिन बुरी क्या
2: लगी? अंकल देखो एक मारूंगा।
3: बदतमीजी क्या करी
2: थी? ये अपने पापा से पूछना ना, मैं आपके बीच में क्यों पढ़ूं?
3: कह रहा हूँ मैंने कोई ऐसी बदतमीजी की नहीं इन दिनों में।
2: एक मरना घुमा के मैंने की नहीं।
3: ठीक है, मैंने वो भी कर लिया, मैं बदमाशी।
2: ठीक है, मेरे साथ बोल कुकड़ू को बेटे।
3: क्या बोलूं?
4: नवनीत कुकड़ू को बोलो मैं रेडियो मिर्ची से नवनीत बोल रहा हूँ, तुम्हारे पापा ने मुझे तुम्हारा नंबर दिया था, तुम रेडियो मिर्ची पे।
3: आपको पापा ने ऐसे कब बताया था मेरा मुर्गा बनाने को?
2: चुप कर, मारूंगा घुमा के। पापा ने कब बताया था मुर्गा बनाने को?
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।
6: ये पटा।
5: लिस्नर में बैक टू बैक गाना सुनेगा। लिस्नर में बैक टू बैक गाना सुनेगा।

बैक वंस अगेन. फुटबॉल का रूल सिंपल है, 90 मिनट्स में कुछ भी हो सकता है. और वीकेंड का रूल, एक अच्छा गाना पूरा मूड बदल सकता है. एंड दैट इज व्हाट वी डू ऑन क्लब मिर्ची. सो कीप डांसिंग, कीप स्माइलिंग, वी जस्ट गॉट स्टार्टेड. डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची, ऑल योर ओन थिंग आउट विद यू टुनाइट.

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: आ जाओ आ जाओ, आगरा वाले, दिल्ली वाले, मुंबई वाले, चेन्नई वाले, इंदौर वाले, जो भी जहां से भी है, सबके लिए डिस्काउंट है, डिस्काउंट।
2: श्योर स्ट्रीट वाला है, पर ऑफर एलीट वाला है। रास्ता चाहे जो हो, मंजिल है विरानी ज्वेलर्स, क्योंकि वहां मिल रहा है 0% मेकिंग चार्जेस ऑन 22 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी।
3: विजिट viranijewelers.com, गेट द मैक्सिमम आउट ऑफ मिर्ची फ्रीडम फेस्टिवल फ्रॉम 4 जुलाई इंडिपेंडेंस डे टिल ऑगस्ट 15th इंडिपेंडेंस डे। सिर्फ फ्रीडम ही फ्रीडम,
4: ओनली ऑन 92.7 FM, रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी। इट्स हॉट।
5: तेरा क्या होगा कालिया?
6: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार।
5: अब मिर्ची खा।
7: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
8: लेडीज एंड जेंटलमैन,

Welcome back. बारिश की ठंडी हवा, फेवरेट पीपल और लाउड म्यूजिक. ऑनेस्टली इससे बेटर वीकेंड कॉम्बो एग्जिस्ट ही नहीं करता. तो शूज पहन लो या स्लिपर्स, बस ग्रूव करना मत रोकना. DJ Richard Mirchi, I'm your host for the night on Club Mirchi.

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
2: लेडीज एंड जेंटलमैन, वी आर गोना गो।

एंड क्लब मिर्ची में एक ही स्ट्रेटजी चलता है, गुड वाइब्स ओनली. मैच का स्कोर जो भी हो, टुनाइट एवरीवन इज विनिंग बिकॉज द प्लेलिस्ट इज एब्सोल्युटली ऑन फायर थैंक्स टू डीजे रिचर्ड. आई एम योर होस्ट मिर्ची ऑन योर ओन थिंग एंड दिस इज क्लब मिर्ची. द साउंड ऑफ द फ्यूचर इज हियर.

वीकेंड की बारिश वाली रात और दोस्तों का साथ, बस एक चीज मिसिंग है, थोड़ा और वॉल्यूम। तो स्पीकर्स को काम पे लगाइए, क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ऑयोंटिकास इन फुल प।

अगर मिर्ची ओयोंतिका की दुनिया का हिस्सा बनना है तो कम से हाय टू बी ऑन माय सोशल मीडिया हैंडल्स. नाम की स्पेलिंग है AYANTIKA. रेडियो के बाहर भी स्टोरीज, फन मोमेंट्स, बिहाइंड द माइक लाइफ और लोड्स ऑफ लव आपका वेट कर रहे हैं. लेट्स कनेक्ट. दिस इज क्लब मिर्ची.

हेलो पार्टी स्क्वाड, गोल सेलिब्रेट करने का एक तरीका स्टेडियम में होता है और दूसरा डांस फ्लोर पे। हम सेकंड वाला चूज करते हैं। क्लब मिर्ची रेडी फॉर अनदर बैंगर। डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ऑन योर टिकट।

जाए कोई खागी शिवाओं की ओ साकी सागी रे साकी सागी आपस आ न जाए कोई खागी शिवाओं की।

छोटा सा रिमाइंडर, बारिश में रोड्स स्लिपरी होते हैं, स्पीड थोड़ी कम रखिए, हेडलाइट्स ऑन रखिए, सेफ डिस्टेंस मेंटेन कीजिए। वीकेंड तभी परफेक्ट है जब आप और आपके अपने सेफली घर पहुंच जाए। माइंड द रोड्स एंड वी माइंड द म्यूजिक ऑन क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड।

दिया जानम समझा करो जानम समझा करो जानम समझा करो जानम समझा

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: Mirchi.
2: हेलो
3: हेलो
2: हाँ बोलो कौन
3: हेलो इधर से बोल रहा हूँ आपने बोला था ये अपना सीवर साफ करने के लिए
2: हाँ बोल कौन रहा है
3: बोल कौन रहे हो कंप्लेंट करी थी आपने सीवर साफ करने की नीचे से बोल रहा हूँ आपके सीवर में घुसा पड़ा हूँ
2: बोल कौन रहे हो
3: आपने बोला था ये अपना सीवर साफ करने के लिए
2: हाँ बोला था
3: ओ भैया मेरी जान को बचाओ यहाँ पे बहुत गहरा है यार आप लोग खाते क्या हो कितना गहरा कर दिया आपने
2: तो पूछ के घुसे थे क्या अंदर
3: ज्यादा सवाल मत करो मेरी बात सुनो सिर्फ
2: हाँ बोलो
3: यार आपके टॉयलेट पे अपनी कोई बैठा के क्या क्या फेंक रहा है यार ऊपर से बंद करो सर ओ भैया मेरी जान को बचाओ यहाँ पे बहुत गहरा है यार आप लोग खाते क्या हो कितना गहरा कर दिया आपने
2: कौन बोल रहा है कहाँ घुस गए यार
3: हेलो इधर से बोल रहा हूँ आपने बोला था ये अपना सीवर साफ करने के लिए
2: हाँ हाँ बोला था हुआ क्या है कुछ तो बताओ
3: ज्यादा सवाल मत करो मेरी बात सुनो सिर्फ यार आपके टॉयलेट पे अपनी कोई बैठा के क्या क्या फेंक रहा है यार ऊपर से बंद करो सर
2: कब आया था कब घुसा अंदर
3: फिर सवाल यार मैं यहाँ पे अटका पड़ा हूँ मुझे बाहर निकालो यार कैसे भी करके
2: तू कहाँ से रहा है तो नहीं हो गया है
3: सीवर साफ करने की कंप्लेंट करी थी नीचे घुसा पड़ा हूँ आपके सीवर में बाहर निकालो यार
2: मैं तो इधर ऑफिस में हूँ अपने
3: ऑफिस क्यों गए सीवर साफ करवाना था मैं तो यहाँ पे घुसा पड़ा हूँ ना अंदर
2: मेरी सीवर में घुसा है किसी और की सीवर में घुस गया
3: ये बदबू से पता चल रहा है सीवर तेरा ही है यार
2: सीवर में मरा रहा है तू
3: गाली तो मत दो
2: हेलो
3: हेलो
2: फिर फोन कर दिया तूने
3: अच्छा है सीवर साफ हो जाएगा काम करो एक चीज बोलो
2: क्या बोलो
3: कुकुलुकु
4: सर आई एम सो सॉरी मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ मुझे किसी ने बताया था कि आपने सीवर साफ करने की कंप्लेंट करी थी आप रेडियो मिर्ची पे हैं और आपका मुर्गा बन गया
2: कुकुलुकु
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
6: तेरा क्या होगा कालिया
7: सरदार मैंने आपका नमक खाया सरदार
6: अब मिर्ची खा
8: रेडियो मिर्ची इट्स हॉट
9: लेडीज एंड जेंटलमैन वी आर गोना गो वी आर गोना गो वी आर गोना गो
8: ऑन अ राइड
0: क्लब मिर्ची

भी जरूर कीजिए, लेकिन अगर ड्रिंक किया है तो स्टीयरिंग व्हील को टच भी नहीं करना। डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ओयंतिका आपके साथ ऑन क्लब मिर्ची। कैब बुक कीजिए, डेजिग्नेटेड ड्राइवर चूज कीजिए या किसी दोस्त का हेल्प लीजिए। एक स्मार्ट डिसीजन पूरी रात को हैप्पी एंडिंग देता है, रिमेम्बर दैट।

0: बजट मतलब विरानी ज्वेलर्स पे एक्सक्लूसिव डिस्काउंट है सिर्फ मिर्ची लिसनर्स के लिए 0% मेकिंग चार्जेस ऑन 22 कैरेट एंड डायमंड ज्वेलरी और पुराना गोल्ड दो तो 100% वैल्यू मिलेगी ट्रेड इन में सिर्फ फ्रीडम ही फ्रीडम
1: ओनली ऑन 92.7 FM रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी इट्स हॉट रेडियो मिर्ची इट्स हॉट 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
2: Ladies and gentlemen, we are gonna go. We are gonna go. We are gonna go
3: on a ride.
4: Club Mirchi with Oyon Deka and DJ Richard. Only.

दोस्तों, अगर आप घर पे हो तो लिविंग रूम को स्टेडियम बना दो, और अगर ड्राइव कर रहे हो तो गाड़ी के स्पीकर्स को कॉन्सर्ट बना दो। वीकेंड सिर्फ दो दिन का होता है, एनर्जी अनलिमिटेड होनी चाहिए। दिस इज क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची और योंतिका। लेट्स रोल एंड

सिखाई है, टीम वर्क विंस। और वीकेंड भी तभी यादगार बनता है जब अपनी गैंग के साथ हंसी, गाने और मेमोरीज शेयर की जाए। सो कीप द वाइब्स हाई एंड कीप लिसनिंग टू क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ऑयोंटिका।

बैक वंस अगेन. फुटबॉल का रूल सिंपल है, 90 मिनट्स में कुछ भी हो सकता है. और वीकेंड का रूल एक अच्छा गाना पूरा मूड बदल सकता है. एंड दैट इज व्हाट वी डू ऑन क्लब मिर्ची. सो कीप डांसिंग, कीप स्माइलिंग, वी जस्ट गॉट स्टार्टेड. डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ऑल योर ओन थिंग आउट विद यू टुनाइट.

बस दोस्तों, आज की पार्टी यही फुल टाइम विसल लेती है। डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ऑयोन थे आपके साथ। फुटबॉल का जोश, वीकेंड का स्वैग और म्यूजिक की ये एनर्जी हमेशा साथ रखिए। सेफ रहिए, रिस्पॉन्सिबली सेलिब्रेट कीजिए, बारिश का मजा लीजिए और याद रखिए, डू नॉट ड्रिंक एंड ड्राइव। अगले वीकेंड फिर मिलेंगे और फिर मचाएंगे फुल ऑन हंगामा। टिल देन कीप द म्यूजिक लाउड, द स्माइल्स लाउडर। दिस इज योर होस्ट मिर्ची ऑयोन थे साइनिंग ऑफ फॉर द वीकेंड। टाटा।

चीज कॉमन है, दोनों लैंग्वेज नहीं इमोशन समझते हैं. डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची और योंतिका विद यू टुनाइट ऑन क्लब मिर्ची. तो चाहे आप मेसी फैन हो, हालन फैन हो या बस गुड म्यूजिक का फैन, अगला गाना सबके लिए है.

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: Mirchi.
2: Uskabana, uskabana, sakabana. Murga, murga. Navid wala murga.
1: Mirchi, murga.
3: हेलो
4: हेलो बेटा नवनीत,
3: आप कौन?
4: पापा कहाँ हैं?
3: पापा तो बाहर हैं, आप बताइए।
4: बेटा ऐसा है, आपके पापा और मैं, हम हाँ। बचपन से बड़े अच्छे दोस्त हैं। मेरे को बता रहा था आशीष, आपके पापा ने बताया था मेरे को कि बेटा है, उससे बात कर लेना फोन पे, कभी उससे पूछ लेना। मेरे को आपके पापा ने कहा था कि मेरा बेटा कभी कभी शरारत भी करता है, चलो हर बच्चा कर देता है, लेकिन आशीष दिल का बड़ा अच्छा है, क्योंकि मेरे बचपन का दोस्त है ना आपका पापा, वो किसी को डांट नहीं सकता। अच्छा बेटा, तुम्हारे पापा ने मेरे से ये कहा था आशीष ने कि तू ना नवनीत को फोन कर लियो, क्योंकि वो तो कभी डांटता नहीं है आपको किसी बात पे। तो अभी अभी आपके पास एक मिनट है क्या?
3: लेकिन आपको काम क्या है?
4: बस एक मिनट तक मेरे को आपको डांटना था।
3: पापा ने कहा था?
4: चुप कर। पापा ने कहा था मेरे दोस्त का पीछा ले रखा है तूने, उठा के पटक के रख दूंगा, बता रहा हूँ मैं तेरे को।
3: क्या हुआ अंकल?
4: बेटा आपके पापा ने कहा था मेरे से कि वो टाइम पे वो निकल गए हैं, उनको कुछ जरूरी काम था, आपको डांटने का दिल कर रहा था तो वो डांट नहीं पाए, तो मेरे से कहा था आप डांट देना मेरे, तो दोस्त है ना हम आपस में।
3: अब मुझे क्यों डांट?
4: चुप कर।
3: किस तरह बात कर रहे हैं मेरे से? आप मेरी बात सुनो, मैं पापा से बात कर लूँ।
4: पापा से बात करेगा दांत तोड़ दूंगा, ऐसे बैठे बैठे पापा की तरफ से डांट रहा हूँ मैं। क्यों कर रहा था तूने?
3: पापा को ऐसे किस बात का बुरा? मुझे ये भी नहीं
4: पापा को किस बात का बुरा लगा, इससे मेरे को क्या लेना देना है। असल में पापा आपके बड़े बिजी हैं आज, तो मेरे को मैसेज किया था उन्होंने कि वह उसको डांट देना।
3: लेकिन
4: अंकल कल देखो एक मारूंगा।
3: बदतमीजी क्या करी
4: थी? ये अपने पापा से पूछना ना, मैं आपके बीच में क्यों पढ़ूं?
3: कह रहा हूँ मैंने कोई ऐसी बदतमीजी की नहीं इन दिनों में।
4: एक मरना घुमा के मैंने की नहीं।
3: ठीक है, मैंने वो भी कर लिया, मैं बदमाशी।
4: ठीक है, मेरे साथ बोल कुकड़ू को बेटे।
3: क्या बोलूं?
5: नवनीत कुकड़ू को बोलो मैं रेडियो मिर्ची से नवनीत बोल रहा हूँ, तुम्हारे पापा ने मुझे तुम्हारा नंबर दिया था, तुम रेडियो मिर्ची पे।
3: आपको पापा ने ऐसे कब बताया था मेरा मुर्गा बनाने को?
4: चुप कर, मारूंगा घुमा के। पापा ने कब बताया था मुर्गा बनाने को?
1: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट। ये पटा
6: तेरा क्या होगा कालिया?
7: सरदार मैंने आपका नमक खाया सरदार,
6: अब मिर्ची खा।
8: Radio Mirchi, it's hot.
9: Ladies and gentlemen, we are gonna go, we are gonna go, we are gonna go.
8: On a ride.
0: Club Mirchi.

0: मतलब विरानी ज्वेलर्स पे एक्सक्लूसिव डिस्काउंट है सिर्फ मिर्ची लिसनर्स के लिए। 0% मेकिंग चार्जेस ऑन 22 कैरेट एंड डायमंड ज्वेलरी, और पुराना गोल्ड दो तो 100% वैल्यू मिलेगी ट्रेड इन में। सिर्फ फ्रीडम ही फ्रीडम,
1: ओनली ऑन 92.7 FM रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी। इट्स हॉट
2: लेडीज एंड जेंटलमैन, वी आर गोना गो, वी आर गोना गो, वी आर गोना गो ऑन अ राइड।

बैक वंस अगेन. फुटबॉल का रूल सिंपल है, 90 मिनट्स में कुछ भी हो सकता है. और वीकेंड का रूल एक अच्छा गाना पूरा मूड बदल सकता है. एंड दैट इज व्हाट वी डू ऑन क्लब मिर्ची. सो कीप डांसिंग, कीप स्माइलिंग, वी जस्ट गॉट स्टार्टेड. डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची, ऑल योर ओन थिंग आउट विद यू टुनाइट.

सॉल्यूशन लेस स्ट्रेस मोर बेस ऑफिशियल मेल्स मंडे देखेंगे आज सिर्फ प्लेलिस्ट सब पार्टी प्लान्स डिस्कस होगा ऑन क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची और योंतिका.

हर स्क्वाड में एक फ्रेंड होता है जो हर गोल पे कमेंट्री करता है और एक जो सिर्फ रील्स बनाता है। आप कौन सी कैटेगरी में आते हो मुझे बताना है तो आ जाओ मेरे इंस्टाग्राम पे ओयोंतिका AYANTIKA। आई एम अ बॉन्ग एंड हियर्स योर नेक्स्ट सॉन्ग ऑन क्लब मिर्ची।

Welcome back. बारिश की ठंडी हवा, फेवरेट पीपल और लाउड म्यूजिक. ऑनेस्टली इससे बेटर वीकेंड कॉम्बो एग्जिस्ट ही नहीं करता. तो शूज पहन लो या स्लीपर्स, बस ग्रूव करना मत रोकना. DJ Richard Mirchi, on your host for the night on Club Mirchi.

हेलो पार्टी स्क्वाड, गोल सेलिब्रेट करने का एक तरीका स्टेडियम में होता है और दूसरा डांस फ्लोर पे। हम सेकंड वाला चूज करते हैं। क्लब मिर्ची रेडी फॉर अनदर बैंगर। डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ऑन द कट।

जगत न जाए कोई खाई शिवांगी ओ साकी साकी ने साकी साकी आपस आवे न जाए कोई खाई शिवांगी।

छोटा सा रिमाइंडर, बारिश में रोड्स स्लिपरी होते हैं, स्पीड थोड़ी कम रखिए, हेडलाइट्स ऑन रखिए, सेफ डिस्टेंस मेंटेन कीजिए। वीकेंड तभी परफेक्ट है जब आप और आपके अपने सेफली घर पहुंच जाए। माइंड द रोड्स एंड वी माइंड द म्यूजिक ऑन क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची।

Jana sam chakaro, jana sam chakaro, jana sam chakaro.

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है।
2: कोहली गोज डाउन द ग्राउंड, कोहली गोज आउट ऑफ द ग्राउंड।
1: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
3: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
1: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर वन, सिर्फ एक ही होता है,
4: एक ही होता है।
1: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिसनरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।

अगेन क्लब मिर्ची में एक ही स्ट्रेटजी चलता है, गुड वाइब्स ओनली. मैच का स्कोर जो भी हो, टुनाइट एवरीवन्स विनिंग बिकॉज़ द प्लेलिस्ट इज एब्सोल्युटली ऑन फायर थैंक्स टू डीजे रिचर्ड. आई एम योर होस्ट मिर्ची ऑन योर ओन टिका एंड दिस इज क्लब मिर्ची.

कोई शूट आउट हो या अंताक्षरी, प्रेशर सब जगह होता है। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि यहाँ मिस भी किया तो अगला गाना आपको फिर डांस करवा देगा। ऑफ कोर्स ऑन क्लब मिर्ची, डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ऑयो, दे गा विद यू टुनाइट।

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: Mirchi. Iskabana, uskabana, sakabana. Rabana. Burga, burga. La vieja la burga. Mirchi, burga.
2: Hello.
3: हेलो, संदीप नागपाल जी बोल रहे हैं?
2: हाँ जी बोल रहा हूँ।
3: हाँ जी, डीडीए से बोल रहा हूँ। आपका ये ड्राफ्ट भेजना है वापस, आपने डीडीए फ्लैट के लिए अप्लाई किया था ना?
2: तो हुआ कैसे है, मतलब हमें तो बड़ी उम्मीद थी भाई के निकलेगा हमारा।
3: अब सर ये किस्मत की बात है सर, इसमें तो कुछ कर नहीं सकते ना। अब जिसके निकल गए हैं वो लकी है सर। मैं तो बस आपसे ये कह रहा था, ये 7,500 रुपए का आपका ड्राफ्ट है जो वापस करना है, कहाँ कुरियर कर दूँ, आप आगे ले लेंगे इसको।
2: मेरा
3: 7,500 रुपए का।
2: अरे भाई साहब, मैंने 1.5 लाख जमा किया था, मैंने 7,000 रुपए दे रहा हूँ मुझे आप।
3: नहीं नहीं सर, ये 25,000 रुपए आपके प्रोसेसिंग फीस के कट गए।
2: किस चीज की फीस?
3: प्रोसेसिंग फीस जो आपने अप्लाई किया था ना डीडीए के फ्लैट के लिए।
2: तो भाई साहब ऐसा कहीं मेंशन नहीं था कि मतलब इसके फीस कटेगी नहीं कटेगी?
3: सर हर चीज मेंशन नहीं करी जाती ना, मैं आपको आगे बता रहा हूँ। 50,000 रुपए आपके मशीन जो आपने बनवाई थी ना लकी ड्रॉ के लिए मशीन, उसके 50,000 रुपए कट गए आपके।
2: मतलब मेरे ड्रॉ के लिए कुछ स्पेशल मशीन बनी है क्या?
3: सर आपके ड्रॉ के लिए नहीं है सर, करोड़ों की मशीन है आपके ड्रॉ के लिए, सबके ड्रॉ के लिए बने हैं, उसे पर्चियां डलती है बहुत सारी करोड़ों के हिसाब से, वो मशीन महंगी आती है। 20,000 रुपए आपके प्रिंटिंग के कट गए हैं, 30,000 रुपए हमारे डीडीए का लोगो चेंज हुआ है, आप लोगों की वजह से लोगो चेंज होता है, और 15,000 रुपए सिक्योरिटी के हमने काटे हैं क्योंकि सिक्योरिटी हमने लगा रखी है, कभी किसी को गुस्सा आ जाए ना। 7,500 रुपए आपके बचते हैं।
2: ये भी तुम्हें रख लो, ये हमें तुम फोन क्यों कर रहा हो?
3: ऐसे कैसे रख ले यार, आपका पैसा आपको वापस देंगे
2: हम। भाई आप ही रखो यार, आप मतलब हमें ज्यादा रख लो, बीच में रख लो हमें ज्यादा।
3: अरे यार
2: आप टूट रहे हो पब्लिक को यार।
3: तो यार ये आपको पहले सोचने चाहिए ना संदीप जी, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कर रहा ना, ये तो कम डीडीए की तरफ से। आप एक तो गुस्सा ना करें, एक सेकंड फोन आ रहा है, रुकिए रुकिए। हेलो, हाँ हाँ जी बोल रहा हूँ डीडीए से। सर आपके 5,882 रुपए बनते हैं, आके ले जाइएगा ठीक है। हाँ संदीप जी, आप मुझे बताइए, आप मुझे
2: तुमने आम संगत तुमने बनाया ठीक है ना।
3: हाँ
2: भैया पैसे भाड़ मगा,
3: आप मेरी बात सुनिए, आप वैसी टेंशन लग रहे हैं, मेरी बात सुनिए संदीप।
2: हाँ बोलो बोलो
4: संदीप, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, आप रेडियो मिर्ची पे हैं, आपका मुर्गा बन गया है।
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। ए पगला,
6: तेरा क्या होगा कालिया?
7: सरदार मैंने आपका नमक खाया सरदार,
6: अब मिर्ची खा।
5: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
8: लेडीज एंड जेंटलमैन,

हेलो पार्टी स्क्वाड, गोल सेलिब्रेट करने का एक तरीका स्टेडियम में होता है और दूसरा डांस फ्लोर पे. हम सेकंड वाला चूज करते हैं. उन क्लब मिर्ची रेडी फॉर अनदर बैंगर. डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ऑल योर टेक आउट टुगेदर बेबी.

0: मतलब विरानी ज्वेलर्स पे एक्सक्लूसिव डिस्काउंट है सिर्फ मिर्ची लिसनर्स के लिए। 0% मेकिंग चार्जेस ऑन 22 कैरेट एंड डायमंड ज्वेलरी, और पुराना गोल्ड दो तो 100% वैल्यू मिलेगी ट्रेड इन में। सिर्फ फ्रीडम ही फ्रीडम,
1: ओनली ऑन 92.7 FM रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी। इट्स हॉट।
2: लिस्नर है मैं, बैक टू बैक गाना सुनेगा,
3: बैक टू बैक गाना सुनेगा।
2: Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
4: 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
5: Ladies and gentlemen.

एक मेमोरी होता है और हर वीकेंड का एक एंथम हो सकता है अगला गाना वही बन जाए आपके लिए। डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची और योंतिका एक साथ, दिस इज क्लब मिर्ची बेबी।

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: Na chuskiyon mein, na sustiyon mein. Apni subah karein start chustiyon mein. क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर. सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज. न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला.
2: तेरा क्या होगा कालिया?
3: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार.
2: अब मिर्ची खा.
4: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट.
5: Ladies and gentlemen, we are gonna go, we are gonna go, we are gonna go
4: on a ride.
0: Club Mirchi.

वीकेंड ऑफिशियली तब शुरू होता है जब वॉल्यूम बटन ऊपर जाता है, तो स्पीकर्स रेडी रखिए क्योंकि क्लब मिर्ची की पार्टी अभी तो बस वार्म अप ही कर रही थी। डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ऑन योंटिका टुगेदर।

एक मेमोरी होता है और हर वीकेंड का एक एंथम हो सकता है अगला गाना वही बन जाए आपके लिए। डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची और योंती का एक साथ, दिस इज क्लब मिर्ची बेबी।

बड़ी ट्रॉफी क्या है पता है, मंडे को ये कह पाना बॉस वीकेंड वाज वर्थ इट। तो छोड़ो सारी टेंशन और चलो नेक्स्ट ट्रैक के साथ सेलिब्रेशन कंटिन्यू करते हैं ऑन क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ओयंतिका।

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: Mirchi.
2: हेलो
3: हेलो
2: हाँ बोलो कौन
3: हेलो इधर से बोल रहा हूँ आपने बोला था ये अपना सीवर साफ करने के लिए
2: हाँ बोल कौन रहा है
3: बोल कौन रहे हो कंप्लेन करी थी आपने सीवर साफ करने की नीचे से बोल रहा हूँ आपके सीवर में घुसा पड़ा हूँ
2: बोल कौन रहे हो
3: आपने बोला था ये अपना सीवर साफ करने के लिए
2: हाँ बोला था
3: ओ भैया मेरी जान को बचाओ यहाँ पे बहुत गहरा है यार आप लोग खाते क्या हो कितना गहरा कर दिया आपने
2: तो पूछ के घुसे थे क्या अंदर
3: ज्यादा सवाल मत करो मेरी बात सुनो सिर्फ
2: हाँ बोलो
3: यार आपके टॉयलेट पे अपनी कोई बैठा के क्या क्या फेंक रहा है यार ऊपर से बंद करो सर ओ भैया मेरी जान को बचाओ यहाँ पे बहुत गहरा है यार आप लोग खाते क्या हो कितना गहरा कर दिया आपने
2: कौन बोल रहा है कहाँ घुस गए यार
3: हेलो इधर से बोल रहा हूँ आपने बोला था ये अपना सीवर साफ करने के लिए
2: हाँ हाँ बोला था हुआ क्या है कुछ तो बताओ
3: ज्यादा सवाल मत करो मेरी बात सुनो सिर्फ यार आपके टॉयलेट पे अपनी कोई बैठा के क्या क्या फेंक रहा है यार ऊपर से बंद करो सर
2: कब आया था कब घुसा अंदर
3: फिर सवाल यार मैं यहाँ पे अटका पड़ा हूँ मुझे बाहर निकालो यार कैसे भी करके
2: तू कहाँ से रहा है नहीं हो गया है
3: सीवर साफ करने की कंप्लेंट करी थी नीचे घुसा पड़ा हूँ आपके सीवर में बाहर निकालो यार
2: मैं तो इधर ऑफिस में हूँ अपने
3: ऑफिस क्यों गए सीवर साफ करवाना था मैं तो यहाँ पे घुसा पड़ा हूँ ना अंदर
2: मेरी सीवर में घुसा है किसी और के सीवर में घुस गया
3: ये बदबू से पता चल रहा है सीवर तेरा ही है यार
2: सीवर में मरा रहा है तू
3: गाली तो मत दो
2: हेलो
3: हेलो
2: फिर फोन कर दिया तूने
3: अच्छा है सीवर साफ हो जाएगा काम करो एक चीज बोलो
2: क्या बोलो
3: कुकड़ुकू
4: सर आई एम सो सॉरी मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ मुझे किसी ने बताया था कि आपने सीवर साफ करने की कंप्लेंट करी थी आप रेडियो मिर्ची पे हैं और आपका पुरका बन गया
2: कुकड़ुकू
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
6: ये पकड़ा लेडीज एंड जेंटलमैन

बैक वंस अगेन. फुटबॉल का रूल सिंपल है, 90 मिनट्स में कुछ भी हो सकता है. और वीकेंड का रूल एक अच्छा गाना पूरा मूड बदल सकता है. एंड दैट इज व्हाट वी डू ऑन क्लब मिर्ची. सो कीप डांसिंग, कीप स्माइलिंग, वी जस्ट गॉट स्टार्टेड. डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची, ऑल योर ओन थिंग आउट विद यू टुनाइट.

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: ताज़ा खबर देसी न्यूज विदेशी न्यूज पड़ोसी की न्यूज ब्रेकिंग न्यूज ले लो।
2: श्योर स्ट्रीट वाला है पर ऑफर एलीट वाला है क्योंकि सबसे बड़ी खबर है विरानी ज्वेलर्स स्पेशल फ्रीडम सेल। पुराना गोल्ड लाओ और 100% एक्सचेंज वैल्यू ले जाओ। नो लॉस ओनली प्रॉफिट।
3: विजिट viraniJewelers.com। गेट द मैक्सिमम आउट ऑफ मिर्ची फ्रीडम फेस्टिवल फ्रॉम 4 जुलाई इंडिपेंडेंस डे टिल ऑगस्ट 15th इंडिपेंडेंस डे। सिर्फ फ्रीडम ही फ्रीडम
4: ओनली ऑन 92.7 FM रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी। इट्स हॉट।
5: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है।
6: कोहली गोज डाउन द ग्राउंड, कोहली गोज आउट ऑफ द ग्राउंड।
5: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
7: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
5: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर 1, सिर्फ एक ही होता है,
8: एक ही होता है।
5: जैसे USA की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिस्नरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर 1 साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची। बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।
9: लेडीज एंड जेंटलमैन, वी आर गोना गो, वी आर गोना गो, वी आर गोना गो ऑन अ राइड।

Welcome back. बारिश की ठंडी हवा, फेवरेट पीपल और लाउड म्यूजिक. ऑनेस्टली इससे बेटर वीकेंड कॉम्बो एग्जिस्ट ही नहीं करता. तो शूज पहन लो या स्लिपर्स, बस ग्रूव करना मत रोकना. DJ Richard Mirchi, Ayon Thika, your host for the night on

एंड क्लब मिर्ची में एक ही स्ट्रेटजी चलता है, गुड वाइब्स ओनली. मैच का स्कोर जो भी हो, टुनाइट एवरीवन्स विनिंग बिकॉज द प्लेलिस्ट इज एब्सोल्युटली ऑन फायर थैंक्स टू डीजे रिचर्ड. आई एम योर होस्ट मिर्ची ओयोंतिका एंड दिस इज क्लब मिर्ची. द साउंड ऑफ द फ्यूचर इज हियर.

वीकेंड की बारिश वाली रात और दोस्तों का साथ, बस एक चीज मिसिंग है, थोड़ा और वॉल्यूम। तो स्पीकर्स को काम पे लगाइए। क्लब मिर्ची विद डीजे मिर्ची और मिर्ची ऑन द गाइस इन

ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਨਸ਼ਾ ਤੇਰੀ ਅੱਖ

लिसनर में बैक टू बैक गाना सुनेगा, बैक टू बैक गाना सुनेगा। Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot. Yeah.

0: बजट मतलब विरानी ज्वेलर्स पे एक्सक्लूसिव डिस्काउंट है सिर्फ मिर्ची लिसनर्स के लिए 0% मेकिंग चार्जेस ऑन 22 कैरेट एंड डायमंड ज्वेलरी और पुराना गोल्ड दो तो 100% वैल्यू मिलेगी ट्रेड इन में सिर्फ फ्रीडम ही फ्रीडम
1: ओनली ऑन 92.7 FM रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी इट्स हॉट

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

0: 92.7 FM. Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
1: तेरा क्या होगा कालिया?
2: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार.
1: अब मिर्ची खा.
3: Radio Mirchi. It's hot.

0: आगरा वाले, आगरा वाले, दिल्ली वाले, दिल्ली वाले, मुंबई वाले, चेन्नई वाले, इंदौर वाले, जो भी जहाँ से भी है, सबके लिए डिस्काउंट है, डिस्काउंट।
1: शो स्ट्रीट वाला है पर ऑफर एलीट वाला है, रास्ता चाहे जो हो, मंजिल है विरानी ज्वेलर्स, क्योंकि वहाँ मिल रहा है 0% मेकिंग चार्जेस ऑन 22 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी।
2: विजिट viranijewelers.com, गेट द मैक्सिमम आउट ऑफ मिर्ची फ्रीडम फेस्टिवल फ्रॉम 4 जुलाई इंडिपेंडेंस डे टिल ऑगस्ट 15th इंडिपेंडेंस डे, सिर्फ फ्रीडम ही फ्रीडम,
3: ओनली ऑन 92.7 FM रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी। इट्स हॉट।

0: बिताते हैं कुछ वक्त एक आध्यात्मिक एहसास में, आस्था के उल्लास में, ईश्वर के पास में, देवराग के साथ।
1: 92.7 FM रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी, साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन, ऑल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2। इट्स हॉट।

0: जो सुनता है सबकी करे उसका ध्यान। देवराग के साथ सुबह सबसे पहले लें उसका नाम।
1: 92.7 FM रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन ऑल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2। इट्स हॉट।

0: बिताते हैं कुछ वक्त एक आध्यात्मिक एहसास में, आस्था के उल्लास में, ईश्वर के पास में, देवराग के साथ।
1: 92.7 FM रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी, साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन, ऑल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2। इट्स हॉट।

0: जो सुनता है सबकी करे उसका ध्यान। देवराग के साथ सुबह सबसे पहले लें उसका नाम।
1: 92.7 FM रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी साउथ एशिया नंबर वन रेडियो स्टेशन ऑल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2। इट्स हॉट।

कल आरती प्रेजेंटेड बाय आरके जूल्स, बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस सिर्फ 92.7 एफएम रेडियो मिर्ची पर, आल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 एफएम एचडी2।

0: Mirchi Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: Put shark in your tank. इस जापानीज कहानी से सीखते हैं कि चैलेंजेस हमारी ग्रोथ के लिए क्यों जरूरी होते हैं।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: सिस्टर, बहुत साल पहले ना मैंने एक कहानी पढ़ी थी कि जापानीज फिशिंग एंड ओशनिक मिनिस्टर, ऐसा कोई उनका शायद पोस्ट होता है, तो बहुत साल पहले दे वर फेसिंग अ प्रॉब्लम के समंदर के आसपास जो जगह थी इतनी फिशिंग हो गई थी कि मछलियां नहीं मिल रही थी उनकी, और जापानीज जो क्विजीन है उसमें मछली बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो अब फिशिंग मिनिस्ट्री के पास प्रॉब्लम आ गई, तो क्या करें। तो उन्होंने बोला ठीक है, कोई बात नहीं, बहुत बड़ी बड़ी हम शिप बनाएंगे, बहुत दूर तक भेजेंगे और बड़ा एक मछली का हॉल लेके आएंगे, तो वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो उन्होंने ऐसा किया, मछलियां आई बाजार में लेकिन चली नहीं, क्योंकि शिप्स बहुत दूर तक काफी दिनों तक ओशन में जाती थी फिर आती थी, तो मछली जो है ना वो हार्ड हो जाती थी, सॉफ्ट नहीं रहती थी, और तो फिर प्रॉब्लम आ गई क्योंकि लोगों ने रिजेक्ट कर दिया। तो फिशिंग मिनिस्ट्री अब सोच रही है अब क्या करें। तो उन्होंने बोला ठीक है कोई बात नहीं, अब हम क्या करेंगे, वो बड़े बड़े शिप्स ना बड़े बड़े आइस के हम कंटेनर्स डालेंगे। तो फिर से उन्होंने उनको भेजा, बहुत सारी मछलियां इकट्ठी करी, और वो क्योंकि आइस में थी वो आ गई, वो सड़ नहीं रही थी, अब वो फ्रेश थी। लेकिन दूसरी प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि इतने दिन वो रेफ्रिजरेट होके रहे तो वो हार्ड हो जाते थे, वो उनमें वो लचीलापन नहीं रहता था, तो फिर प्रॉब्लम। तो उस कहानी में अल्टीमेटली ये आता है कि अगर आप जापान की फिशिंग मिनिस्ट्री होती तो आप क्या करते। और उसमें बहुत अंत में बहुत खूबसूरती से बात लिखी है कि क्या होता है कि जब भी हमारे पास जीवन में कोई हमने गोल बनाया होता है, कोई माइलस्टोन होता है जो हम अचीव कर लेते हैं, तब क्या होता है वहां पे जीतने के बाद हमारे पास कोई गोल नहीं होता, तो हम आराम करने बैठ जाते हैं। इसलिए बहुत जरूरी है, और वो फिशिंग मिनिस्ट्री भी उन्होंने यही किया। उन्होंने क्या किया, वो जो बड़ा सा शिप के अंदर बड़ा सा टैंक उन्होंने मछलियों के लिए रखा था, उसमें एक छोटा सा बेबी शार्क उन्होंने छोड़ दिया। तब क्या थी, मछलियां जिंदा रहने के लिए, शार्क से बचने के लिए इधर उधर घूमती रहती थी। तो जब वो शोर पे वापिस आती थी उसमें मछलियां कम होती थी, लेकिन जो बची रहती थी ना वो फ्रेश भी होती थी, वो फ्रीज भी नहीं होती थी, और वो बिल्कुल उसी कंडीशन में होती थी जैसे जापान के लोगों को पसंद है। तो जो मेन लेसन था कि जब भी जिंदगी में आपको अचीव करना चाहते हैं तो अपने टैंक में एक शार्क डाल दो, वो आपको हमेशा अपने गोल की तरफ अग्रसर रखेगा। कभी भी थक के मत हारो या जीत में मत हारो। मुझे बहुत खूबसूरत और बहुत ब्यूटीफुल कहानी लगती है, मैं कई लोगों को बताता हूँ, एंड आई थिंक ये वर्ल्ड कप जो फुटबॉल है उसमें भी बहुत कारगर साबित हो रही है, क्योंकि बहुत सारे ऐसी टीम्स हैं जिनसे एक्सपेक्टेशन थी लेकिन वो हार गया, और बहुत सारी ऐसी टीम्स जिससे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं और वो आके अच्छा कमाल कर रहे हैं।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: पॉजिटिविटी कोई लोकेशन थोड़ी है कि मैप पे डाला और पहुंच गए. इट्स अ जर्नी. चलो इस जर्नी पे विद मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.
1: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.
2: लेजीनेस सिर्फ एक आदत नहीं बल्कि ग्रोथ का सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल भी बन सकती है. इसे कैसे बदलें? आइए समझें.
3: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया.
4: लेजीनेस है वो जीवन में बिल्कुल अच्छी चीज नहीं है. आप लेजी हैं या केयरलेस हैं तो वो चीज धीरे धीरे आपको कमजोर करेंगे. लेकिन एक होता है कंटेंटमेंट. कभी कभी हमें लगता है अगर कोई कंटेंट है तो लेजी है, और कभी कभी ये भी लगता है कि लेजी है तो कंटेंट है. उसकी भी एक जो क्लैरिटी है वो होनी जरूरी है. आप कंटेंट हैं और आपकी बहुत इच्छाएं नहीं है और आप अपनी स्पीड पर अपना जीवन जीना चाहते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है.
5: बिल्कुल.
4: हर एक अपने जीवन में कौन सी स्पीड से भागना चाहता है या चलना चाहता है वो उसके ऊपर है. कभी कभी हम किसी को बहुत भागता देख करके
5: तो हमको लगता है कि हम क्यों नहीं कर,
4: हम लेजी हैं शायद. जरूरी नहीं है हम लेजी हैं. हर एक अपना जीवन कैसे जीना चाहता है, उसके क्या प्रिंसिपल्स हैं, उसके जीवन जीने का क्या तरीका है, उसको जीवन से क्या चाहिए, उसकी प्रायोरिटीज क्या है, वो भी बैठ करके रिफ्लेक्ट करना जरूरी है.
5: बिल्कुल.
4: कभी कभी हम उसमें भी बहुत कॉपी करने में चले जाते हैं
5: जी.
4: और कॉपी करके कई बार कोई भाग रहा है तो हमें लगता है शायद मैं भी इतनी स्पीड से भागूंगा ना तो मुझे भी शायद मिल जाएगा जो चाहिए.
5: क्षमता नहीं होगी या वो मेरा खेल ही नहीं होगा.
4: क्षमता भी हो खेल भी हो बट इज इट समथिंग दैट व्हाट आई वांट.
5: हाँ, किसी और की रेस में शामिल हो गए हम.
4: मैंने वो मुझे चाहिए भी हो सकता है. किसी के लिए सिर्फ मनी इम्पोर्टेंट है, किसी के लिए सिर्फ पोजीशन इम्पोर्टेंट है, किसी के लिए रिश्ते भी इम्पोर्टेंट है, किसी के लिए उसकी हेल्थ भी इम्पोर्टेंट है, किसी के लिए उसकी मेंटल हेल्थ भी इम्पोर्टेंट है. तो वो उतने घंटे नहीं भाग सकता है. उसको अपना समय डिवाइड करना पड़ेगा. किसी के पेरेंट्स बीमार हैं, उसको कुछ समय वहाँ देना है. सो सिट विद योर सेल्फ. आपकी प्रायोरिटीज क्या है? बहुत करके लोगों को ये ही नहीं पता होता
5: कि चाहिए क्या,
4: उनको चाहिए क्या.
5: सही बात.
4: कैसे चाहिए तो बहुत दूर की बात है. हाँ. क्या चाहिए जीवन में?
5: बहुत बड़ी.
4: नेम चाहिए, फेम चाहिए, मनी चाहिए, क्या चाहिए? और फिर वो हम अपनी मंजिल उस अनुसार करें, वो जरूरी है. तो लेजी होना और कंटेंट होना उसमें थोड़ा अंतर है.
1: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.

हेल्दी माइंड के लिए अगर कोई जिम होता तो चले जाते। टिल देन सुनो मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Energy Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: Aura farming kya hai? फुटबॉल के एक इंस्पायरिंग कहानी के जरिए इस नए कॉन्सेप्ट को समझते हैं।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: सिस्टर, फुटबॉल वर्ल्ड कप इस वक्त चल रहा है और फुटबॉल जो फैंस है ना, उनके लिए दो कैरेक्टर बहुत बड़े हैं, एक है मेसी और एक है रोनाल्डो, और वो इतने बड़े हो गए हैं कि पिछले वर्ल्ड कप में तो खैर मेसी ने खिताब जीत लिया था और सब उसको गोट बोलने लगे थे, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, लेकिन रोनाल्डो बेचारा बाहर हो गया था। इस बार भी रोनाल्डो का वर्ल्ड कप इतना अच्छा नहीं जा रहा, तो जब मैं इस बारे में पढ़ता हूँ, मैं देखता हूँ कि मेसी ने ऑल टाइम जो वर्ल्ड कप के गोल स्कोरर की जो लिस्ट है उसमें भी अपना नाम सबसे ऊपर कर लिया, क्लोज का पहले रिकॉर्ड था उससे भी वो आगे बढ़ गए, तो उनमें एक ऑरा है, उस ऑरे के बारे में बहुत लोग बात कर रहे हैं। तो बहुत सारे बच्चे हैं जो कहते हैं कि यार मेसी में एक ऑरा है, वो गोट है और वो ही यू नो ही इज द आइडल एंड दिस इज द पर्सन टू फॉलो। एंड देन देयर इज अनदर, मैं ऑनलाइन बहुत सारे फोरम्स पढ़ रहा था, एक बहुत सारा एक थ्रेड है, वो कहते हैं कि नहीं, रोनाल्डो ना अच्छा इंसान है, वो बच्चों के साथ बहुत अच्छा बिहेव करता है, एटीट्यूड नहीं देता, कभी भी उसको गुस्सा होते हुए नहीं देखा। मेसी रिसेंटली एक कैलकटा में एक कोई इवेंट हुआ था, वहाँ से वो चले गए थे, तो उसके बाद भी बहुत ट्रोल हुए थे। वो कैसे इंसान है वो तो हम पर्सनल नहीं जानते, लेकिन जब ऑनलाइन में पढ़ रहा था तो ये डिबेट बहुत होती है कि जो ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम है वो किस बेसिस पे होना चाहिए, ऑरा पे होना चाहिए, स्किल पे होना चाहिए या अच्छेपन पे होना चाहिए, क्योंकि अच्छापन जो है वो दिल को खींचता है और ऑरा जो है वो नजरों को खींचता है। तो इस केस में आपकी राय क्या है?
4: सी, मैं यहाँ तक समझती हूँ कि हर व्यक्ति से कुछ सीखने की कोशिश करनी चाहिए
3: जी।
4: कभी कभी इन कंपैरिजन में जाना कि ये बेटर है या ये बेटर है, उससे क्या निकलेगा
3: जी?
4: दोनों में ही कुछ ना कुछ होगा। अगर वो दोनों ग्रेट हैं, उन दोनों की फैन फॉलोइंग है, तो दोनों के अंदर चाहे किसी में स्किल है, चाहे किसी में ऑरा है, चाहे किसी में काइंडनेस है, तो बेटर तो ये है कि हम उन दोनों के अंदर से जो बेस्ट है
3: वो निकालें,
4: उसको निकाल करके अपने जीवन में उससे कुछ ना कुछ सीखें। बाकी तो स्पोर्ट्स का पर्पस बाहर देखने वाले तो है, ग्रेटेस्ट स्पोर्ट्स पर्सन की भी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टू एडमायर ईच अदर, टू सपोर्ट ईच अदर। वो भी अगर कितने भी अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन और कितने भी अवार्ड्स जीते, लेकिन अगर उनका बिहेवियर एक दूसरे के प्रति भी रिस्पेक्टफुल नहीं है, तो कभी भी उनके वो उतनी फैन फॉलोइंग नहीं हो सकती
3: जी।
4: और मुझे कई बार लगता है कि स्पोर्ट्स पर्सन इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं,
3: लेकिन हम बातें बना देते हैं।
4: हम कई बार देखने वाले उनसे इतने आइडेंटिफाई करने लग जाते हैं कि हम उनके लिए लड़ेंगे, वो नहीं आपस में लड़े हैं, वो एक ही प्लेटफॉर्म पर होंगे, अच्छे से बात करेंगे, अच्छे से ग्रीट करेंगे, अच्छे से एक दूसरे को हक करेंगे। आज वो अपनी कंट्री के लिए खेल रहे हैं, कल जब वो क्लब्स में खेलते हैं तो वो लोग कई बार साथ में भी खेल रहे होते हैं। जो आज उनका
3: कंपेटिटर
4: है या ओपोनेंट है वो साथ में भी होता है, वो उन चूजों से ऊपर उठ गए, वो उनसे प्यार से भी बात करेंगे, हग भी करेंगे। तो हम वो चीज न सीख करके, हम उनसे आइडेंटिफाई हो करके एक दूसरे से झगड़ें या किसी को नीचा दिखाने की कोशिश करें, तो वो तो एक अच्छा एटीट्यूड नहीं है।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: टाइप सी केबल के साथ फोन तो चार्ज कर लोगे, खुद को कैसे चार्ज करोगे? मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
1: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
2: हर इंसान में कमियां होती हैं, लेकिन अगर हम बुराइयों के बजाय अच्छाइयों पर ध्यान दें, तो हमारी जिंदगी कैसे बदल सकती है, आइए जानें।
3: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
4: सिस्टर, जब मेसी और रोनाल्डो के बारे में बात हो रही थी और हम कंपैरिजन की बात करें, तो आपने बहुत खूबसूरत बात कही कि दोनों में से जो अच्छाइयां हैं वो लेने की कोशिश करो, बजाय इसके कि इसमें वो कमी है या बच्चों के साथ अच्छा बिहेव नहीं करता। इससे मुझे एक बहुत खूबसूरत वाक्य याद आ गया। बहुत सालों पहले ना, हमारी कंपनी में एक एम्प्लॉय को हम ले रहे थे और उस इंटरव्यू में मैं भी बैठा था, और कुछ सालों बाद उसका ही अप्रेजल चल रहा था। तो हमारे उस समय जो COO थे उनको फीडबैक दे रहे थे कि यार तुम में ना ये चार चीजें बहुत अच्छी हैं, लेकिन ये जो दो चीजें ना बहुत बेकार है, इनको तुम बदल लो। तो वो जो इंसान है वो बहुत सक्सेसफुल, बहुत ही डन वेल फॉर हिमसेल्फ इन लाइफ, तो उसने मुड़के कहा, देखिए आपने ना मुझे हायर किया है, ये डिटर्जेंट के पैकेट नहीं है कि आप ये दो चीजें चेंज कर देंगे तो बेटर हो जाऊंगा, ये पूरा पैकेज है, यही मिलेगा, चाहिए तो बोलिए और नहीं चाहिए तो हटा दीजिए। और मैं सोचता रहा, मैं देखता रहा उस इंसान को, मैंने कहा चलिए बात तो सही कह रहा है, बट वॉट ही वॉज ट्राइंग टू से कि फीडबैक अपनी जगह है, लेकिन मैं ऐसा ही हूँ, आपने मुझे ही हायर किया था, अब आप चाहते हैं कि दो चीजें मैं चेंज कर दूं, ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। ऐसे केस में कैसे हैंडल करें?
5: सी, अगर आपको कोई फीडबैक दे रहा है तो इतना एरोगेंस भी नहीं होना चाहिए कि हमें लगे हम परफेक्ट हैं, पर ये भी नहीं होना चाहिए कि हर एक के फीडबैक में आपको लगे कि वो जो कह रहा है वही राइट है।
4: हाँ।
5: आपको एक बार रिफ्लेक्ट जरूर करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि वो दो चीजें जो वो कह रहे हैं वो उनको कमी लग रही है, पर शायद वो एक्चुअली में कमी न भी हो। सी समटाइम्स वी वांट कि व्यक्ति हर एक मेरे अनुसार हो ना,
4: जी बिल्कुल,
5: तो वो हम उसको थोड़ा थोड़ा सा चेंज करने की, मोल्ड करने की कोशिश भी करते हैं। प्रिंसिपल्स के साथ भी कई बार चाहेंगे वो थोड़ा सा इजी हो, कॉम्प्रोमाइज करें। तो एरोगेंस नहीं होनी चाहिए कि हम परफेक्ट हैं, हमें किसी का फीडबैक चाहिए नहीं, हमें तो बदलने की जरूरत ही नहीं है। ऐसा तो नहीं होना चाहिए, कोई भी परफेक्ट नहीं है, बट एट द सेम टाइम हर एक के फीडबैक को इतना पर्सनली भी नहीं लेना चाहिए, रिफ्लेक्ट करना चाहिए। अभी क्या हो गया है, क्योंकि हम इतना ज्यादा सेल्फ रिस्पेक्ट कई बार कम हो जाती है, वी आर ऑलवेज लुकिंग फॉर एडमिरेशन फ्रॉम आउटसाइड, तो हम ये नहीं देख रहे होते कि ट्रूथ क्या है। तो वो जो कह रहे हैं इज इट ट्रू, क्या वो सही है, देन आई फील हमें चेंज करना चाहिए।
1: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirchi Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एक हेल्दी और पॉजिटिव एनवायरनमेंट बनाए रखना इतना जरूरी क्यों होता है, आइए समझे।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: कभी कभी क्या होता है, जब आप ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे होते हैं, सेटअप में होते हैं, तो आपके आसपास जो एनवायरनमेंट होता है उसी से आपको समझ में आता है या आप निकाल पाते हैं कि ये हकीकत है, वो जरूरी नहीं कि सच है। तो इन अ सिचुएशन जहाँ पे आपके जो सीनियर्स हैं जिनसे आप सीख रहे हैं, वो कह रहे हैं नहीं तुमको ये करना जरूरी है, ये फीडबैक है, इस पे काम करो, और मैं शायद नौसिखिया हूँ या नया हूँ या एक दो साल हूँ और मुझे नहीं पता कि ये सही है गलत है, उस समय सही गलत का डिसीजन कैसे लें?
4: समय ले लें। अगर आपको नहीं क्लैरिटी आ रही है, अगर आपको क्लैरिटी है तो आप आगे बढ़ सकते हैं। अगर वो आपके सीनियर्स हैं और आपको ये भी फील होता है कि वेल विशर है, ये भी तो पता चल ही जाता है ना, तो ये भी तो एक हमारी ह्यूमिलिटी होगी ना, कि अगर वो कुछ कह रहे हैं और मुझे वो चीज़ नहीं भी समझ में आ रही है, पर मुझे फेथ है कि ये मेरे बड़े हैं, ये मेरे वेल विशर हैं, ये मेरे से ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है, तो बेटर होगा कि आई विल गो बैक एंड रिफ्लेक्ट ऑन इट, मैं उसको समझने की कोशिश करूँ। नहीं समझ में आ रहा है तो एक और बार कॉन्वर्सेशन करके समझने की कोशिश करें, पर दरवाजे ही बंद कर दें कि नहीं मैं तो जो कर रहा हूँ सब ठीक है, वो तो फिर थोड़ा एरोगेंस है।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: कुछ आवाजें सिर्फ कानों को नहीं सीधे आत्मा को छू जाती हैं। दिव्य और पवित्र आरती अब मंदिर से सीधे आप तक। मंगल आरती प्रेजेंटेड बाय आरके जूल्स। बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस। रोज सुबह 6 बजे सिर्फ 92.7 एफएम रेडियो मिर्ची पर। ऑल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 एफएम HD2।
1: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
2: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
1: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर
2: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
1: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू हिजलिन।
3: पॉजिटिविटी कोई लोकेशन थोड़ी है कि मैप पे डाला और पहुँच गए। इट्स अ जर्नी। चलो इस जर्नी पे विद मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: Mirchi Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया। आइए, अब वक्त है आपके सवाल लेने का। उम्मीद है आपको इनसे सही दिशा मिलेगी।
2: सिस्टर, एक सवाल आया है कि मैं काफी समय से परेशान रह रहा हूं और समझ नहीं पा रहा हूं कि क्या करना चाहिए। ऐसी स्थिति में सही मार्गदर्शन क्या हो सकता है? सुनील लिखते हैं,
3: बिना किसी की प्रॉब्लम जाने कोई भी प्रकार का मार्गदर्शन देना तो नहीं पॉसिबल है, लेकिन फिर भी अगर उनको समझ में नहीं आ रहा है, वैसे तो अपने जीवन के जो डिसीजंस हैं वो हम अपने बेस्ट ले सकते हैं, अपने सर्कमस्टांसेस को जानते हुए, अपनी कैपेसिटीज को जज करते हुए। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है आपसे नहीं हो रहा है, बहुत कन्फ्यूजन है, क्लैरिटी नहीं आ रही है, तो जिनको आप ट्रस्ट करते हैं, जिनको आपको लगता है कि इनके जीवन से आप संतुष्ट हैं, कोई तो आइडल होगा, कोई तो गाइड होगा, कोई, उनसे जाकर के राय लें। देयर आर टाइम्स जब हमें लगता है कि नहीं, मेरे को नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि हम परेशान हैं, अंदर में कन्फ्यूजन है, तो जिस व्यक्ति को आप ट्रस्ट करते हैं या रोल मॉडल की तरह देखते हैं, या आपको लगता है वो आपसे
2: ज्यादा जानते हैं,
3: ज्यादा अनुभवी हैं, आप उनकी राय ले लें।
2: बिल्कुल, लेकिन परेशान नहीं हो, क्योंकि उससे कोई फायदा नहीं होता।
3: परेशान से तो कोई फायदा है ही नहीं, और अगर आप परेशान नहीं होते तो खुद भी अपने जीवन के डिसीजंस ले पाते, क्लैरिटी आ जाती।
2: यू नो, मार्क ट्वेन ने बहुत कमाल की एक बात कही थी कि वरिंग इज लाइक पेइंग अ डेट यू डोंट ओ।
3: यस,
2: तो वो करने का क्या ही फायदा है।
3: वो कहते हैं, हिंदी में भी कहते हैं ना, चिंता चिता के समान है।
2: जी बिल्कुल।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: हेल्दी माइंड के लिए अगर कोई जिम होता तो चले जाते। टिल देन सुनो मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: It's 7:30 AM. Mirchi time check. RK Jewels. Get amazing deals on exquisite collection on wide range of flawless and stunning jewelry collection. RK Jewels. Best quality, best price.

0: Energy Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया। आइए, अब वक्त है आपके सवाल लेने का। उम्मीद है आपको इनसे सही दिशा मिलेगी।
2: सिस्टर, एक सवाल आया है। ओम शांति, मेरा नाम साक्षी है। जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो जो गलतियां उसने जीवन में की हैं उनका पछतावा क्यों होता है, और कभी कभी ऐसा क्यों लगता है कि आत्मा अभी कुछ और दिनों तक शरीर के साथ रहनी चाहिए थी?
3: सी, जो हम स्पिरिचुअली समझते हैं, पश्चाताप तो कोई शरीर छोड़ने के बाद ही नहीं होता। पश्चाताप माना, हम लाइफ में भी तो कितना पश्चाताप करते हैं। पश्चाताप क्या होता है कि आपने कुछ किया और बाद में आपको रियलाइज हुआ कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था।
2: लेकिन जीवन के आखिरी दिनों में शायद जब आत्मा शरीर छोड़ने वाली होती है तो उस समय शायद बहुत लोग बोलते हैं कि काश मैंने नहीं किया होता, शायद उनका उस तरफ,
3: क्योंकि साथ में क्या जाता है?
2: कुछ नहीं।
3: मे बी उस समय नहीं, कुछ नहीं क्या, साथ में यही जाता है ना, कर्मों का हिसाब किताब। आपको क्यों पश्चाताप हो रहा होता है? क्योंकि आपने बहुत सारी उन चीजों को इम्पोर्टेंस दी होती है जो चीजें साथ में जाने वाली नहीं होती, और उसके लिए आपने अपने वैल्यूज के साथ, प्रिंसिपल्स के साथ, एथिक्स के साथ कॉम्प्रोमाइज किया होता है। सी, कर्म इज नॉट फॉर्म ऑफ पनिशमेंट, ऐसा नहीं है। कॉज एंड इफेक्ट है। आप समझे ना, एक लॉ है, जैसे ग्रेविटी का लॉ होता है, आपने कुछ ऊपर फेंका तो वो नीचे आता है। तो कर्म का भी लॉ क्या कहता है? कॉज एंड इफेक्ट। जो आपने किया है उसका एक इफेक्ट है। अब हमने करते समय तो कई बार हम जस्टिफाई कर देते हैं, ये करना जरूरी था, झूठ बोलना जरूरी था, गुस्सा करना जरूरी था, उस समय पर कर दिया। अब जब उसका इफेक्ट आ रहा है, इफेक्ट, मेंटल सफरिंग भी तो एक इफेक्ट होता है ना। आप पश्चाताप कर रहे हैं, गिल्ट कर रहे हैं। कई लोग कहते हैं सब कुछ जीवन में ठीक है, पता नहीं फिर भी क्यों इतनी उदासी है, खुशी क्यों नहीं अनुभव होती है। मेंटल सफरिंग बहुत बड़ा एक कार्मिक रिटर्न है कि सब कुछ ठीक होते हुए भी आपको अच्छा ही नहीं लगता, आपको जीवन जीने की दिल ही नहीं होती, तो फिर उस समय कई बार पश्चाताप होता है। लेकिन पश्चाताप की जगह रियलाइजेशन ज्यादा अच्छी है। रियलाइजेशन का मतलब होता है कि अगर आपने रियलाइज किया कि ये ठीक नहीं था, आगे नहीं करें, बस और क्या।
2: इसमें आप आगे नहीं करें बोलना चाहती है, क्योंकि she is talking about somebody who's, or she is talking about herself.
3: Yeah, अगर आपने,
2: she is about to pass on.
3: अगर before also, see what is soul going to take, अगर आपने उस चीज को realize भी किया ना, तो वो स्मृति भी आपके साथ जाती है।
2: अरे वाह, क्या बात। आप, जब आपने रियलाइज किया तभी
3: सोल अपने साथ संस्कार और हिसाब किताब लेकर जाएगी। तो अगर आपने उस चीज को रियलाइज भी किया तो आपके संस्कार में वो चीज चली जाती है कि ये गलत है। तो इवन अगर आपका कॉस्ट्यूम चेंज होगा तो वो स्मृति आपको एक बार जरूर हिट करेगी कि ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। देन अगेन इट इज अ डिसीजन कि करना है कि नहीं करना, फिर उससे एक नया कॉन्सिक्वेंस क्रिएट होगा, लेकिन आपके पास एक चॉइस जरूर होगी।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
1: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
0: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
1: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
0: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर
1: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
0: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इज़लिन।
2: गुलाबी साड़ी अनी लाली लाल लाल दिसते में भारी राजा फोटो मजा का।
3: टी सीरीज प्रेजेंट धमाल 4।
4: गुलाबी बिना चटनी कैसे बनी।
3: Starring Ajay Devgan, Arshad Varsi, Ritesh Deshmukh and Javed Jaffrey. Directed by Indra Kumar. Releasing on the 10th of July. A complete family entertainer.
5: Type-C cable ke saath phone to charge kar loge. Khud ko kaise charge karoge? Mirchi Recharge Mornings. Subah 6 se 8. Only on Mirchi. It's hot.

0: Energy Recharge Mantra with Vishal Sethia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया। आइए, अब वक्त है आपके सवाल लेने का। उम्मीद है आपको इनसे सही दिशा मिलेगी।
2: सिस्टर, एक सवाल आया है, लिखते हैं कि नमस्ते सिस्टर श्रेया, मैंने हाल ही में आपको सुनना शुरू किया है और आपकी बातें मुझे सच में बहुत इंस्पायरिंग लगती हैं। मैं अपने पास्ट को लेकर स्ट्रगल कर रही हूं। जिस इंसान पर मैंने 4 साल ट्रस्ट किया, उसने बिना किसी एक्सप्लेनेशन के रिलेशनशिप खत्म करके मुझे घोस्ट कर दिया। 4 महीने हो गए हैं, मैंने कांटेक्ट करने की कोशिश भी की लेकिन कोई रिस्पांस नहीं मिला। मुझे पता है कि मैं ऐसे इंसान के साथ नहीं रहना चाहती, फिर भी एक सवाल बार बार मुझे डिस्टर्ब करता है कि कोई बिना कुछ कहे सब कुछ कैसे छोड़ सकता है। जब सामने से क्लोजर ना मिले तो खुद को कैसे हील करें और कैसे मूव ऑन करें?
3: उसको एक खूबसूरत मोड़ समझ करके भूल जाए। See, the time that you have spent with that person was very good. Closure बाहर से नहीं मिलता, closure खुद को देना पड़ता है। ठीक है, आपके साथ कुछ ठीक नहीं हुआ, आप चाहेंगे ये चीज का आंसर आपको मिले कि उन्होंने ऐसा क्यों किया है, लेकिन हम चाह रहे हैं पर वो नहीं बात करना चाह रहे या वो नहीं इस चीज को आंसर कर रहे हैं, तो कितना उसके अंदर और इन्वेस्ट करेंगे, कितना और अंदर ही अंदर अपने साथ नेगेटिव कॉन्वर्सेशन करेंगे। फिर कभी कभी हमारा अपने से फेथ भी खत्म होना शुरू हो जाता है
2: कि मुझे में कुछ कमी होगी।
3: हाँ, मुझ में कोई कमी होगी, मेरे में कोई प्रॉब्लम होगी। देन वी कीप इमेजिनिंग थिंग्स, वी कीप अज्यूमिंग थिंग्स, वी कीप, और वो हमें वीक करता है ना। हमने कोई रिलेशनशिप में अपना 100% दिया, इंजॉय किया, बहुत कुछ उससे सीखा, ट्राई भी किया उसको वर्कआउट करने के लिए। आई विल नेवर से कि छोड़ दें। अगर किसी भी रिश्ते के अंदर हम इन्वेस्ट करते हैं तो हमें ट्राई करना चाहिए वो जब तक बन सके, क्योंकि रिश्ता क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ एनर्जी है। दो जने होते हैं, डिफरेंट होते हैं, डिफरेंट अगर होते हैं तो संस्कारों की थोड़ी रास करनी पड़ती है। कभी किसी को झुकना पड़ता है, कभी किसी को थोड़ा सहन करना पड़ता है, कभी किसी को लेट गो करना पड़ता है, तो ही वो रिश्ता आगे बढ़ता है। हर समय आप समझे मैं ही राइट हूँ तो भी वो रिश्ता नहीं बनता है। तो रिश्ते के अंदर एक एफर्ट होता है, आप इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन अगर आपने सब कुछ कर लिया और वो व्यक्ति क्लियरली कहता है कि वो आपके साथ नहीं रहना चाहता, देन आई डोंट थिंक इट इज फेयर ऑन यू। क्या वो चीज को सोच करके दुख में जाएं, उसका जख्म क्रिएट करें, बहुत ज्यादा डिप्रेस हो जाएं? इट इज हार्मिंग यू, आपकी बॉडी, आपकी सोल, आपका वर्क, आपका एनवायरमेंट। इसलिए लेट गो, क्लोजर अपने को दे। बहुत सुंदर था, बहुत अच्छा था, शायद अब शायद इससे भी कोई और अच्छा मिलेगा। मे बी आई डिजर्व समबडी बेटर। वैसे भी अगर कोई ऐसे आपको बिल्कुल छोड़ करके चला गया,
2: उसके भरोसे
3: आप रियलाइज भी कर रहे हैं कि आप उसके साथ जीवन भर तो बिता नहीं सकते हैं, सो देन गिव दैट क्लोजर टू योरसेल्फ। अच्छा ही हो गया, किसी परमानेंट रिलेशनशिप में जाते, मैरिज आती होती, इससे पहले मुझे इस व्यक्ति के बारे में पता चल गया। ग्रेटिट्यूड फील करें। किसी व्यक्ति की अगर कोई नेगेटिविटी पहले सामने आ जाती है और आप बच जाते हैं, तो ये भी जैसे आपका कोई अच्छा पुण्य कर्म है।
2: आई थिंक उन्होंने क्लोजर ले लिया जब उन्होंने बोला कि मुझे पता है कि मैं ऐसे इंसान के साथ नहीं रहना चाहती। क्लोजर आपको
3: मिल नहीं, क्लोजर तब तक नहीं मिलता है जब तक हम उस दर्द से बाहर नहीं आते
2: या सामने वाला मुझे जवाब नहीं दे,
3: जो भी कारण है। लेकिन दर्द तो हम क्रिएट कर रहे हैं ना, अभी वो जो भी जवाब देंगे, लेकिन दर्द तो मैं क्रिएट कर रहा हूँ। मैंने उसको पकड़ा हुआ है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, मैं होल्ड ऑन कर रहा हूँ, आई एम नॉट लेटिंग गो। क्लोजर उस दिन होगा व्हेन आई से आई लेट गो, दे वर ब्यूटीफुल 4 इयर्स
2: एंड आई मूव ऑन।
3: बहुत सुंदर थे, फिर ये सीन हुई, बहुत अच्छी नहीं थी, बट नाउ इट्स टाइम टू मूव ऑन। शायद इससे अच्छा कोई सीन लाइफ में आना बाकी है, इससे अच्छा व्यक्ति आना बाकी है, और अब वो चीज अंदर पेन क्रिएट नहीं कर रही है, वो अंदर दुख नहीं दे रही है, यू आर कम्फर्टेबल, आपने एक्सेप्ट कर लिया है, दैट इज क्लोजर। आप दर्द में है तब तक वो क्लोजर नहीं है।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

कैसे हो के जवाब में ठीक हूँ कह देने से कोई ठीक नहीं हो जाता। ठीक हूँ से मस्त हूँ कहने के लिए सुनिए मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
1: कौन है ये जिसने दोबारा मुड़के मुझे नहीं देखा? Who is he?

0: are you?
1: Mirchi.
2: Iskabana, puskabana, sakabana. Rabana. Burga, burga. La vieja la burga. Mirchi, burga.
3: हेलो
4: हेलो बेटा नवनीत,
3: आप कौन?
4: पापा कहाँ हैं?
3: पापा तो बाहर हैं, आप बताइए।
4: बेटा ऐसा है, आपके पापा और मैं, हम हाँ। बचपन से बड़े अच्छे दोस्त हैं। मेरे को बता रहा था आशीष, आपके पापा ने बताया था मेरे को कि बेटा है, उसे बात कर लेना फोन पे कभी, उससे पूछ लेना। मेरे को आपके पापा ने कहा था कि मेरा बेटा कभी कभी शरारत भी करता है, चलो हर बच्चा कर देता है, लेकिन आशीष दिल का बड़ा अच्छा है, क्योंकि मेरे बचपन का दोस्त है ना आपका पापा, वो किसी को डांट नहीं सकता। अच्छा बेटा, तुम्हारे पापा ने मेरे से ये कहा था आशीष ने कि तू ना नवनीत को फोन कर लियो, क्योंकि वो तो कभी डांटता नहीं है आपको किसी बात पे। तो अभी अभी आपके पास एक मिनट है क्या?
3: लेकिन आपको काम क्या है?
4: बस एक मिनट तक मेरे को आपको डांटना था।
3: पापा ने कहा था?
4: चुप कर। पापा ने कहा था? मेरे दोस्त का पीछा ले रखा है तूने, उठा के पटक के रख दूंगा, बता रहा हूँ मैं तेरे को।
3: क्या हुआ अंकल?
4: बेटा आपके पापा ने कहा था मेरे से कि वो टाइम पे वो निकल गए हैं, उनको कुछ जरूरी काम था, आपको डांटने का दिल कर रहा था तो वो डांट नहीं पाए, तो मेरे से कहा था आप डांट देना मेरे, जो दोस्त तो दोस्त है ना हम आपस में।
3: अब मुझे क्यों डांट?
4: चुप कर।
3: किस तरह बात कर रहे हैं मेरे से? आप मेरी बात सुनो, मैं पापा से बात कर लूँ।
4: पापा से बात करेगा दांत तोड़ दूंगा, ऐसे बैठे बैठे पापा की तरफ से डांट रहा हूँ मैं। क्यों कर रहा था तूने?
3: पापा को ऐसे किस बात का बुरा? मुझे ये भी नहीं,
4: पापा को किस बात का बुरा लगा, इससे मेरे को क्या लेना देना है। असल में पापा आपके बड़े बिजी हैं आज, तो मेरे को मैसेज किया था उन्होंने कि वह उसको डांट देना।
3: लेकिन बुरी क्या
4: लगी? अंकल कल देखो एक मारूंगा।
3: बदतमीजी क्या करी?
4: अच्छा ये अपने पापा से पूछना ना, मैं आपके बीच में क्यों पढ़ूं?
3: कह रहा हूं मैंने कोई ऐसी बदतमीजी की नहीं इन दिनों में।
4: एक मरना घुमा के मैंने की नहीं।
3: ठीक है, मैंने वो भी कर लिया, मैं बदमाशी।
4: ठीक है मेरे साथ बोल कुकड़ू को बेटे।
3: क्या बोलूं?
5: नवनीत कुकड़ू को बोलो मैं रेडियो मिर्ची से नवनीत बोल रहा हूं, तुम्हारे पापा ने ही मुझे तुम्हारा नंबर दिया था, तुम रेडियो मिर्ची पे।
3: आपको पापा ने ऐसे कब बताया था मेरा मुर्गा बनाने को?
4: चुप कर। मारूंगा घुमा के। पापा ने कब बताया था मुर्गा बनाने को?
6: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।
7: दिस गोल्ड अपडेट इज ब्रॉट टू यू बाय राज ज्वेल्स, किंगडम ऑफ ज्वेल्स, वेयर ट्रेडिशन मीट्स स्टाइल।
8: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
9: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
10: Our business was getting ripped off before with high processing fees. I'm so glad we switched to NRS Pay.
11: Retailers are saving and making money with NRS Pay credit card processing. Get free equipment with zero hidden fees and no early termination fee. Honest, clean credit card processing starts at NRSPay.com or call 877-202-8112. Again, that's 877-202-8112.
12: NRS Pay is a service of National Retail Solutions. Contract required. National Retail Solutions is a registered MSP, ISO of Elavon, a wholly owned subsidiary of US Bancorp, Minneapolis, Minnesota, and a registered ISO of Wells Fargo Bank, N.A., Concord, California.
13: Wow, yahi to hai mera dream lehenga.
14: Har pyari bride ka ye sapna pura kare. Miss India Bridal Store.
13: Explore our stunning bridal lehengas or exclusive reception wear.
14: Plus, grooms ke liye royal sherwanis.
13: Miss India, aaj hi visit kare, 79 Middlesex Avenue, Islin.
15: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
16: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
17: Namaste, New Jersey. Frontier Ras is now open in Edison, New Jersey. From handloom saris and bridal couture to menswear and ready-to-wear, discover a 70-year legacy of Indian craftsmanship. The USA flagship store of Frontier Ras is now open at 1655 Oak Tree Road, Edison.
18: Island, New Jersey. Yes, you heard that right. That's the brand new Joy Autocars destination in the USA. Be among the first to celebrate our grand opening with an unbeatable inaugural offer of flat 30% off on making charges. Shop before 19th July and receive assured gifts with every purchase. Visit us at 42 Marconi Avenue, Esalen, New Jersey and discover exquisite collections crafted for every celebration. Inaugural offer valid until 26th July 2026. TNC apply. Joy Autocars, world's favorite jeweler.
19: तेरा क्या होगा कालिया?
5: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
19: अब मिर्ची खा।
3: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: ताजा खबर देसी न्यूज विदेशी न्यूज पड़ोसी की न्यूज ब्रेकिंग न्यूज ले लो।
1: श्योर स्ट्रीट वाला है पर ऑफर एलीट वाला है क्योंकि सबसे बड़ी खबर है विरानी ज्वेलर्स स्पेशल फ्रीडम सेल। पुराना गोल्ड लाओ और 100% एक्सचेंज वैल्यू ले जाओ। नो लॉस ओनली प्रॉफिट।
2: विजिट viranijewelers.com। गेट द मैक्सिमम आउट ऑफ मिर्ची फ्रीडम फेस्टिवल फ्रॉम 4 जुलाई इंडिपेंडेंस डे टिल ऑगस्ट 15th इंडिपेंडेंस डे। सिर्फ फ्रीडम ही फ्रीडम
3: ओनली ऑन 92.7 FM रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी। It's hot.
4: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
5: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
6: जय गुरुदेव। गायत्री चेतना सेंटर पिस्कारोवे की ओर से आप और आपके परिवार को गुरु पूर्णिमा एवं रुद्राभिषेक महोत्सव में स्नेहपूर्ण आमंत्रण। शनिवार 1 अगस्त को सुबह 10 बजे शिवजी रुद्राभिषेक और शाम 5 बजे विराट दीप यज्ञ। रविवार 2 अगस्त को सुबह 10 बजे 251 कुंडीय गायत्री महायज्ञ। शांति कुंज हरिद्वार के पूज्य संतों द्वारा वैदिक विधि से अनुष्ठान और डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी की पावन उपस्थिति। अधिक जानकारी के लिए 7323578200। जय गुरुदेव।
7: Namaste, New Jersey. Frontier Ras is now open in Edison, New Jersey. From handloom saris and bridal couture to menswear and ready-to-wear, discover a 70-year legacy of Indian craftsmanship. The USA flagship store of Frontier Ras is now open at 1655 Oak Tree Road, Edison.
8: Our business was getting ripped off before with high processing fees. I'm so glad we switched to NRS Pay.
9: Retailers are saving and making money with NRS Pay credit card processing. Get free equipment with zero hidden fees and no early termination fee. Honest, clean credit card processing starts at nrspay.com or call 877-202-8112. Again, that's 877-202-8112.
10: NRS Pay is a service of National Retail Solutions. Contract required. National Retail Solutions is a registered MSP, ISO of Elavon, a wholly owned subsidiary of U.S. Bancorp, Minneapolis, Minnesota, and a registered ISO of Wells Fargo Bank, N.A., Concord, California.
11: Oak Tree Road lo, best diamond jewelry kosam search istunnara, Krishna Jewelers me, exclusive diamond store.
12: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, rings, mariyu stunning pendants, Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Isalin.
13: लिस्नर है मैं, बैक टू बैक गाना सुनेगा,
14: बैक टू बैक गाना सुनेगा।
15: Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

0: prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
3: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
2: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर
3: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
2: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इजलिन।
4: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए। इसीलिए लायन मॉर्गेज असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स, आल्सो ऑफरिंग जीरो क्लोजिंग कॉस्ट रीफाइनेंस ऑप्शन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155। लॉग ऑन टू lionmtg.com।

0: मतलब विरानी ज्वेलर्स पे एक्सक्लूसिव डिस्काउंट है सिर्फ मिर्ची लिसनर्स के लिए। 0% मेकिंग चार्जेस ऑन 22 कैरेट एंड डायमंड ज्वेलरी, और पुराना गोल्ड दो तो 100% वैल्यू मिलेगी ट्रेड इन में। सिर्फ फ्रीडम ही फ्रीडम,
1: ओनली ऑन 92.7 FM रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी। इट्स हॉट।
2: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
3: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
4: Gulabi saadi ani lali lal lal. Disate me bari raja photo maza kar.
5: T series present The Mall 4.
6: Gulori bina chatni kaise bani?
5: Ajay Devgan, Arshad Varsi, Ritesh Deshmukh and Javed Jaffrey. Directed by Indra Kumar. Releasing on the 10th of July. A complete family entertainer.
7: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, लेकिन शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए। इसीलिए Lion Mortgage, the king of mortgage industry.
8: Since over 15 years, Lion Mortgage has been assisting first-time home buyers with loan. Their experience and knowledge of mortgage industry really helps clients to get the best possible deals on refinance. A professional service with quick, accurate and impressive follow-up. Lion Mortgage offers special zero closing cost on refinance options.
9: For more information, call 732-339-3155. That is 732-339-3155.
10: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
11: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
10: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
11: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
10: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इसलिन।
12: इसलिन न्यू जर्सी। Yes, you heard that right. That's the brand new Joy Aluka's destination in the USA. Be among the first to celebrate our grand opening with an unbeatable inaugural offer of flat 30% off on baking charges. Shop before 19th July and receive assured gifts with every purchase. Visit us at 42 Marconi Avenue, Esalen, New Jersey and discover exquisite collections crafted for every celebration. Inaugural offer valid until 26th July 2026. TNT apply. Joy Aluka's, world's favorite jeweler.
13: तेरा क्या होगा कालिया?
14: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
13: अब मिर्ची खा।
15: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
16: It's 9:30 a.m. Mirchi Time Check, RK Jewels. Get amazing deals on exquisite collection on wide range of flawless and stunning jewelry collection. RK Jewels, best quality, best price.
17: Yay!

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: Our business was getting ripped off before with high processing fees. I'm so glad we switched to NRS Pay.
4: Retailers are saving and making money with NRS Pay credit card processing. Get free equipment with zero hidden fees and no early termination fee. Honest, clean credit card processing starts at NRSPay.com or call 877-202-8112. Again, that's 877-202-8112.
5: NRS Pay is a service of National Retail Solutions. Contract required. National Retail Solutions is a registered MSP, ISO of Elavon, a wholly owned subsidiary of US Bancorp, Minneapolis, Minnesota, and a registered ISO of Wells Fargo Bank, N.A., Concord, California.
6: Wow! Yahi to hai mera dream lehenga!
7: Har pyari bride ka ye sapna pura kare. Miss India Bridal Store.
6: Explore our stunning bridal lehengas or exclusive reception wear.
7: Plus, grooms ke liye royal sherwanis.
6: Miss India, aaj hi visit kare 79 Middlesex Avenue, Islin.
8: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
9: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
10: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है।
11: कोहली गोज डाउन द ग्राउंड, कोहली गोज आउट ऑफ द ग्राउंड।
10: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
12: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
10: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर वन, सिर्फ एक ही होता है,
13: एक ही होता है।
10: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिस्नरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।

0: Mirchi.
1: Escabana, pues cabana, sacabana. ¡Cabana! ¡Murga, murga! ¡La vida para la murga!
0: ¡Mirchi, murga!
2: हेलो
3: हेलो बेटा नवनीत,
2: आप कौन?
3: पापा कहाँ हैं?
2: पापा तो बाहर हैं, आप बताइए।
3: बेटा ऐसा है, आपके पापा और मैं हम बचपन से बड़े अच्छे दोस्त हैं। मेरे को बता रहा था आशीष, आपके पापा ने बताया था मेरे को कि बेटा है, उससे बात कर लेना फोन पे, कभी उससे पूछ लेना। मेरे को आपके पापा ने कहा था कि मेरा बेटा कभी कभी शरारत भी करता है, चलो हर बच्चा कर देता है, लेकिन आशीष दिल का बड़ा अच्छा है, क्योंकि मेरे बचपन का दोस्त है ना आपका पापा, वो किसी को डांट नहीं सकता। अच्छा बेटा, तुम्हारे पापा ने मेरे से ये कहा था आशीष ने कि तू ना नवनीत को फोन कर लियो, क्योंकि वो तो कभी डांटता नहीं है आपको किसी बात पे। तो अभी अभी आपके पास एक मिनट है क्या?
2: लेकिन आपको काम क्या है?
3: बस एक मिनट तक मेरे को आपको डांटना था।
2: पापा ने कहा था?
3: चुप कर। पापा ने कहा था? मेरे दोस्त का पीछा ले रखा है तूने, उठा के पटक के रख दूंगा, बता रहा हूँ मैं तेरे को।
2: क्या हुआ अंकल?
3: बेटा आपके पापा ने कहा था मेरे से कि वो टाइम पे वो निकल गए हैं, उनको कुछ जरूरी काम था, आपको डांटने का दिल कर रहा था तो वो डांट नहीं पाए, तो मेरे से कहा था आप डांट देना मेरे, दोस्त तो दोस्त है ना हम आपस में।
2: अब मुझे क्यों डांट?
3: चुप कर।
2: किस तरह बात कर रहे हैं मेरे से? आप मेरी बात सुनो, मैं पापा से बात कर लूँ।
3: पापा से बात करेगा दांत तोड़ दूंगा, ऐसे बैठे बैठे पापा की तरफ से डांट रहा हूँ मैं।
2: पापा को ऐसे किस बात का बुरा? मुझे ये भी नहीं
3: पापा को किस बात का बुरा लगा, इससे मेरे को क्या लेना देना है। असल में पापा आपके बड़े बिजी हैं आज, तो मेरे को मैसेज किया था उन्होंने कि वह उसको डांट देना।
2: लेकिन बुरी क्या
3: लगी? अंकल कभी आंखो एक मारूंगा।
2: बदतमीजी क्या करी?
3: अच्छा ये अपने पापा से पूछना ना, मैं आपके बीच में क्यों पढ़ूं?
2: कह रहा हूँ मैंने कोई ऐसी बदतमीजी की नहीं इन दिनों में।
3: एक मरना घुमा के मैंने की नहीं।
2: ठीक है, मैंने वो भी कर लिया, मैं बदमाशी।
3: ठीक है मेरे साथ बोल कुकड़ू को बेटे।
2: क्या बोलूं?
4: नवनीत कुकड़ू को बोलो मैं रेडियो मिर्ची से नवनीत बोल रहा हूँ, तुम्हारे पापा ने ही मुझे तुम्हारा नंबर दिया था, तुम रेडियो मिर्ची पे।
2: आपको पापा ने ऐसे कब बताया था मेरा मुर्गा बनाने को?
3: चुप कर, मारूंगा घुमा के। पापा ने कब बताया था मुर्गा बनाने को?
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट, इट्स पटाक।
6: गुड मॉर्निंग, सांभळी रह्या छो मिर्ची, हूँ छो कृतार्थ। अच्छा कम्प्यूटर में बे बहु इंटरेस्टिंग बटन छे कि जेनु कॉम्बिनेशन बधीज वस्तुओं ने भुलावी दे, गायब करी दे, शिफ्ट अने डिलीट। नॉर्मली अमे एकलू डिलीट दबावो ने तो रिसाइकल बीन में गमे त्यां ए डेटा स्टोर थयो रहे, एने रिकवर करी शकाय, ए छताय तमारा कम्प्यूटर में होय। पण शिफ्ट अने डिलीट दबावो एटले परमनेंटली डिलीट थई जाय। मने घणी वखत एवो विचार आवे कि जो मारा ने तमारा मां पण कोई आवुं बटन होत कि शिफ्ट अने डिलीट दबावीए, એટલે જે અમુક એવી વાતો કે જે મને ને તમને હમણાં સુધી હેરાન કરતી હોય, એવા રિલેશન્સ કે જે બહુ જુંડા ઘા આપીને ગયા હોય, એ હંમેશાના માટે ડિલીટ થઈ જાય। વાત ખાલી એટલી છે કે ઘણી વખત સહન કરવું એના કરતાં ભૂલી જવું એ વધારે સારું હોય છે। ભૂલી જવું એ ક્યારેક ભાંગી જવા કરતાં વધારે સારું। આજના દિવસે વેકઅપ વિચાર અને રિમાઇન્ડર ખાલી એટલું જ છે કે એક લિસ્ટ તો બનાવો કે કઈ કઈ બાબતો એવી છે કે જે તમારી ઈચ્છા છે કે તમે ભૂલી જાઓ, જે ભૂલવાથી તમારી મેન્ટલ હેલ્થ સુધરી જશે, અને પછી હું તમને ઉપાય કહીશ કે એને કેવી રીતે જીવનમાંથી, મગજમાંથી શિફ્ટ ડિલીટ કરવું। પહેલાં લિસ્ટ બનાવી લો, લિસ્ટ બનાવીને મને મેસેજ કરજો। યુ આર લિસનિંગ ટુ મિર્ચી, ઇટ્સ હોટ। Good morning. Hopefully, बात समझाई होए तुमने।
7: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
8: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
9: Oh no!
10: कार खराब मतलब दिन और मूड दोनों खराब, इसीलिए अपनी कार को सही केयर दो। राज ऑटो सेंटर विद 30 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, द फैमिली ओन्ड ऑटोमोटिव सेंटर प्रोवाइडिंग टॉप नॉच सर्विसेज बाय एएससी सर्टिफाइड टेक्नीशियंस। विजिट राज ऑटो सेंटर एट 1400 जर्सी एवेन्यू, नॉर्थ ब्रंसविक टाउनशिप, 1213 न्यू जर्सी 27, सोमरसेट ऑटो बॉडी शॉप, 700 हैरिस एव, मिडिलसेक्स। इफ यू आर विद राज ऑटो सेंटर, यू आर इन गुड हैंड्स।
11: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
12: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islington.
9: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
13: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानीज।
9: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
13: विजिट टुडे 1358 ओक ट्री रोड, इज़लिन।
14: Enjoy your golden days with Kalyan Jewelers. Get up to 50% off on making charges. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Iselin, New Jersey. Conditions apply.

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
4: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानीज।
3: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
4: विजिट टुडे 1358 ओक ट्री रोड, इसलिन।
5: इसलिन, न्यू जर्सी। Yes, you heard that right. That's the brand new Joy Alucard's destination in the USA. Be among the first to celebrate our grand opening with an unbeatable inaugural offer of flat 30% off on making charges. Shop before 19th July and receive assured gifts with every purchase. Visit us at 42 Marconi Avenue, Esalen, New Jersey, and discover exquisite collections crafted for every celebration. Inaugural offer valid until 26th July 2026. TNC apply. Joy Alucard's, world's favorite jeweler.
6: ਮੈਨੂੰ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਖਰੀਦਣੇ ਪਸੰਦ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੇ।
7: ਆਈ ਐਂਜੋਏ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਇਨਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਐਂਡ ਕੰਪਲੈਕਸ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਮਾਮਾ।
8: ਅਰੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਟਰੈਕ ਕਰੇ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਦਾ ਚਿੰਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਰੇ ਬਾਬਾ।
4: ਅਗਰ ਆਪ ਇਨਮੇ ਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੋ ਆਪਕੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕੇ ਲਈ ਜ਼ੋਹੋ 1 ਸਹੀ ਹੈ। ਜ਼ੋਹੋ 1 ਇਜ਼ ਐਨ ਆਲ ਇਨ 1 ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਡ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਸੂਟ ਜਿਸੇ ਆਪ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਯੈਸ, ਯੋਰ ਇੰਟਾਇਰ ਬਿਜ਼ਨਸ। ਜ਼ੋਹੋ 1 ਇਜ਼ ਈਜ਼ੀ ਟੂ ਯੂਜ਼, ਸਾਥ ਸਾਥ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਔਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਕਾ ਵੀ ਬੜਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਤਾ ਹੈ। ਕਾਮ ਅਨੇਕ, ਸੌਫਟਵੇਅਰ 1, ਜ਼ੋਹੋ 1। ਗੈਟ ਯੋਰ ਫ੍ਰੀ ਟ੍ਰਾਇਲ ਐਟ zoho.com/1।
0: कुछ आवाजें सिर्फ कानों को नहीं सीधे आत्मा को छू जाती हैं। दिव्य और पवित्र आरती अब मंदिर से सीधे आप तक। मंगल आरती प्रेजेंटेड बाय आरके जूल्स। बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस। रोज सुबह 6 बजे सिर्फ 92.7 एफएम रेडियो मिर्ची पर। आल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 एफएम HD2।
9: लिसनर में बैक टू बैक गाना सुनेगा,
10: बैक टू बैक गाना सुनेगा।
9: Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot. Yes.

0: 92.7 FM. Radio Mirchi, New Jersey. South Asia's number one radio station. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
1: It's 12 p.m. Mirchi Time Check. RK Jewels. Get amazing deals on exquisite collection on wide range of flawless and stunning jewelry collection. RK Jewels. Best quality, best price.
2: इंडी टॉप 10
3: कनिका के साथ ऑन मिर्ची
4: पर अब बारी है फॉर असली पॉप काउंटडाउन ऑफ द वीक. हेलो एंड वेलकम, दिस इज द गाना इंडी टॉप 10. बंदी का नाम है आरजे कनिका. दिस इज द शो जहां हफ्ते के टॉप 10 हॉटेस्ट पॉप गानों का काउंटडाउन हम आपके लिए लेकर आते हैं. कनेक्ट विद मी इंस्टाग्राम पर जाओ, मेरा हैंडल इज @RJKanika ऑन इंस्टाग्राम. हफ्ते के टॉप 10 हॉटेस्ट पॉप गानों में एक नई एंट्री है, हमारा 90s 2000s का इंडी पॉप क्लासिक है ऑफकोर्स एज अ स्पेशल स्पॉटलाइट. ऑल दिस एंड मोर. तो सीधा शुरुआत करती हूँ इस हफ्ते की विद गाना नंबर 10. हर्ष नुसी की आवाज, हर्ष नुसी दीप क्लेयर की कॉम्पोजिशन, उन्हीं के लिरिक्स. गाने का नाम है साडी सुन. तीन हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार साडी सुन इज दिस वीक ऑन गाना नंबर 10. उसके बाद अनीश सरकार का उड़ी उड़ी पांच हफ्तों से इस काउंटडाउन पर अपना धावा बना के बैठा है. पिछले हफ्ते से अपनी पोजीशन पर बरकरार उड़ी उड़ी इज दिस वीक ऑन गाना नंबर 9. ये दोनों गाने बैक टू बैक ओनली ऑन गाना इंडी टॉप 10. बंदी का नाम है कनिका. एंजॉय.
5: नंबर 10. हो चुप कर लंघ जावे कोल दी तू संघ जावे को तकनी च तेरे रंग विच रंग जावे लोकी.

0: कहाँ है वो लोग, नजर नहीं आ रहे जो बोलते रहते हैं कि सारे इंडिपेंडेंट गाने एक ही जैसे साउंड करते हैं। ये वाला सुनिए, अनीश सरकार हृदय का गाना, गाने का नाम है उड़ी उड़ी। व्हाट अ बैंगर ऑफ अ सॉन्ग। पिछले हफ्ते से अपनी पोजीशन पर बरकरार, दिस वीक ऑन गाना नंबर 9।
1: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची।
0: हेलो एंड वेलकम, दिस इज द गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है आरजे कनिका। दिस इज द शो व्हिच इज ऑल अबाउट द हॉटेस्ट
1: मिर्ची।
0: हेलो एंड वेलकम, दिस इज द गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है आरजे कनिका। दिस इज द शो व्हिच इज ऑल अबाउट द हॉटेस्ट पॉप म्यूजिक ऑफ द

चेहरा कुछ बात उनकी आवाज में सुनते ही ऐसा मूड अच्छा हो जाता है। एंड इस आवाज को ढूंढ के हमारे पास लाए थे ए आर रहमान। साल 2009 में दिल्ली 6 में उन्होंने अपना पहला हिंदी गाना गाया था। एंड द फनीएस्ट पार्ट अबाउट दैट कोलैबोरेशन इज दैट उस समय एश किंग की हिंदी डिक्शन इतनी अच्छी नहीं थी, वो बस यूके से आए थे, बट ए आर रहमान सर ने उन्हें सुना एंड ही वॉज लाइक आप मेरे लिए ये गाना गा रहे हैं। एंड तब एश किंग ने ए आर रहमान के लिए ये वाला गाना गाया। गाने का नाम है दिल गिरा दफतन। दिल्ली 6 की बहुत बड़ी एल्बम मसक अली अर्जियां के पीछे अगर इस गाने को भूल गए थे तो वापस इसको याद कर लीजिए। तब से लेके अब तक एश किंग हैज बीन द वॉइस बिहाइंड सम ऑफ द ग्रेट सॉन्ग्स लाइक मेहरबान, टीएमओ। 2019 में उनका एक इंडी पॉप गाना आया था कॉल्ड हाई ओ

There's something about Ash King's voice which just naturally draws you towards this song. आप connect कर जाते हो. वो कभी गाने पे हावी नहीं होते हैं, बल्कि he lets you experience that song. तो अपने radio sets की volume बढ़ा दीजिए. नई नवेली entry debut कर रही है सीधा Ash King की आवाज में. गाने का नाम है किनिया सोनी. ये गाना debut कर रहा है this week on गाना number 8. You are listening to गाना indie top 10. बंदी का नाम है कनिका. Enjoy. Number 8.

0: Nerdy.
1: Escabana, escabana, sacabana. Cabana. Burga, burga. Na viva la burga. Nerdy, burga.
2: हेलो
3: हेलो
2: कौन
3: हेलो
2: हाँ बोलो कौन
3: हेलो इधर से बोल रहा हूँ आपने बोला था ये अपना सीवर साफ करने के लिए
2: हाँ बोल कौन रहा है
3: बोल कौन रहे हो कंप्लेंट करी थी आपने सीवर साफ करने की नीचे से बोल रहा हूँ आपके सीवर में घुसा पड़ा हूँ
2: बोल कौन रहे हो
3: आपने बोला था ये अपना सीवर साफ करने के लिए
2: हाँ बोला था
3: ओ भैया मेरी जान को बचाओ यहाँ पे बहुत गहरा है यार आप लोग खाते क्या हो कितना गहरा कर दिया आपने

0: से पूछ के घुसे थे क्या अंदर?
1: ज्यादा सवाल मत करो, मेरी बात सुनो सिर्फ।
0: हाँ बोलो।
1: ओए यार आपके टॉयलेट पे अपनी कोई बैठा के क्या क्या फेंक रहा है यार ऊपर से? ओए बंद करो सर। ओ भैया मेरी जान को बचाओ, यहाँ पे बहुत गहरा है यार, आप लोग खाते क्या हो? कितना गहरा कर दिया आपने।
0: कौन बोल रहा है, कहाँ घुस गए यार?
1: हेलो इधर से बोल रहा हूँ, आपने बोला था ये अपना सीवर साफ करने के लिए?
0: हाँ हाँ बोला था, हुआ क्या है कुछ तो बताओ।
1: ज्यादा सवाल मत करो, मेरी बात सुनो सिर्फ। ओए यार आपके टॉयलेट पे अपनी कोई बैठा के क्या क्या फेंक रहा है यार ऊपर से? ओए बंद करो सर।
0: कब आया था, कब घुसा अंदर?
1: फिर सवाल यार, मैं यहाँ पे अटका पड़ा हूँ, मुझे बाहर निकालो यार कैसे भी करके।
0: तू कहाँ से रहा है? नहीं हो गया है,
1: सीवर साफ करने की कंप्लेंट करी थी, नीचे घुसा पड़ा हूँ आपके सीवर में, बाहर निकालो यार।
0: मैं तो इधर ऑफिस में हूँ अपने।
1: ऑफिस क्यों गए? सीवर साफ करवाना था, मैं तो यहाँ पे घुसा पड़ा हूँ ना अंदर।
0: मेरी सीवर में घुसा है, किसी और की सीवर में घुस गया?
1: ये बदबू से पता चल रहा है सीवर तेरा ही है यार।
0: सीवर में मरा रहा है तू?
1: गाली तो मत दो।
0: हेलो
1: हेलो,
0: फिर फोन कर दिया तूने?
1: अच्छा है, सीवर साफ हो जाएगा, काम करो, एक चीज बोलो।
0: क्या बोलो?
1: कुकड़ू को
2: सर आई एम सो सॉरी, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मुझे किसी ने बताया था कि आपने सीवर साफ करने की कंप्लेंट करी थी, आप रेडियो मिर्ची पे हैं और आपका पुरका फट गया।
0: कुकड़ू को
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
4: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
5: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
6: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, लेकिन शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए, इसीलिए लायन मॉर्गेज, the king of mortgage industry.
7: Since over 15 years, Lion Mortgage has been assisting first-time home buyers with loan. Their experience and knowledge of mortgage industry really helps clients to get the best possible deals on refinance. A professional service with quick, accurate and impressive follow-up. Lion Mortgage offers special zero closing cost on refinance options.
5: For more information, call 732-339-3155. That is 732-339-3155.
8: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
9: तो आइए फैशन क्वीन, यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानी।
8: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
9: विजिट टुडे 1358 ओक ट्री रोड, इजलिन।
10: ओक ट्री रोड लो बेस्ट डायमंड ज्वेलरी कोसम सर्च इस्तुन्नारा कृष्णा ज्वेलर्स मी एक्सक्लूसिव डायमंड स्टोर।
11: टॉप क्वालिटी नेचुरल सर्टिफाइड डायमंड्स, GIA सॉलिटेयर्स, नेकलेसेस, रिंग्स, मरियू स्टनिंग पेंडेंट्स, कृष्णा ज्वेलर्स, ओक ट्री रोड, इजलिन।
12: जय गुरुदेव, गायत्री चेतना सेंटर पिस्कैटोपे की ओर से आप और आपके परिवार को गुरु पूर्णिमा एवं रुद्राभिषेक महोत्सव में स्नेहपूर्ण आमंत्रण। शनिवार 1 अगस्त को सुबह 10 बजे शिवजी रुद्राभिषेक और शाम 5 बजे विराट दीप यज्ञ। रविवार 2 अगस्त को सुबह 10 बजे 251 कुंडीय गायत्री महायज्ञ, शांति कुंज हरिद्वार के पूज्य संतों द्वारा वैदिक विधि से अनुष्ठान और डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी की पावन उपस्थिति। अधिक जानकारी के लिए 732-357-8200। जय गुरुदेव।
13: Enjoy your golden days with Kalyan Jewelers. Get up to 50% off on making charges. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Iselin, New Jersey. Conditions apply.
14: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है।
15: कोहली गोज डाउन द ग्राउंड, कोहली गोज आउट ऑफ द ग्राउंड।
14: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
16: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
14: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर 1, सिर्फ एक ही होता है,
17: एक ही होता है।
14: जैसे USA की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिसनरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर 1 साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।

0: आदित्य रिखारी कुटले खां की आवाज, रावटोर का म्यूजिक, कोक स्टूडियो भारत का गाना, दिस वाज ए अजनबी। पिछले हफ्ते से दो पोजीशन नीचे ड्रॉप होके ए अजनबी वाज दिस वीक ऑन गाना नंबर 6। उससे पहले हमने सुना अनूप जैन की आवाज में, गाने का नाम है अर्ज किया है, अ कोक स्टूडियो भारत सॉन्ग। 24 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार, अर्ज किया है वाज ऑन गाना नंबर 7।
1: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ On Mirchi.
0: Hello, hello, स्वागत है आपका। This is the Gaana Indie Top 10. बंदी का नाम है RJ Kanika. This is the show which is all about the hottest pop music of the week, all about the hottest pop stars of the music scene. Instagram पर जाओ, मेरे साथ कनेक्ट करो, मेरा हैंडल इज @RJ Kanika. कोई गाना शेयर करना हो, बातें बतानी हो, बिंदास आके हिट मी अप। गाना नंबर 6 पर हमने सुना ए अजनबी इन द वॉइस ऑफ आदित्य रिखारी एंड कुटले खां, एक कोक स्टूडियो भारत का गाना। किसी भी आर्टिस्ट के लिए गाना एक बहुत बड़ी बात होती है। हर आर्टिस्ट का सपना होता है एक कोक स्टूडियो भारत का गाना करना, एंड आदित्य रिखारी पिछले कुछ ही सालों में वो चोजन पॉप स्टार बन चुके हैं। इन द वर्ल्ड ऑफ इंटरनेट ना, ये स्टार बनने के मायने बदल गए हैं। स्पेशली पॉप म्यूजिक में रिवाइंड करूं, 20 साल पहले आप चूज किए जाते हो, आपकी एल्बम आती है, आपको ब्रेक मिलता है, तब आप फेमस होते हैं। लेकिन अब पहले ऑडियंस आपको देखती है, डिसाइड करती है, आपके साथ एंगेज करती है, तब आपको आपका ब्रेक मिलता है। एंड आदित्य रिखारी उसका परफेक्ट एग्जाम्पल है। दिल्ली के एक यंग सिंगर सॉन्ग राइटर लॉकडाउन के दौरान अपने कमरे से अपने गाने अपलोड कर रहे थे, पर उनके गाने ऐसे फॉरवर्ड हो रहे थे, वायरल हो रहे थे हर जगह, बिकॉज वो हमको हमारी ही कहानी सुना रहे थे। एंड देन उनका गाना आया कॉल्ड फासले। इस गाने ने उनको म्यूजिक मैप में पिन कर दिया था, एंड देन केम समझो ना। इस गाने के बारे में तो मैं जितनी बात करूं कम है। इट गॉट अडैप्टेड इन अ कार्तिक आर्यन मूवी, जो एक दिल्ली से आए यंग सिंगर सॉन्गराइटर के लिए बहुत बड़ी बात है। पर मेरे हिसाब से आदित्य रिखारी का सबसे बड़ा गाना इस साहिबा। उनके जितने कॉन्सर्ट होते हैं, वो जब भी इंटरव्यू करते हैं, आप कहीं चले जाए, एक गाना जो हर फैन उनसे डिमांड करता है कि प्लीज ये वाला गाना गा दीजिए, वो गाने का नाम है साहिबा। तो अपने रेडियो सेट्स की वॉल्यूम बढ़ा लीजिए। अ स्पेशल स्पॉटलाइट ऑन आदित्य रिखारीज बेस्ट सॉन्ग, दिस इज साहिबा, प्लेइंग राइट नेक्स्ट फॉर यू ओनली ऑन गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है कनिका। एंजॉय।

आदित्य ने कहा की कॉम्पोजिशन उन्हीं की आवाज, दैट वॉज साहिबा. दिस सॉन्ग इज अ रिमाइंडर दैट एक अच्छे गाने को किसी बड़ी फिल्म या बड़े हीरो की जरूरत ही नहीं होती है. एंड आई एम प्रिटी श्योर आदित्य रिखारी ऐसे और एग्जाम्पल्स हमको देते जाएंगे. काउंटडाउन में आगे बढ़ते हैं. अगले वाला गाना इज बाय संजू राठौड़, उन्हीं की कॉम्पोजिशन. गाने का नाम है बैंगल्स. 5 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार. बैंगल्स इज प्लेइंग राइट नेक्स्ट फॉर यू ऑन गाना नंबर 5.

0: बजट। मतलब विरानी ज्वेलर्स पे एक्सक्लूसिव डिस्काउंट है सिर्फ मिर्ची लिसनर्स के लिए। 0% मेकिंग चार्जेस ऑन 22 कैरेट एंड डायमंड ज्वेलरी, और पुराना गोल्ड दो तो 100% वैल्यू मिलेगी ट्रेड इन में। सिर्फ फ्रीडम ही फ्रीडम,
1: ओनली ऑन 92.7 FM रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी। इट्स हॉट।
2: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
3: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
4: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
5: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानी।
4: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
5: विजिट टुडे, 1358 Oak Tree Road, Islington.
6: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
7: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islington.
8: Gulabi saadi ani lali lal lal.
9: T-Series present The Mall 4. Starring Ajay Devgan, Arshad Varsi, Ritesh Deshmukh and Javed Jaffrey. Directed by Indra Kumar. Releasing on the 10th of July. A complete family entertainer.
2: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
3: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
10: तेरा क्या होगा कालिया?
11: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार।
10: अब मिर्ची खा।
12: Radio Mirchi, it's hot.
13: It's 12:30 p.m. Mirchi time check. RK Jewels. Get amazing deals on exquisite collection on wide range of flawless and stunning jewelry collection. RK Jewels. Best quality, best price.
14: Ghana Indie Top 10.
15: Kanika ke saath. On Mirchi.
16: Number 4.

0: दिलजीत दोसांझ, सिया, डेविड गेटा का गाना, गाने का नाम है रांझा, पिछले हफ्ते से एक पोजीशन नीचे ड्रॉप होके 13 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार। रांझा वाज दिस वीक ऑन गाना नंबर 4।
1: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची।
0: हेलो एंड वेलकम, दिस इज द गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है आरजे कनिका एंड दिस शो इज ऑल अबाउट द हॉटेस्ट पॉप म्यूजिक ऑफ द वीक। एट आरजे कनिका ऑन इंस्टाग्राम पर आए, मेरे साथ कनेक्ट करी, कोई गाना सजेस्ट करना है, बिंदास आके हिट मी अप। इट्स टाइम फॉर व्हाट वी कॉल हमारी कसेट क्लासिक, जहाँ पर हम 90s एंड 2000s के आइकॉनिक इंडी पॉप गानों को फीचर करते हैं। द सॉन्ग वी फीचर्ड लास्ट वीक वॉज
2: मोहब्बत लुटाऊंगा मैं छेड़ के मन का साज साज फिर गाऊंगा फिर सबके दिल को।
0: द सॉन्ग वी गोइंग टू फीचर दिस वीक इज

0: कभी।
1: गाने का नाम है बूंदे बाय द सिल्क रूट। ये गाना 1998 में आया था, सिल्क रूट द बैंड की डेब्यू एल्बम बूंदे का ही पार्ट था। जब ये एल्बम रिलीज हुई थी, सिल्क रूट ने पॉप म्यूजिक स्पेस में अकूस्टिक गिटार, फोक इन्फ्लुएंसेस एंड सॉफ्ट मेलोडी, वेरी पोएट्री फर्स्ट गानों को इंट्रोड्यूस किया था। बैंड के लीड वोकलिस्ट मोहित चौहान, बैंड मेंबर्स अतुल मित्तल, केम त्रिवेदी एंड केनी पुरी, उनकी म्यूजिक आइडेंटिटी किसी फिल्म से कम नहीं थी। उनकी म्यूजिक वीडियोज, द वे देयर म्यूजिक ट्रैवल्ड इज समथिंग जो आज भी हम जानते हैं। इसी एल्बम का पार्ट था डूबा डूबा, जो हर घर तक पहुंच गया। पर उस एल्बम में और बहुत सारे ऐसे जेम्स हैं जिन्हें आपको कभी फुर्सत लेके सुनना चाहिए। एंड अगर आप सच में उनकी म्यूजिकलिटी को जेन्युइनली एंजॉय करना चाहते हो, तो ये वाला गाना बूंदे उसे परफेक्टली डिफाइन करता है। गाने के लिरिक्स प्रसून जोशी ने लिखे थे और उसमें बारिश ना सिर्फ ऐसे मौसम का पार्ट नहीं है, बल्कि बूंदों को यादों से कंपेयर किया गया है, किसी की खुशबू से कंपेयर किया गया है, एक ऐसी प्रेजेंस से कंपेयर किया गया है जो हमारे सामने नहीं है बट आप हर जगह महसूस करते हैं। आज भी जब मैं ये गाना सुनती हूँ तो प्रोडक्शन में भी आपको 19-20 लग सकता है, बट द इमोशन इज सो फ्रेश एंड शायद इसीलिए ये एक प्रॉपर क्लासिक है। तो अपने रेडियो सेट्स के वॉल्यूम बढ़ा लीजिए। सिल्क रूट द बैंड का गाना मोहित चौहान की आवाज में, दिस इज बूंदे, प्लेइंग राइट नेक्स्ट फॉर यू ओनली ऑन गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है कनिका। एंजॉय।

0: व्हाट इज दिस सॉन्ग. ऐसा लग रहा है कि मैं किसी की मेमोरी में ऐसे फ्लोट कर रही थी. मोहित चौहान की आवाज, सिल्क रूट द बैंड का गाना, दैट वॉज बूंदे ऑन अ कैसेट क्लासिक दिस वीक. Pinch me, Ashkai, because I think this is one of the best picks we've had so far. At RJ Kanak on Instagram par aao, Ashkai, my sound producer, aur main aapki sari suggestions ko bahut seriously lete hain. 90s 2000s ka wo indie pop gana jo aaj bhi aapke liye super special hai, humse aake share kariye. We might feature your song next week. Now back to the countdown, agle wale gaane ki bari. It is again a Diljit Dosanjh song. पिछले हफ्ते से तीन पोजीशन ऊपर जंप किया ये गाना. गाने का नाम है डीलर. 16 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार. डीलर इज प्लेइंग राइट नेक्स्ट फॉर यू ऑन गाना नंबर 3. यू आर लिसनिंग टू गाना इंडी टॉप 10. बंदी का नाम है कनिका. एंजॉय.
1: नंबर 3.

0: 92.7 FM. Radio Mitri, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
1: Ghana Indie Top 10.
2: Kanika ke saath. On Mirchi.
3: Hello, Mirchi sun rahe hain aap. Show ka naam hai Ghana Indie Top 10. Bandi ka naam hai RJ Kanika. And this show is all about the hottest pop music of the week. Connect with me Instagram par. Mera handle is @RJKanika. Gana number 10 se gana number 3 ka safar hum pura kar chuke hain. It's time for the top 2 songs of the week. Lekin ek quick recap karte hain right from the top. Gana number 10 par is hafte Harsh Nussi ka Saadi Sun. उसके बाद अनीश सरकार का उड़ी उड़ी और गाना नंबर 9. एक नई नवेली एंट्री एश किंग का गाना किनिया सोनी ने डेब्यू किया है और गाना नंबर 8. This song is getting stronger by the week. पिछले हफ्ते से एक पोजीशन ऊपर जंप करके अर्ज किया है this week on गाना नंबर 7.
4: कायरे जो थे वो शायर बने.
3: उसके बाद आदित्य रिखारी रैबिट और कुटले खां का गाना एक और कोक स्टूडियो भारत का गाना ए अजनबी on गाना नंबर 6. संजू राठौड़ का बैंगल्स on गाना नंबर 5. दिलजीत दोसांझ सिया का रांझा ऑन गाना नंबर 4. बैक टू बैक बाय दिलजीत उनका गाना डीलर दिस वीक ऑन गाना नंबर 3. एंड नाउ फॉर द टॉप 2 सॉन्ग्स ऑफ द वीक. बंजारे का गाना बैरन 15 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार. बैरन इज दिस वीक ऑन गाना नंबर 2. एंड द न्यूमेरो उनो सॉन्ग ऑफ द वीक 15 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार. मिट्टा रौर का गाना उन्हीं की कॉम्पोजिशन मिट्टा रौर स्वरा वर्मा की आवाज में. गाने का नाम है शीशा वंस अगेन ऑन गाना नंबर 1. ये दोनों गाने बैरन ऑन गाना नंबर 2 शीशा ऑन नंबर 1 बैक टू बैक ओनली ऑन गाना इंडी टॉप 10. बंदी का नाम है कनका. एंजॉय.
1: नंबर 2.

0: are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: Oh no!
3: कार खराब मतलब दिन और मूड दोनों खराब, इसीलिए अपनी कार को सही केयर दो. राज ऑटो सेंटर विद 30 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, द फैमिली ओन्ड ऑटोमोटिव सेंटर प्रोवाइडिंग टॉप नॉच सर्विसेज बाय एएससी सर्टिफाइड टेक्नीशियंस. विजिट राज ऑटो सेंटर एट 1400 जर्सी एवेन्यू, नॉर्थ ब्रंसविक टाउनशिप, 1213 न्यू जर्सी 27, सोमरसेट. ऑटो बॉडी शॉप, 700 हैरिस एव, मिडिलसेक्स. इफ यू आर विद राज ऑटो सेंटर, यू आर इन गुड हैंड्स.
4: Enjoy your golden days with Kalyan Jewelers. Get up to 50% off on making charges. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Iselin, New Jersey. Conditions apply.
5: Tera kya hoga, Kalya?
6: Sardar, maine aapka namak khaya, Sardar.
5: Ab, mirchi kha.
7: Radio Mirchi, it's hot.

0: 92.7 FM. Radio Mirchi, New Jersey. South Asia's number one radio station. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
1: It's 1 p.m. Mirchi Time Check. RK Jewels. Get amazing deals on exquisite collection on wide range of flawless and stunning jewelry collection. RK Jewels. Best quality, best price.
2: Only on Mirchi. It's hot.
3: The show starts in 5, 4, 3, 2, 1.
4: यादें कभी पुरानी नहीं होती, सिर्फ उन्हें याद करने की वजह बदल जाती है। इसलिए कुछ गाने, कुछ फिल्में और कुछ आवाजें सालों बाद भी बिल्कुल वैसी ही महसूस होती हैं। हिट होना अलग बात है, याद रह जाना वो बहुत बड़ी बात है। और शायद इसलिए बॉलीवुड में सबसे मुश्किल काम ब्लॉकबस्टर बनाना नहीं, एक लेगेसी बनाना है। आज के काउंटडाउन में भी कुछ नए गाने होंगे, कुछ पुरानी यादें होंगी और कुछ ऐसे सवाल होंगे जो शायद आप घर ले जाएंगे। हाय, मैं हूं सुरेन एंड दिस इज द मिर्ची टॉप 20, इंडिया का सबसे डेफिनेटिव हिंदी फिल्म म्यूजिक / बॉलीवुड म्यूजिक काउंटडाउन। और शुरुआत कर रहा हूं विद द फर्स्ट सॉन्ग जो है नंबर 20 की पोजीशन पर। मुझे लगा था शायद ये अलविदा कहने वाला है, लेकिन नहीं, ये हमारे लिए थोड़ा और रुक गया है। द ग्रेटेस्ट लव सॉन्ग फ्रॉम लास्ट ईयर, दिस इज सैयारा
5: नंबर 20।

Cocktail 2 एक लंबी लिस्ट का हिस्सा बन गया है. Films that created some excitement at the start, लेकिन उसके बाद, well, they just exist. इनके बारे में हमें पता है, लेकिन इनके साथ वो कनेक्शन नहीं बन पाया है. कभी कभी किसी फिल्म की सबसे बड़ी पब्लिसिटी उसका ट्रेलर नहीं होती, उसका गायब हो जाना होती है. पिछले हफ्ते एक फिल्म ने पूरे देश को एक ही सवाल पूछने पर मजबूर कर दिया. सतलज रिलीज हुई, लोगों ने देखनी शुरू की और फिर रातों रात फिल्म हटा दी गई. एक वजह भी बताई गई पर वजह कन्विंसिंग नहीं थी. बहस शुरू हो गई लेकिन मेरे दिमाग में एक ही बात घूमती रही, अगर कोई कहानी इतनी खतरनाक है कि उसे देखना ही नहीं चाहिए तो उसे हटा देने के बाद लोग उसे और ज्यादा क्यों ढूंढते हैं. शायद क्योंकि इंसान की फितरत ही कुछ ऐसी होती है, जिस दरवाजे पर नो एंट्री लिखा हो सबसे पहले वही दरवाजा खोलने का मन करता है. और इंटरनेट के जमाने में एक बार कोई चीज दुनिया के सामने आ गई, उसे मिटाना शायद उसे और ज्यादा फैला देने जैसा होता है. नंबर 18 पर इस हफ्ते है तू ही दिसदा भूत बंगला से, एंड देन एक ऐसी फिल्म जिसने किसी कंट्रोवर्सी से नहीं सिर्फ लोगों की मोहब्बत से अपनी जगह बनाई है. दिलजीत दोसांझ सतलज में भी हैं और इस फिल्म में भी हैं. तो मैं वापस आऊंगा. और नंबर 17 दिस इज मस्कारा. दिलजीत दोसांझ सतलज में भी हैं और इस फिल्म में भी हैं. तो मैं वापस आऊंगा. और नंबर 17 दिस इज मस्कारा. नंबर 7

0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
1: हेलो संदीप नागपाल जी बोल रहे हैं।
2: हाँ जी बोल रहा हूँ।
1: हाँ जी डीडीए से बोल रहा हूँ। आपका ये ड्राफ्ट भेजा है वापस, आपने डीडीए फ्लैट के लिए अप्लाई किया था ना?
2: तो हुआ कैसे है, मतलब हमें तो बड़ी उम्मीद थी भाई कि निकलेगा हमारा।
1: अब सर ये किस्मत की बात है सर, इसमें तो कुछ कर नहीं सकते ना। अब जिसके निकल गए हैं वो लकी है सर। मैं तो बस आपसे ये कह रहा था ये 7,500 रुपए का आपका ड्राफ्ट है जो वापस करना है, कहाँ कुरियर कर दूँ, आप आगे ले लेंगे इसको।
2: कितने का ड्राफ्ट है मेरा?
1: 7,500 रुपए का।
2: अरे भाई साहब मैंने 1.5 लाख जमा किया था, मैंने 7,000 रुपए दे रहा हूँ मुझे।
1: नहीं नहीं सर, ये 25,000 रुपए आपके प्रोसेसिंग फीस के कट गए।
2: किस चीज की फीस?
1: प्रोसेसिंग फीस जो आपने अप्लाई किया था ना डीडीए के फ्लैट के लिए।
2: तो भाई साहब ऐसा कहीं मेंशन नहीं था कि मैंने मेरे मतलब इसके फीस कटेगी नहीं कटेगी?
1: सर हर चीज मेंशन नहीं करी जाती ना, मैं आपको आगे बता रहा हूँ। 50,000 रुपए आपके मशीन जो आपने बनवाई थी ना लकी ड्रॉ के लिए मशीन, उसके 50,000 रुपए कट गए आपके।
2: मतलब मेरे ड्रॉ के लिए कुछ स्पेशल मशीन बनी है क्या?
1: सर आपके ड्रॉ के लिए नहीं सर, करोड़ों की मशीन है आपके ड्रॉ के लिए, सबके ड्रॉ के लिए बने, उसे पर्चियां डलती है बहुत सारी करोड़ों के हिसाब से, वो मशीन महंगी आती है। 20,000 रुपए आपके प्रिंटिंग के कट गए हैं, 30,000 रुपए हमारे डीडीए का लोगो चेंज हुआ है, आप लोगों की वजह से लोगो चेंज होता है, और 15,000 रुपए सिक्योरिटी के हमने काटे क्योंकि सिक्योरिटी हमने लगा रखी है, कभी किसी को गुस्सा आ जाए ना। 7,500 रुपए आपके बचते हैं।
2: ये भी तुम्हें देखना पड़ेगा, ये हमें तुम फोन क्यों कर रहा हो?
1: ऐसे कैसे रख ले यार, आपका पैसा आपको वापस देंगे हम।
2: भाई आप ही रखो यार, आप मतलब हमें ज्यादा रख लो, ये बीच में रख लो हमें ज्यादा।
1: अरे यार
2: ढूंढ रहा पब्लिक को यार।
1: तो यार ये आपको पहले सोचने चाहिए ना संदीप जी, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कर रहा ना, ये तो कम डीडीए की तरफ से। आप एक तो गुस्सा ना करें, एक सेकंड फोन आ रहा है, रुकिए रुकिए। हेलो हाँ हाँ जी बोल रहा हूँ डीडीए से। सर आपके 5,882 रुपए बनते हैं, आके ले जाइएगा ठीक है। हाँ संदीप जी
2: अरे अभी अभी आप कह रहे थे ना 20,000 रुपए उसके करने के नाम जो कहना लोगो चेंज करा अपना डीडीए ने।
1: आप मुझे बताइए, आप मुझे बताइए,
2: तुमने आम संगत में बनाया ठीक है ना।
1: हाँ?
2: भैया पैसे भाड़
1: मगा। आप मेरी बात सुनिए, आप वैसी टेंशन लग रहे हैं, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए संदीप।
2: हाँ बोलो बोलो।
3: संदीप मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, आप रेडियो मिर्ची पे हैं, आपका मुर्गा बन गया है।
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
5: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
6: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
7: Oh no!
8: कार खराब मतलब दिन और मूड दोनों खराब, इसीलिए अपनी कार को सही केयर दो। राज ऑटो सेंटर विद 30 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, द फैमिली ओन्ड ऑटोमोटिव सेंटर प्रोवाइडिंग टॉप नॉच सर्विसेज बाय एएससी सर्टिफाइड टेक्नीशियंस। विजिट राज ऑटो सेंटर एट 1400 जर्सी एवेन्यू, नॉर्थ ब्रंसविक टाउनशिप, 1213 न्यू जर्सी 27, सोमरसेट, ऑटो बॉडी शॉप, 700 हैरिस एव, मिडिलसेक्स। इफ यू आर विद राज ऑटो सेंटर, यू आर इन गुड हैंड्स।
9: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
10: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
11: Inefficient,
12: very complex,
13: clumsy or
14: confusion ही confusion.
15: Disjointed software को use करना उतना easy नहीं जितना आप समझ रहे हैं. टूटे

Wow, the craziest songs from Dhurandhar 2. Ye tha Main Aur Tu by Jasmine Sanilas. And I don't know agar Dhurandhar ek sachi kahani hai ya it's fiction. But Bollywood filmmakers ko sachi kahaniyan pasand badi hain. Which is why we love our biopics. And ek aur biopic dekhne ke liye ab janta utsuk hai. Saurav Ganguly ki biopic Dada. क्योंकि इस हफ्ते उनकी बायोपिक का फर्स्ट लुक आ गया है एंड मैं शायद माइनॉरिटी में हूं लेकिन मुझे क्रिकेट बायोपिक्स का कॉन्सेप्ट ही फ्लॉड लगता है. क्यों ऐसा क्यों बोल रहा है ये लड़का? वेल, क्योंकि कुछ जिंदगियां एक फिल्म में नहीं समा पाती. सोचिए सौरव गांगुली लॉर्ड्स में एक डेब्यू सेंचुरी, मैच फिक्सिंग के बाद इंडियन क्रिकेट की कमान संभाली, देन 2002 में वो नैटवेस्ट ट्रॉफी फाइनल. And then आया उनका सबसे मुश्किल चैप्टर, ग्रेग चैपल एज द कोच ऑफ द इंडियन क्रिकेट टीम. उस वक्त सौरव कप्तान थे, फिर टीम से बाहर हो गए और फिर एक कमबैक भी हुआ. एंड देन यू गॉट क्रिकेट के बाद की जिंदगी. सिर्फ यही कहानी सुनाने अगर बैठोगे तो 10 घंटे निकल जाएंगे. एंड सौरव गांगुली द क्रिकेटर तो एक तरफ है, इसके अलावा सौरव गांगुली द पर्सन, द ह्यूमन बींग भी तो दिखाओगे. और यही वजह है कि मुझे लगता है कि क्रिकेट बायोपिक्स अक्सर स्कोर कार्ड दिखा देती हैं, क्रिकेटर को नहीं. इसलिए राजकुमार राव और विक्रमादित्य मोटवाने पर पूरा भरोसा होने के बाद भी मैं सौरव गांगुली की बायोपिक को लेकर थोड़ा स्केप्टिकल हूं, क्योंकि कुछ कहानियां फिल्म नहीं वक्त मांगती है. सिर्फ एक एमएस धोनी की बायोपिक थी विच वर्क फॉर सम रीजन, बट उसके अलावा 83 अजहर नॉट सो मच. है नंबर 15 पर इस हफ्ते डेब्यू कर रहा है एक नया गाना मेरे फेवरेट आर्टिस्ट तलविंदर की आवाज में, पल पल जीना मुहाल. गाना याद है ना? वेल, ये गाना है क्यों फ्रॉम वेलकम टू द जंगल एंड इट्स हियर ऑन द मिर्ची टॉप 20. नंबर 15.

0: मतलब विरानी ज्वेलर्स पे एक्सक्लूसिव डिस्काउंट है सिर्फ मिर्ची लिसनर्स के लिए। 0% मेकिंग चार्जेस ऑन 22 कैरेट एंड डायमंड ज्वेलरी, और पुराना गोल्ड दो तो 100% वैल्यू मिलेगी ट्रेड इन में। सिर्फ फ्रीडम ही फ्रीडम,
1: ओनली ऑन 92.7 FM रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी। इट्स हॉट।
2: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
3: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
4: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
5: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानीज।
4: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
5: विजिट टुडे 1358 ओक ट्री रोड, इज़िलिन।
6: कुछ आवाजें सिर्फ कानों को नहीं सीधे आत्मा को छू जाती हैं। दिव्य और पवित्र आरती अब मंदिर से सीधे आप तक। मंगल आरती प्रेजेंटेड बाय आरके जूल्स। बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस। रोज सुबह 6 बजे सिर्फ 92.7 FM रेडियो मिर्ची पर। आल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2।
7: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, लेकिन शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए। इसीलिए लायन मॉर्गेज, the king of mortgage industry.
8: Since over 15 years, Lion Mortgage has been assisting first-time home buyers with loan. Their experience and knowledge of mortgage industry really helps clients to get the best possible deals on refinance. A professional service with quick, accurate and impressive follow-up. Lion Mortgage offers special zero closing cost on refinance options.
9: For more information, call 732-339-3155. That is 732-339-3155.
10: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
11: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
12: Batting to kafi sare karte hain. Virat, ek hi hota hai.
13: Kohli goes down the ground. Kohli goes out of the ground.
12: Filmon mein villain ko dhote to bahut hain, par Bachchan ek hi hota hai.
14: Isse apni jeb mein rakh le, Peter. अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
12: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर वन, सिर्फ एक ही होता है,
15: एक ही होता है।
12: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिस्नरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची। मिर्ची बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।
16: Only on Mirchi. It's hot. Number 14.

अनपॉपुलर ओपिनियन बट रोमकॉम्स आर डेड। और शायद सबसे दुख की बात ये नहीं है, सबसे दुख की बात ये है कि हमें पता भी नहीं चला कि ये कब हुआ। नंबर 13 पर इस हफ्ते है तुझको फ्रॉम कॉकटेल बाय अरिजीत सिंह। और इस गाने को सुनते ही मुझे वो वक्त याद आ गया जब बॉलीवुड हमें प्यार पर यकीन दिला देता था।

0: एक लड़का, एक लड़की, थोड़ी सी नोक झोंक, थोड़ी सी दूरियां, और हम दो घंटे उनके साथ जी लेते थे।
1: तुमसे ही दिन होता है, सुरमई शाम आती है, तुमसे ही, तुमसे ही।
0: फिर गीत आई और अचानक पूरे देश को लगा यार काश जिंदगी में कोई गीत मिल जाती है।

0: एंड देन यू हैड बनी और नैना. हम सबको लगा शायद प्यार और सपने दोनों साथ चल सकते हैं. उसके बाद पता ही नहीं चला रोम कॉम्स कहाँ खो गए. फिल्में आज भी बनती हैं, लड़के लड़कियां आज भी मिलते हैं, डेट्स पे जाते हैं, उनके ब्रेकअप्स होते हैं, लेकिन वो धड़कन, वो तड़प, वो थिएटर से बाहर निकलते वक्त दिल का हल्का सा भर आना, वो कहीं रह गया. रोम कॉम्स आर डेड बट नॉट रोमांस. और फिल्में शायद बुरी हों बट कभी कभी उन बुरी फिल्मों में बहुत अमेजिंग म्यूजिक मिलता है. लाइक अ हंसी तो फंसी, पीपल लव द सॉन्ग ज़हन नसीब द मोस्ट. लेकिन मुझे, वेल आई फेल इन लव with a completely different song. Aaj, we rewind this song by Sanam Puri.
1: Top 20 Rewind.

0: इतने महीने बाद भी आफ्टर वॉचिंग बोथ द फिल्म्स एक बात है जो परेशान करती है मुझे अब भी. इज धुरंधर अ रियल लाइफ स्टोरी? क्या इसके कैरेक्टर्स सच्चे हैं? आखिर सच क्या है? इस हफ्ते एक और जासूस की कहानी रिलीज हुई बाय द नेम ऑफ अल्फा. मेरे कई दोस्त हैं जिन्होंने अल्फा देखी और एक बात बार बार सुनने को मिली, पर्सपेक्टिव. और तब मुझे एहसास हुआ कि हर सच के शायद तीन अलग अलग वर्जन होते हैं. एक जो वाकई हुआ है, दूसरा जो हमें बताया गया है, और तीसरा जो हम मान लेते हैं. अब वो चाहे उरी हो, धुरंधर हो या फिर अल्फा हो, सिनेमा सिर्फ कहानियां नहीं सुनाता, वो हिस्ट्री को इंटरप्रेट भी करता है. और वही मेरी सबसे बड़ी क्यूरियोसिटी रहती है. मैं हीरो देखने थिएटर नहीं जाता, मैं सच के जितना करीब हो सकता हूँ उतना पहुंचना चाहता हूँ. बाकी फैसला आप कीजिए. फिल्म किसकी थी, पर्सपेक्टिव किसका था? अल्फा वेल इज गेटिंग मिक्स्ड रिएक्शंस फ्रॉम द ऑडियंस, बट हाँ, YRF की स्पाई यूनिवर्स पक्का मुश्किल में है. दे बैडली नीड अ रीसेट. नंबर 11 पर है एक और नई फिल्म बेबी डू डाई डू. आई होप आई गॉट द प्रोनाउंसिएशन राइट. और अफसोस, एक इतनी इंटरेस्टिंग असैसिन थ्रिलर को इंट्रोड्यूस किया गया है इश्क अमीना 2.0 से. कभी कभी सबसे बड़ा प्लॉट ट्विस्ट फिल्म में नहीं, उसकी म्यूजिक स्ट्रेटजी में होता है.
1: नंबर 11,
2: कत्ल करती हैं निगाहें कि दिल को खबर ना हो, जख्म देती है ऐसा कि दर्द का असर ना हो. हमने समझा था इश्क मोहब्बत को ही ख्याले दिल, लगता है डर बस इतना वो मेरा हम शक्ल ना हो.

0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट.
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
4: तो आइए फैशन क्वीन. यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानी.
3: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन.
4: विजिट टुडे 1358 ओक ट्री रोड, इजलिन.
5: Enjoy your golden days with Kalyan Jewelers. Get up to 50% off on making charges. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Iselin, New Jersey. Conditions apply.
6: Listener mein back to back gana sunega.
7: Back to back gana sunega.
6: Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
0: Surin ke saath, only on Mirchi. It's hot.
8: Number 10.

0: बॉलीवुड को समर कॉमेडीज बनाना बहुत अच्छी तरह आता है, जैसे अभी चटनी फ्रॉम धमाल 4, भोजपुरी फ्लेवर, फुल ऑन मजे, एंड गाना चलेगा, फिल्म अपना काम कर जाएगी, एंड देन यू हैव अ वाव फ्रॉम है जवानी तो इश्क होना है। इसके बारे में ज्यादा कुछ वैसे अब कहने को है नहीं, फिल्म आई फिल्म गई, इन गाना रह गया नंबर 9 पर।
1: नंबर 9 सुरमाया खच जद पाओ मुंडे तक केंदे नहीं दीवा।

यार एक बात माननी पड़ेगी, इट फील्स सो गुड टू हियर नीरज श्रीधर वॉइस अगेन, लेकिन इसी गाने ने मुझे एक सच्चाई से मिलवा दिया। हॉलीवुड अपने लेजेंड्स को सेलिब्रेट तो बहुत करता है, बस उन्हें हायर करना बंद कर देता है। नीरज श्रीधर की आवाज आज भी उतनी ही फ्रेश लगती है, फिर नए गाने उनके पास क्यों नहीं जाते? और सिर्फ सिंगर्स ही नहीं, कंपोजर्स भी। एक सवाल आप खुद से पूछिए, आखिरी शंकर एहसान लॉय एल्बम आपने कौन सी सुनी थी, जिसके गाने आपने रिपीट पर सुने, जिसके लिरिक्स आज भी याद हैं आपको? सितारे जमीन पर जो आमिर खान की फिल्म थी उसमें उन्हीं का म्यूजिक था, लेकिन एल्बम वैसे कनेक्ट नहीं कर पाई जितना सबने सोचा था। और उसके बाद इंडस्ट्री फिर नए नामों की तरफ मुड़ जाती है। अजीब बात है राइट? अब से एक महीने बाद we all will be celebrating 25 years of one of the most iconic albums ever. Yes.

चाहता है। पूरा बॉलीवुड इस एल्बम को सल्यूट करेगा, उसकी लेगेसी सेलिब्रेट करेगा, लेकिन जब अगली बड़ी फिल्म बनेगी फोन शायद किसी और कंपोजर को जाएगा। नया हमेशा बुरा नहीं होता, लेकिन नया हमेशा बेहतर भी नहीं होता। नंबर 6 पर है कहर बाय गुरु रंधावा, और शायद यही आज के बॉलीवुड म्यूजिक का टेम्पलेट है। नंबर 6।

0: ग्रीन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
1: मिर्ची
2: इसका बना उसका बना सका बना मुर्गा मुर्गा नबीज वाला मुर्गा मिर्ची मुर्गा।
3: हेलो
4: हेलो बेटा नवनीत।
3: आप कौन?
4: पापा कहाँ हैं?
3: पापा तो बाहर हैं, आप बताइए।
4: बेटा ऐसा है, आपके पापा और मैं हम बचपन से बड़े अच्छे दोस्त हैं। मेरे को बता रहा था आशीष, आपके पापा ने बताया था मेरे को कि बेटा है उसे बात कर लेना फोन पे, कभी उससे पूछ लेना। मेरे को आपके पापा ने कहा था कि मेरा बेटा कभी कभी शरारत भी करता है, चलो हर बच्चा कर देता है, लेकिन आशीष दिल का बड़ा अच्छा है, क्योंकि मेरे बचपन का दोस्त है ना आपका पापा, वो किसी को डांट नहीं सकता। अच्छा बेटा, तुम्हारे पापा ने मेरे से ये कहा था आशीष ने कि तू ना नवनीत को फोन कर लियो, क्योंकि वो तो कभी डांटता नहीं है आपको किसी भी बात पे। तो अभी अभी आपके पास एक मिनट है क्या?
3: लेकिन आपको काम क्या है?
4: बस एक मिनट तक मेरे को आपको डांटना था।
3: पापा ने कहा था?
4: चुप कर। पापा ने कहा था? मेरे दोस्त का पीछा ले रखा है तूने, उठा के पटक के रख दूंगा, बता रहा हूँ मदर को।
3: क्या हुआ अंकल?
4: बेटा आपके पापा ने कहा था मेरे से कि वो टाइम पे वो निकल गए हैं, उनको कुछ जरूरी काम था, आपको डांटने का दिल कर रहा था तो वो डांट नहीं पाए, तो मेरे से कहा था आप डांट देना मेरे, जो दोस्त तो दोस्त है ना हम आपस में।
3: अब मुझे क्यों डांट?
4: चुप कर।
3: किस तरह बात कर रहे हैं मेरे से? आप मेरी बात सुनो, मैं पापा से बात कर लूं।
4: पापा से बात करेगा दांत तोड़ दूंगा, ऐसे बैठे बैठे पापा की तरफ से डांट रहा हूं मैं। क्यों कर रहा है सर तूने?
3: पापा को ऐसे किस बात का बुरा? मुझे ये भी नहीं,
4: पापा को किस बात का बुरा लगा, इससे मेरे को क्या लेना देना है। असल में पापा आपके बड़े बिजी हैं आज, तो मेरे को मैसेज किया था उन्होंने कि वह उसको डांट देना।
3: लेकिन
4: अंकल कल देखो एक मारूंगा।
3: बदतमीजी क्या करी
4: थी? ये अपने पापा से पूछना ना, मैं आपके बीच में क्यों पढ़ूं?
3: कह रहा हूँ मैंने कोई ऐसी बदतमीजी की नहीं इन दिनों में।
4: एक मरना घुमा के मैंने की नहीं।
3: अंकल ठीक है, मैंने वो भी कर लिया, अब मैं बदमाशी।
4: ठीक है मेरे साथ बोल कुकड़ू को बेटे।
3: क्या बोलूं?
5: नवनीत कुकड़ू को बोलो मैं रेडियो मिर्ची से नवनीत बोल रहा हूँ, तुम्हारे पापा ने मुझे तुम्हारा नंबर दिया था, तुम रेडियो मिर्ची पे।
3: आपको पापा ने ऐसे कब बताया था मेरा मुर्गा बनाने को?
4: चुप कर, मारूंगा घुमा के। पापा ने कब बताया था मुर्गा बनाने को?
1: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
6: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
7: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
8: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए, इसीलिए लाइन मॉर्गेज असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स, ऑल्सो ऑफरिंग जीरो क्लोजिंग कॉस्ट रीफाइनेंस ऑप्शन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155। लॉग ऑन टू linemtg.com।
9: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
8: तो आइए फैशन क्वीन, यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानी।
9: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
8: विजिट टुडे 1358 ओक ट्री रोड इजलिन।
10: ఓక్ ట్రీ రోడ్ లో బెస్ట్ డైమండ్ జ్యువెలరీ కోసం సర్చ్ చేస్తున్నారా? కృష్ణా జ్యువెలర్స్ మీ ఎక్స్క్లూజివ్ డైమండ్ స్టోర్.
11: టాప్ క్వాలిటీ నేచురల్ సర్టిఫైడ్ డైమండ్స్, GIA సాలిటైర్స్, నెక్లెసెస్, రింగ్స్ మరియు స్టన్నింగ్ పెండెంట్స్. కృష్ణా జ్యువెలర్స్, ఓక్ ట్రీ రోడ్, ఈసలిన్.
12: గులాబీ సాడీ అని లాలి లాల్ లాల్, దిస్తే మే భారీ రాజా ఫోటో మజా కా.
13: టీ సిరీస్ ప్రెజెంట్ ద మాల్ 4.
14: గులాడి బినా చట్నీ కైసే బని.
13: Starring Ajay Devgan, Arshad Varsi, Ritesh Deshmukh and Javed Jaffrey. Directed by Indra Kumar. Releasing on the 10th of July. A complete family entertainer.
6: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
7: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
15: Tera kya hoga Kalia?
16: Sardar, maine aapka namak khaya Sardar.
15: अब मिर्ची का
17: रेडियो मिर्ची इट्स हॉट
0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट नंबर 5।

शरारत 20 हफ्तों तक जिस गाने ने नंबर वन पर रूल किया आज पहली बार किसी और पोजीशन पर है। और इसका मतलब सिर्फ इतना नहीं है कि एक गाना नीचे आया है, इसका मतलब ये है कि इस काउंटडाउन को एक नया नंबर वन सॉन्ग मिलने वाला है। वैसे शरारत का मतलब होती है एक छोटी सी प्यारी सी गलती, अ प्लेफुल मिस्टेक। लेकिन बॉलीवुड में कुछ चीजों के साथ शरारत करने की इजाजत नहीं होती, कुछ फिल्मों के साथ, कुछ एल्बम्स के साथ, क्योंकि वो सिर्फ हिट नहीं होती, वो यादें बन जाती हैं। नंबर चार पर इस हफ्ते है चुनरी चुनरी फ्रॉम है जवानी तो इश्क होना है। गाना तो वापस आ गया लेकिन वो फीलिंग नहीं आई, और वही सबसे बड़ा चैलेंज होता है। क्लासिक को रिक्रिएट करना आसान है, उसकी रूह को वापस लाना नामुमकिन के बराबर। इसलिए आवारापन 2 को लेकर इतनी एक्साइटमेंट है। आवारापन सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, वो इमरान हाशमी की वो दुनिया थी जहां गाने खत्म होने के बाद भी हमारे दिलो दिमाग से निकल नहीं पाए। एंड देन वी हर्ड ऑफ आवारापन 2, जिसका नया गाना वे जुनून हमने पहली बार सुना।

Now on first listen, लगा ठीक है. दूसरी बार सुना तो लगा एक सेकेंड जरा रुको. एंड देन तीसरी बार I had goosebumps. ये गाना हिट होने की कोशिश ही नहीं कर रहा, ये आपके अंदर उतरना चाहता है, बिल्कुल स्लो पॉइजन की तरह, जहर की तरह. और तब समझ आया कि लोगों ने वो बात क्यों बोली थी. अखा बॉलीवुड एक तरफ, इमरान हाशमी एक तरफ. My special request of the week is the same team that is giving us Ve Junoon in Awarapan 2. Imran Hashmi aur unke saath is gaane ke composer Mithun. Aur isi combo ne ek aur gaane mein jadoo bikhera tha. Jab kai baar dil tootne ke bawajood phir mohabbat karne chalta hai. Special request song.

0: मैजिक। मतलब विरानी ज्वेलर्स पे एक्सक्लूसिव डिस्काउंट है सिर्फ मिर्ची लिसनर्स के लिए। 0% मेकिंग चार्जेस ऑन 22 कैरेट एंड डायमंड ज्वेलरी, और पुराना गोल्ड दो तो 100% वैल्यू मिलेगी ट्रेड इन में। सिर्फ फ्रीडम ही फ्रीडम,
1: ओनली ऑन 92.7 FM रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी। इट्स हॉट।
2: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
3: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
4: Gulabi saadi ani lali lal lal. Disate me bari raja photo mazaka.
5: T series present The Mall 4.
6: Ulodi bina chatni kaise bani?
5: Starring Ajay Devgan, Arshad Varsi, Ritesh Deshmukh and Javed Jaffrey. Directed by Indra Kumar. Releasing on the 10th of July. A complete family entertainer.
7: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
8: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानी।
7: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
8: विजिट टुडे, 1358 Oak Tree Road, Islington.
3: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
9: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islington.
10: Enjoy your golden days with Kalyan Jewelers. Get up to 50% off on making charges. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Islington, New Jersey. Conditions apply.
11: Only on Mirchi. It's hot.
12: Number 3.
13: Can you hear

0: ऊंचा लंबा कट फ्रॉम वेलकम टू द जंगल। हाय, बॉलीवुड सीक्वल्स बहुत बनाता है, लेकिन इंसान, एक इंसान के सीक्वल्स बहुत कम देखने को मिलते हैं। इस हफ्ते रणवीर सिंह टर्न्ड 41 और मुझे एहसास हुआ कि पिछले 16 सालों में मेरी मुलाकात 3 अलग अलग रणवीर सिंह से हुई है।
1: मैं तो बॉलीवुड का सब्सक्राइबर रहा हूँ अपने बचपन से, लेकिन ओवर द इयर्स हमारी इंडस्ट्री में भी एवोल्यूशन आया है। जैसे कि पहला था, आज ऐसा बिल्कुल नहीं है। थिंग्स आर लॉट मोर कॉर्पोरेट, लॉट मोर स्ट्रीमलाइंड, प्रोफेशनैलिटी बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई है इंडस्ट्री में। तो मुझे खुशी है कि मैं ऐसे टाइम पर आया हूँ जब अलग टाइप की फिल्में बन रही हैं और इंडस्ट्री इतनी एक्सपैंड हो गई है। मैं आदि सर का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे अपनी पहली फिल्म दी, और मेरे तो बचपन का सपना पूरा हो गया जी, मैं क्या बताऊँ।
0: एक वो रणवीर था जो हमें बैंड बाजा बारात के बाद दिखा, नया, बेचैन, ओवर द टॉप। जैसे हर इंटरव्यू में वो दुनिया को ये यकीन दिलाना चाहता था कि मैं यहाँ टिकने आया हूँ।
2: क्या बोलूँ यार, इट्स अ वेरी ब्लेस्ड टाइम, अच्छा टाइम चल रहा है, टचवुड कुछ तो अच्छा किया होगा। बट ट्रूथ बी टोल्ड, इट्स वेरी ओवरवेलमिंग। इट्स लाइक लाइफ हाईलाइट आफ्टर लाइफ हाईलाइट। आई एम लाइक, व्हाट्स गोइंग ऑन, आई डोंट नो व्हाट एल्स टू डू बट सेलिब्रेट। And people are recognizing that now more than ever before. You know, they did kind of in like 13, 15. There was Lutera and Ramlila in 2013. Yeah. There was Dil Dhadakne Do Bajirao Mastani in 15. Now it's like Khilji, Simba and Karni Boy. It's like, wow. So it's a conscious endeavor to, you know, showcase that versatility. And it's all happening. So I'm really happy about it.
0: Phir mila dusra Ranveer. Ab wo superstar ban chuka tha. Use apne talent ka andaza tha. Use pata tha ki wo kitna achha actor hai. रॉनस की जगह यकीन आ चुका था, लेकिन उसकी एनर्जी अभी उतनी ही बड़ी थी जितना उसका एम्बिशन, लेकिन अब भी वो बेचैन था। और फिर आया तीसरा रणवीर, खामोशी, नो इंटरव्यूज, नो हेडलाइंस, नो एक्सप्लेनेशंस, सिर्फ एक फिल्म और उसके दो हिस्से जिसने दुनिया से बाकी सब कुछ कह दिया। अजीब बात है ना, करियर की शुरुआत में रणवीर चाहता था कि दुनिया उसे सुने, आज दुनिया उसे सुनना चाहती है, लेकिन मिल रही है तो सिर्फ खामोशी। आई टोल्ड यू, आज वी अबाउट टू गेट अ ब्रांड न्यू नंबर वन सॉन्ग। लेकिन ये गाना ब्रांड न्यू है नहीं, ये वो गाना है जिसे हमेशा नंबर वन होना चाहिए था, क्योंकि इसमें भी खामोशी है, एक गहरी वाली खामोशी। द नंबर वन सॉन्ग ऑन द मिर्ची Top 20. Number 1.

0: The Crown is now on the best song of the show. शायद इसी में इस गाने की सबसे बड़ी जीत छुपी है। इसने हमें याद दिला दिया कि हर चीज वायरल होने की जरूरत नहीं होती। कुछ फीलिंग्स, कुछ वाइब्स धीरे धीरे दिल में उतरती हैं और फिर वहीं रह जाती हैं। इट्स टाइम टू एंड दिस एपिसोड ऑफ द मिर्ची टॉप 20, बट फिर मिलूंगा। इनफैक्ट मैं भी वापस आऊंगा। सो अंटिल द नेक्स्ट टाइम, सुरेन ओवर एंड आउट।
1: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
2: It's 2:30 p.m. Mirchi time check. RK Jewels. Get amazing deals on exquisite collection on wide range of flawless and stunning jewelry collection. RK Jewels. Best quality, best price.

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: Did you see my new couch? We picked it up from Encanto in Italy. And that dining table? It's from Catalan, Italia.
4: Ye Mrs. Chopra na keeps showing off her furniture just because her husband's business picked up recently. When did she visit Italy? Chopra saab, so how was Italy?
5: Italy? Oh, all the stylish furniture is from Italmode Furniture on 685 New Jersey, 17 South in Paramus, New Jersey. They carry stylish premium Italian brand like Estero Milano, Pietro Costantini and much more.
4: What? Italmode Furniture in Paramus? Aji sunte ho? To abhi chalo, Italmode Furniture pe. Agli party, hamare ghar pe.
6: Italmode Furniture, 685 New Jersey, 17 South, Paramus, New Jersey. Or shop online at italmodefurniture.com and have it delivered anywhere in the US.
7: Enjoy your golden days with Kalyan Jewelers. Get up to 50% off on making charges. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Iselin, New Jersey. Conditions apply.
0: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है।
8: कोहली गोज डाउन द ग्राउंड, कोहली गोज आउट ऑफ द ग्राउंड।
0: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
9: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
0: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर वन, सिर्फ एक ही होता है, एक ही होता है। जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिस्नरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।

0: Mirchi.
1: Iskabana, uskabana, sakabana. Rabbana. Burka, burka. La birba, la burka. Mirchi, burka.
2: Hello.
3: Hello.
2: कौन?
3: हेलो,
2: हाँ बोलो कौन?
3: हेलो, इधर से बोल रहा हूँ। आपने बोला था ये अपना सीवर साफ करने के लिए।
2: हाँ बोल, कौन रहा है?
3: बोल कौन रहे हो? कंप्लेन करी थी आपने सीवर साफ करने की। नीचे से बोल रहा हूँ, आपके सीवर में घुसा पड़ा हूँ।
2: बोल कौन रहे हो?
3: आपने बोला था ये अपना सीवर साफ करने के लिए।
2: हाँ बोला था।
3: ओ भैया, मेरी जान को बचाओ, यहाँ पे बहुत गहरा है यार। आप लोग खाते क्या हो? कितना गहरा कर दिया आपने?
2: तो पूछ के घुसे थे क्या अंदर?
3: ज्यादा सवाल मत करो, मेरी बात सुनो सिर्फ।
2: हाँ बोलो।
3: यार आपके टॉयलेट पे अपनी कोई बैठा के क्या क्या फेंक रहा है यार ऊपर से? बंद करो सर। ओ भैया, मेरी जान को बचाओ, यहाँ पे बहुत गहरा है यार। आप लोग खाते क्या हो? कितना गहरा कर दिया आपने?
2: कौन बोल रहा है? कहाँ घुस गए यार?
3: हेलो, इधर से बोल रहा हूँ। आपने बोला था ये अपना सीवर साफ करने के लिए।
2: हाँ हाँ बोला था। हुआ क्या है, कुछ तो बताओ।
3: ज्यादा सवाल मत करो, मेरी बात सुनो सिर्फ। यार आपके टॉयलेट पे अपनी कोई बैठा के क्या क्या फेंक रहा है यार ऊपर से? बंद करो सर।
2: कब आया था, कब घुसा अंदर?
3: फिर सवाल यार, मैं यहाँ पे अटका पड़ा हूँ, मुझे बाहर निकालो यार कैसे भी करके।
2: तू कहाँ से रहा है? नहीं हो गया है?
3: सीवर साफ करने की कंप्लेंट करी थी, नीचे घुसा पड़ा हूँ आपके सीवर में, बाहर निकालो यार।
2: मैं तो इधर ऑफिस में हूँ अपने।
3: ऑफिस क्यों गए? सीवर साफ करवाना था, मैं तो यहाँ पे घुसा पड़ा हूँ ना अंदर।
2: मेरी सीवर में घुसा है, किसी और के सीवर में घुस गया?
3: ये बदबू से पता चल रहा है सीवर तेरा ही है यार।
2: सीवर में मरा रहा है तू?
3: गाली तो मत दो।
2: हेलो
3: हेलो,
2: फिर फोन कर दिया तूने?
3: अच्छा है, सीवर साफ हो जाएगा। एक काम करो, एक चीज बोलो।
2: क्या बोलो?
3: कुकड़ू को।
4: सर आई एम सो सॉरी, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। मुझे किसी ने बताया था कि आपने सीवर साफ करने की कंप्लेंट करी थी। आप रेडियो मिर्ची पे हैं और आपका पुरका बन गया।
2: कुकड़ू को।
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट,
6: इट्स हॉट।
7: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
8: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
9: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए। इसीलिए लाइन मॉर्गेज असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स, ऑल्सो ऑफरिंग जीरो क्लोजिंग कॉस्ट रीफाइनेंस ऑप्शन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155। लॉग ऑन टू lionmtg.com।
10: एंजॉय योर गोल्डन डेज विद कल्याण ज्वेलर्स। गेट अप टू 50% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस। विजिट कल्याण ज्वेलर्स एट ओक ट्री रोड, इज़लन, न्यू जर्सी। कंडीशंस अप्लाई।
11: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
9: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानी।
11: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
9: विजिट टुडे, 1358 ओक ट्री रोड, इज़लिन।
12: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
13: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
14: Worried about how your child will stay connected with their roots or maintain our traditions?
15: SKN Foundation has one of the longest running culture, values and Hindi language programs for students.
14: To enroll or know more, please visit sanatanvidyalaya.org or call 908-671-1344.
7: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
8: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
16: तेरा क्या होगा कालिया?
17: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
16: अब मिर्ची खा।
6: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
3: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानी।
2: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
3: विजिट टुडे 1358 ओक ट्री रोड, इजिलिन।
4: कुछ आवाजें सिर्फ कानों को नहीं सीधे आत्मा को छू जाती हैं। दिव्य और पवित्र आरती अब मंदिर से सीधे आप तक। मंगल आरती प्रेजेंटेड बाय आरके जूल्स। बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस। रोज सुबह 6 बजे सिर्फ 92.7 FM रेडियो मिर्ची पर। ऑल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2।

0: Pepe-Milchi.
1: Escabana, escabana, sacabana.
2: Gambala.
1: Burga, burga. La vieja la burga.
2: Milchi, burga.
3: Hello.
4: हेलो, संदीप नागपाल जी बोल रहे हैं?
3: हाँ जी, बोल रहा हूँ।
4: हाँ जी, डीडीए से बोल रहा हूँ। आपका ये ड्राफ्ट भेजा है वापस, आपने डीडीए फ्लैट के लिए अप्लाई किया था ना?
3: तो हुआ कैसे है, मतलब हमें तो बड़ी उम्मीद थी भाई कि निकलेगा हमारा।
4: अब सर ये किस्मत की बात है सर, इसमें तो कुछ कर नहीं सकते ना। अब जिसके निकल गए हैं वो लकी है सर। मैं तो बस आपसे ये कह रहा था, ये 7,500 रुपए का आपका ड्राफ्ट है जो वापस करना है, कहाँ कुरियर कर दूँ, आप आगे ले लेंगे इसको।
3: कितने का ड्राफ्ट है मेरा?
4: 7,500 रुपए का।
3: अरे भाई साहब, मैंने 1.5 लाख जमा किया था, मैंने 7,000 रुपए दे रहा हूँ मुझे आप।
4: नहीं नहीं सर, ये 25,000 रुपए आपके प्रोसेसिंग फीस के कट गए।
3: किस चीज की फीस?
4: प्रोसेसिंग फीस जो आपने अप्लाई किया था ना डीडीए के फ्लैट के लिए।
3: तो भाई साहब, ऐसा कहीं मेंशन नहीं था कि मेरे इसके फीस कटेगी नहीं कटेगी?
4: सर हर चीज मेंशन नहीं करी जाती ना, मैं आपको आगे बता रहा हूँ। 50,000 रुपए आपके मशीन जो आपने बनवाई थी ना लकी ड्रॉ के लिए मशीन, उसके 50,000 रुपए कट गए आपके।
3: मतलब मेरे ड्रॉ के लिए कुछ स्पेशल मशीन बनी है क्या?
4: सर आपके ड्रॉ के लिए नहीं है सर, करोड़ों की मशीन है। आपके ड्रॉ के लिए नहीं, सबके ड्रॉ के लिए बने हैं। उसे पर्चियां डलती है बहुत सारी करोड़ों के हिसाब से, वो मशीन महंगी आती है। 20,000 रुपए आपके प्रिंटिंग के कट गए हैं। 30,000 रुपए हमारे डीडीए का लोगो चेंज हुआ है, आप लोगों की वजह से लोगो चेंज होता है। और 15,000 रुपए सिक्योरिटी के हमने काटे हैं, क्योंकि सिक्योरिटी हमने लगा रखी है, कभी किसी को गुस्सा आ जाए ना। 7,500 रुपए आपके बचते हैं।
3: ये भी तुम्हें रख लो, ये तुम फोन क्यों कर रहा हो?
4: ऐसे कैसे रख ले यार, आपका पैसा आपको वापस देंगे।
3: भाई आप ही रखो यार, आप मतलब हमें ज्यादा रख लो, ये बीच में रख लो हमें ज्यादा।
4: अरे यार,
3: आप लूट रहे हो पब्लिक को यार।
4: तो यार ये आपको पहले सोचने दे ना सुनील जी, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कर रहा ना, ये तो काम डीडीए की तरफ से। आप एक तो गुस्सा ना करें, एक सेकंड फोन आ रहा है, रुकिए रुकिए। हेलो, हाँ हाँ जी, बोल रहा हूँ डीडीए से। सर आपके 5,882 रुपए बनते हैं, आके ले जाइएगा, ठीक है? हाँ संदीप जी।
3: अरे अभी अभी आप कह रहे थे ना 20,000 रुपए उसके करने के नाम है, जो नाम लोगो चेंज करा अपना डीडीए ने।
4: आप मुझे बताइए, आप मुझे बताइए,
3: तुमने आम इंसान तुमने बनाया, ठीक है ना?
4: हाँ?
3: भैया पैसे भाड़ में गए।
4: आप मेरी बात सुनिए, आप वैसी टेंशन में लग रहे हैं, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए संदीप।
3: हाँ बोलो बोलो
4: संदीप, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। आप रेडियो मिर्ची पे, आपका मुर्गा बन गया है।
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट,
1: इट्स पटाक।
6: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
7: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
8: From the finest kitchens in India, a 1,000-year-old tradition of Khandani chef's recipes, comes the Naan. The same traditional taste, flavor, and freshness guaranteed. Deep cow, to jano.
9: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
10: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
9: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
10: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
9: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इजलिन।
11: ओक ट्री रोड लो बेस्ट डायमंड ज्वेलरी कोसम सर्च इस्तनारा कृष्णा ज्वेलर्स मी एक्सक्लूसिव डायमंड स्टोर।
12: टॉप क्वालिटी नेचुरल सर्टिफाइड डायमंड्स, GIA सॉलिटेयर्स, नेकलेसेस, रिंग्स, मरियु स्टनिंग पेंडेंट्स, कृष्णा ज्वेलर्स, ओक ट्री रोड, ईसलिन।
13: Worried about how your child will stay connected with their roots or maintain our traditions?
14: SKN Foundation has one of the longest running culture, values and Hindi language programs for students.
13: To enroll or know more, please visit sanatanvidyalaya.org or call 908-671-1344.
15: Enjoy your golden days with Kalyan Jewelers. Get up to 50% off on making charges. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Iselin, New Jersey. Conditions apply.
16: तेरा क्या होगा कालिया?
17: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
16: अब मिर्ची खा।
18: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM, HD2. It's hot.
1: अरे यू के बड़ा गोरी भाई बजा

0: मतलब विरानी ज्वेलर्स पे एक्सक्लूसिव डिस्काउंट है सिर्फ मिर्ची लिसनर्स के लिए। 0% मेकिंग चार्जेस ऑन 22 कैरेट एंड डायमंड ज्वेलरी, और पुराना गोल्ड दो तो 100% वैल्यू मिलेगी ट्रेड इन में। सिर्फ फ्रीडम ही फ्रीडम,
1: ओनली ऑन 92.7 FM रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी। इट्स हॉट।
2: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
3: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
4: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
5: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करे मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
4: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
5: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
4: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इसलिन।
6: इसलिन न्यू जर्सी। Yes, you heard that right. That's the brand new Joy Alucard's destination in the USA. Be among the first to celebrate our grand opening with an unbeatable inaugural offer of flat 30% off on making charges. Shop before 19th July and receive assured gifts with every purchase. Visit us at 42 Marconi Avenue, Esalen, New Jersey, and discover exquisite collections crafted for every celebration. Inaugural offer valid until 26th July 2026. TNT apply. Joy Alucard's, world's favorite jeweler.
7: किसी जमाने में माँ हाथों से घिसती, प्यार से कूटती, मुस्कुराकर पीसती, अपने घर के आंगन में दिन भर उन मसालों को सहलाए खुशियों के स्वाद चखती, वही एहसास लाए डीप फूड्स चटनी। डीप, खाओ तो जानो।
8: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
9: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
10: Namaste, New Jersey. Frontier Ras is now open in Edison, New Jersey. From handloom saris and bridal couture to menswear and ready-to-wear, discover a 70-year legacy of Indian craftsmanship. The USA flagship store of Frontier Ras is now open at 1655 Oak Tree Road, Edison.
11: Enjoy your golden days with Kalyan Jewelers. Get up to 50% off on making charges. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Islington, New Jersey. Conditions apply.
12: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है।
13: कोहली गोज डाउन द ग्राउंड, कोहली गोज आउट ऑफ द ग्राउंड।
12: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
14: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
12: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर वन, सिर्फ एक ही होता है,
15: एक ही होता है।
12: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिस्नरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची। मिर्ची बाकी जो है वो सिर्फ है, रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: From the finest kitchens in India, a thousand-year-old tradition of Khandani chefs' recipes comes the Naan. Same traditional taste, flavor, and freshness, guaranteed. Deep cow, to jano.
4: Enjoy your golden days with Kalyan Jewelers. Get up to 50% off on making charges. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Iselin, New Jersey. Conditions apply.
5: Tera kya hoga, Kalya?
6: Sardar, maine aapka namak khaya, Sardar.
5: Ab. मिर्ची का
7: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: 92.7 FM. Radio Mirchi, New Jersey. South Asia's number one radio station. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
1: It's 5 p.m. Mirchi time check. RK Jewels. Get amazing deals on exquisite collection on wide range of flawless and stunning jewelry collection. RK Jewels. Best quality, best price.
2: Only on Mirchi. It's hot.
3: The show starts in 5, 4, 3, 2, 1.
4: यादें कभी पुरानी नहीं होती, सिर्फ उन्हें याद करने की वजह बदल जाती है. इसलिए कुछ गाने, कुछ फिल्में और कुछ आवाजें सालों बाद भी बिल्कुल वैसी ही महसूस होती हैं. हिट होना अलग बात है, याद रह जाना वो बहुत बड़ी बात है. और शायद इसलिए बॉलीवुड में सबसे मुश्किल काम ब्लॉकबस्टर बनाना नहीं, एक लेगेसी बनाना है. आज के काउंटडाउन में भी कुछ नए गाने होंगे, कुछ पुरानी यादें होंगी और कुछ ऐसे सवाल होंगे जो शायद आप घर ले जाएंगे. हाय, मैं हूं सुरेन एंड दिस इज द मिर्ची टॉप 20, इंडिया का सबसे डेफिनेटिव हिंदी फिल्म म्यूजिक / बॉलीवुड म्यूजिक काउंटडाउन. और शुरुआत कर रहा हूं विद द फर्स्ट सॉन्ग जो है नंबर 20 की पोजीशन पर. मुझे लगा था शायद ये अलविदा कहने वाला है, लेकिन नहीं, ये हमारे लिए थोड़ा और रुक गया है. द ग्रेटेस्ट लव सॉन्ग फ्रॉम लास्ट ईयर, दिस इज सैयारा
5: नंबर 20.

Cocktail 2 एक लंबी लिस्ट का हिस्सा बन गया है. Films that created some excitement at the start, लेकिन उसके बाद, well, they just exist. इनके बारे में हमें पता है, लेकिन इनके साथ वो कनेक्शन नहीं बन पाया है. कभी कभी किसी फिल्म की सबसे बड़ी पब्लिसिटी उसका ट्रेलर नहीं होती, उसका गायब हो जाना होती है. पिछले हफ्ते एक फिल्म ने पूरे देश को एक ही सवाल पूछने पर मजबूर कर दिया. सतलज रिलीज हुई, लोगों ने देखनी शुरू की और फिर रातों रात फिल्म हटा दी गई. एक वजह भी बताई गई पर वजह कन्विंसिंग नहीं थी. बहस शुरू हो गई लेकिन मेरे दिमाग में एक ही बात घूमती रही, अगर कोई कहानी इतनी खतरनाक है कि उसे देखना ही नहीं चाहिए तो उसे हटा देने के बाद लोग उसे और ज्यादा क्यों ढूंढते हैं. शायद क्योंकि इंसान की फितरत ही कुछ ऐसी होती है, जिस दरवाजे पर नो एंट्री लिखा हो सबसे पहले वही दरवाजा खोलने का मन करता है. और इंटरनेट के जमाने में एक बार कोई चीज दुनिया के सामने आ गई, उसे मिटाना शायद उसे और ज्यादा फैला देने जैसा होता है. नंबर 18 पर इस हफ्ते है तू ही दिसदा भूत बंगला से, एंड देन एक ऐसी फिल्म जिसने किसी कंट्रोवर्सी से नहीं सिर्फ लोगों की मोहब्बत से अपनी जगह बनाई है. दिलजीत दोसांझ सतलज में भी हैं और इस फिल्म में भी हैं. तो मैं वापस आऊंगा. और नंबर 17 दिस इज मस्कारा. नंबर 17

0: सुरेन के साथ only on Mirchi. It's hot. Mirchi.
1: इसका बाना, उसका बाना, सका बाना. क्या बाना? मुर्गा, मुर्गा. नवीन वाला मुर्गा.
2: हेलो हेलो बेटा नवनीत.
3: आप कौन?
2: पापा कहाँ हैं?
3: पापा तो बाहर हैं, आप बताइए.
2: बेटा ऐसा है, आपके पापा और मैं हम हाँ. बचपन से बड़े अच्छे दोस्त हैं. मेरे को बता रहा था आशीष, आपके पापा ने बताया था मेरे को कि बेटा है, उससे बात कर लेना फोन पे कभी, उससे पूछ लेना. मेरे को आपके पापा ने कहा था कि मेरा बेटा कभी कभी शरारत भी करता है. चलो हर बच्चा कर देता है, लेकिन आशीष दिल का बड़ा अच्छा है, क्योंकि मेरे बचपन का दोस्त है ना आपका पापा, वो किसी को डांट नहीं सकता. अच्छा बेटा, तुम्हारे पापा ने मेरे से ये कहा था आशीष ने कि तू ना नवनीत को फोन कर लियो, क्योंकि वो तो कभी डांटता नहीं है आपको किसी बात पे. तो अभी अभी आपके पास एक मिनट है क्या?
3: लेकिन आपको काम क्या है?
2: बस एक मिनट तक मेरे को आपको डांटना था.
3: पापा ने कहा था?
2: चुप करे. पापा ने कहा था? मेरे दोस्त का पीछा ले रखा है तूने, उठा के पटक के रख दूंगा, बता रहा हूँ मैं तेरे को.
3: क्या हुआ अंकल?
2: बेटा आपके पापा ने कहा था मेरे से कि वो टाइम पे वो निकल गए हैं, उनको कुछ जरूरी काम था, आपको डांटने का दिल कर रहा था तो वो डांट नहीं पाए, तो मेरे से कहा था आप डांट देना. मेरे जो दोस्त तो दोस्त है ना हम आपस में.
3: अब मुझे क्यों डांट?
2: चुप करे.
3: किस तरह बात कर रहे हैं मेरे से? आप मेरी बात सुनो, मैं पापा से बात कर लूं.
2: पापा से बात करेगा दांत तोड़ दूंगा, ऐसे बैठे बैठे पापा की तरफ से डांट रहा हूँ मैं. क्यों कर रहा था तूने?
3: पापा को ऐसे किस बात का बुरा? मुझे ये भी नहीं,
2: पापा को किस बात का बुरा लगा, इससे मेरे को क्या लेना देना है. असल में पापा आपके बड़े बिजी हैं आज, तो मेरे को मैसेज किया था उन्होंने कि वह उसको डांट देना.
3: लेकिन बुरी क्या लगी?
2: एक मारूंगा.
3: बदतमीजी क्या करी
2: थी? ये अपने पापा से पूछना ना, मैं आपके बीच में क्यों पढ़ूं?
3: कह रहा हूँ मैंने कोई ऐसी बदतमीजी की नहीं इन दिनों में.
2: एक मरना घुमा के मैंने की नहीं.
3: ठीक है, मैंने वो भी कर लिया, मैं बदमाशी.
2: ठीक है, मेरे साथ बोल कुकड़ू को बेटे.
3: क्या बोलूं?
4: नवनीत कुकड़ू को बोलो मैं रेडियो मिर्ची से नवनीत बोल रहा हूँ, तुम्हारे पापा ने मुझे तुम्हारा नंबर दिया था, तुम रेडियो मिर्ची पे.
3: आपको पापा ने ऐसे कब बताया था मेरा मुर्गा बनाने को?
2: चुप कर, मारूंगा घुमा के. पापा ने कब बताया था मुर्गा बनाने को?
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.
6: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
7: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
8: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा.
6: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर.
8: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
6: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज.
8: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इजलिन.
9: गुलाबी साड़ी अनी लाली लाल लाल दिसते में भारी राजा फोटो मजा का.
10: टी सीरीज प्रेजेंट द माल 4.
11: गुलाड़ी बिना चटनी कैसे बनी?
10: Ajay Devgan, Arshad Varsi, Ritesh Deshmukh and Javed Jaffrey. Directed by Indra Kumar. Releasing on the 10th of July. A complete family entertainer.
12: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
13: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
14: Kisi zamane mein माँ हाथों से घिसती, प्यार से कूटती, मुस्कुराकर पीसती, अपने घर के आंगन में दिन भर उन मसालों को सहलाए, खुशियों के स्वाद चखती, वही एहसास लाए दीप फूड्स चटनी. दीप, खाओ तो जानो.
6: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
7: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
15: Listener MA, back to back gana sunega.
16: Back to back gana sunega.
15: Only on 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM, HD2. It's hot.
0: Suren ke saath, only on Mirchi. It's hot.
17: Number 16.

Wow, the craziest songs from Dhurandhar 2. Ye tha Main aur Tu by Jasmine Sanilas. And I don't know agar Dhurandhar ek sachi kahani hai ya it's fiction. But Bollywood filmmakers ko sachi kahaniya pasand badi hai. Which is why we love our biopics. And ek aur biopic dekhne ke liye ab janta utsuk hai. Saurav Ganguly ki biopic Dada. क्योंकि इस हफ्ते उनकी बायोपिक का फर्स्ट लुक आ गया है एंड मैं शायद माइनॉरिटी में हूं लेकिन मुझे क्रिकेट बायोपिक्स का कॉन्सेप्ट ही फ्लॉड लगता है. क्यों ऐसा क्यों बोल रहा है ये लड़का? वेल, क्योंकि कुछ जिंदगियां एक फिल्म में नहीं समा पाती. सोचिए सौरव गांगुली लॉर्ड्स में एक डेब्यू सेंचुरी, मैच फिक्सिंग के बाद इंडियन क्रिकेट की कमान संभाली, देन 2002 में वो नैटवेस्ट ट्रॉफी फाइनल. And then आया उनका सबसे मुश्किल चैप्टर, ग्रेग चैपल एज द कोच ऑफ द इंडियन क्रिकेट टीम. उस वक्त सौरव कप्तान थे, फिर टीम से बाहर हो गए और फिर एक कमबैक भी हुआ. एंड देन यू गॉट क्रिकेट के बाद की जिंदगी. सिर्फ यही कहानी सुनाने अगर बैठोगे तो 10 घंटे निकल जाएंगे. एंड सौरव गांगुली द क्रिकेटर तो एक तरफ है, इसके अलावा सौरव गांगुली द पर्सन, द ह्यूमन बींग भी तो दिखाओगे. और यही वजह है कि मुझे लगता है कि क्रिकेट बायोपिक्स अक्सर स्कोर कार्ड दिखा देती हैं, क्रिकेटर को नहीं. इसलिए राजकुमार राव और विक्रमादित्य मोटवाने पर पूरा भरोसा होने के बाद भी मैं सौरव गांगुली की बायोपिक को लेकर थोड़ा स्केप्टिकल हूं, क्योंकि कुछ कहानियां फिल्म नहीं वक्त मांगती है. सिर्फ एक एमएस धोनी की बायोपिक थी विच वर्क फॉर सम रीजन, बट उसके अलावा 83 अजहर नॉट सो मच. नंबर 15 पर इस हफ्ते डेब्यू कर रहा है एक नया गाना मेरे फेवरेट आर्टिस्ट तलविंदर की आवाज में, पल पल जीना मुहाल. गाना याद है ना? वेल, ये गाना है क्यों फ्रॉम वेलकम टू द जंगल एंड इट्स हियर ऑन द मिर्ची टॉप 20. नंबर 15.

के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: फ्रॉम द बजट।
1: मतलब विरानी ज्वेलर्स पे एक्सक्लूसिव डिस्काउंट है सिर्फ मिर्ची लिसनर्स के लिए। 0% मेकिंग चार्जेस ऑन 22 कैरेट एंड डायमंड ज्वेलरी, और पुराना गोल्ड दो तो 100% वैल्यू मिलेगी ट्रेड इन में। सिर्फ फ्रीडम ही फ्रीडम,
2: ओनली ऑन 92.7 FM रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी। इट्स हॉट।
3: दिस मॉर्गेज अपडेट इज ब्रॉट टू यू बाय लायन मॉर्गेज।
4: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
5: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
6: From the finest kitchens in India, a 1,000-year-old tradition of Khandani chef's recipes comes the Naan. Same traditional taste, flavor, and freshness guaranteed. Deep cow, to jano.
7: Enjoy your golden days with Kalyan Jewelers. Get up to 50% off on making charges. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Iselin, New Jersey. Conditions apply.
8: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
9: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
8: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
9: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
8: मिस इंडिया, आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इज़लिन।
10: Namaste, New Jersey. Frontier Ras is now open in Edison, New Jersey. From handloom saris and bridal couture to menswear and ready-to-wear, discover a 70-year legacy of Indian craftsmanship. The USA flagship store of Frontier Ras is now open at 1655 Oak Tree Road, Edison.
11: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
12: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
13: Surin ke saath, only on Mirchi. It's hot.
14: Number 14.

अनपॉपुलर ओपिनियन बट रोमकॉम्स आर डेड। और शायद सबसे दुख की बात ये नहीं है, सबसे दुख की बात ये है कि हमें पता भी नहीं चला कि ये कब हुआ। नंबर 13 पर इस हफ्ते है तुझको फ्रॉम कॉकटेल बाय अरिजीत सिंह। और इस गाने को सुनते ही मुझे वो वक्त याद आ गया जब बॉलीवुड हमें प्यार पर यकीन दिला देता था।

0: एंड देन यू हैड बनी और नैना. हम सबको लगा शायद प्यार और सपने दोनों साथ चल सकते हैं. उसके बाद पता ही नहीं चला रोम कॉम्स कहाँ खो गए. फिल्में आज भी बनती हैं, लड़के लड़कियां आज भी मिलते हैं, डेट्स पे जाते हैं, उनके ब्रेकअप्स होते हैं, लेकिन वो धड़कन, वो तड़प, वो थिएटर से बाहर निकलते वक्त दिल का हल्का सा भर आना, वो कहीं रह गया. रोम कॉम्स आर डेड बट नॉट रोमांस. और फिल्में शायद बुरी हों बट कभी कभी उन बुरी फिल्मों में बहुत अमेजिंग म्यूजिक मिलता है, लाइक अ हंसी तो फंसी. पीपल लव द सॉन्ग ज़हन नसीब द मोस्ट, लेकिन मुझे वेल आई फेल इन लव with a completely different song. Aaj, we rewind this song by Sanam Puri.
1: Top 20 Rewind.

0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
1: इट्स 5:30 पीएम मिर्ची टाइम चेक आरके जूल्स गेट अमेजिंग डील्स ऑन एक्सक्विजिट कलेक्शन ऑन वाइड रेंज ऑफ फ्लॉलेस एंड स्टनिंग ज्वेलरी कलेक्शन आरके जूल्स बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस
2: 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
0: Suren ke saath only on Mirchi. It's hot.
3: Number 12.

0: इतने महीने बाद भी आफ्टर वॉचिंग बोथ द फिल्म्स एक बात है जो परेशान करती है मुझे अब भी. इज धुरंधर अ रियल लाइफ स्टोरी? क्या इसके कैरेक्टर्स सच्चे हैं? आखिर सच क्या है? इस हफ्ते एक और जासूस की कहानी रिलीज हुई बाय द नेम ऑफ अल्फा. मेरे कई दोस्त हैं जिन्होंने अल्फा देखी और एक बात बार बार सुनने को मिली, पर्सपेक्टिव. और तब मुझे एहसास हुआ कि हर सच के शायद तीन अलग अलग वर्जन्स होते हैं. एक जो वाकई हुआ है, दूसरा जो हमें बताया गया है, और तीसरा जो हम मान लेते हैं. अब वो चाहे उरी हो, धुरंधर हो या फिर अल्फा हो, सिनेमा सिर्फ कहानियां नहीं सुनाता, वो हिस्ट्री को इंटरप्रेट भी करता है. और वही मेरी सबसे बड़ी क्यूरियोसिटी रहती है. मैं हीरो देखने थिएटर नहीं जाता, मैं सच के जितना करीब हो सकता हूँ उतना पहुंचना चाहता हूँ. बाकी फैसला आप कीजिए. फिल्म किसकी थी, पर्सपेक्टिव किसका था? अल्फा वेल इज गेटिंग मिक्स्ड रिएक्शंस फ्रॉम द ऑडियंस, बट हाँ, YRF की स्पाई यूनिवर्स पक्का मुश्किल में है. दे बैडली नीड अ रीसेट. नंबर 11 पर है एक और नई फिल्म, बेबी डू डाई डू. आई होप आई गॉट द प्रोनाउंसिएशन राइट. और अफसोस, एक इतनी इंटरेस्टिंग असैसिन थ्रिलर को इंट्रोड्यूस किया गया है इश्क अमीना 2.0 से. कभी कभी सबसे बड़ा प्लॉट ट्विस्ट फिल्म में नहीं, उसकी म्यूजिक स्ट्रेटजी में होता है.
1: नंबर 11,
2: कत्ल करती हैं निगाहें कि दिल को खबर ना हो, जख्म देती है ऐसा कि दर्द का असर ना हो. हमने समझा था इश्क की मोहब्बत को ही ख्याले दिल, लगता है डर बस इतना वो मेरा हम शक्ल ना हो.

0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट.
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: किसी जमाने में माँ हाथों से घिसती, प्यार से कूटती, मुस्कुराकर पीसती, अपने घर के आंगन में दिन भर उन मसालों को सहलाए, खुशियों के स्वाद चखती. वही एहसास लाए डीप फूड्स चटनी. डीप, खाओ तो जानो.
4: Enjoy your golden days with Kalyan Jewelers. Get up to 50% off on making charges. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Iselin, New Jersey. Conditions apply.
5: Brought to you by Deep Foods. Deep Foods khao, to jano. Brought to you by Deep Foods. Deep Foods khao, to jano.
6: This hour is brought to you by Raj Jewels.
7: Tera kya hoga, Kalya?
8: Sardar. मैंने आपका नमक खाया सरदार.
7: अब मिर्ची खा.
9: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट.
0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट.
10: नंबर 10.

0: बॉलीवुड को समर कॉमेडीज बनाना बहुत अच्छी तरह आता है, जैसे अभी चटनी फ्रॉम धमाल 4, भोजपुरी फ्लेवर, फुल ऑन मजे, एंड गाना चलेगा, फिल्म अपना काम कर जाएगी, एंड देन यू हैव अ वाव फ्रॉम है जवानी तो इश्क होना है। इसके बारे में ज्यादा कुछ वैसे अब कहने को है नहीं, फिल्म आई फिल्म गई, इन गाना रह गया नंबर 9 पर।
1: नंबर 9 सुरमाया खच जद पाओ मुंडे तक कहंदे ने जी वाओ, बण मोर नी जी जिधर नु जाओ मुंडे तक कहंदे ने जी वाओ।
0: लेकिन फिर कुछ फिल्में होती हैं जो सिर्फ रिलीज नहीं होती, एक दौर को डिफाइन कर देती हैं। इस हफ्ते लोग एक फिल्म के 10 साल सेलिब्रेट कर रहे हैं, सुल्तान। और मुझे लगता है ये सेलिब्रेशन सिर्फ सुल्तान का नहीं है, ये उस सलमान खान का है जिसके सामने बॉक्स ऑफिस ने घुटने टेक दिए थे। वांटेड, दबंग, रेडी, बॉडीगार्ड, एक था टाइगर, किक, बजरंगी भाईजान, प्रेम रतन धन पायो। उस वक्त फिल्म कितनी अच्छी थी ये फ्राइडे के बाद पता चलता था, लेकिन फ्राइडे से पहले एक बात सबको पता होती थी, सलमान खान की फिल्म एक त्योहार है। फिर सुल्तान आई और आज अगर पीछे मुड़कर देखोगे तो लगता है कि वो सिर्फ एक ब्लॉकबस्टर नहीं थी, शायद वो एक ईरा का लास्ट स्टैंडिंग ओवेशन था। उसके बाद हिट से ज्यादा सवाल आए ऑन फिल्म्स लाइक रेस 3, दबंग 3, अंतिम, राधे, किसी का भाई, किसी की जान, एंड देन सिकंदर। और पिछले 10 सालों से फैंस सिर्फ एक ही चीज का इंतजार कर रहे हैं, दैट वन सलमान खान फिल्म जो थिएटर्स में वो पागलपन फिर क्रिएट कर दे, जिसके बाद पूरा देश सिर्फ एक ही बात कहे, भाई इज बैक। मेरा पिक ऑफ द वीक उसी फिल्म से है जिसके 10 साल सेलिब्रेट कर रहे हैं सब, पापॉन की आवाज में। दिस इज बुल्लेया फ्रॉम सुल्तान, अ विशाल शेखर कॉम्पोजिशन।
2: पिक ऑफ द वीक।

यार एक बात माननी पड़ेगी, इट फील्स सो गुड टू हियर नीरज श्रीधर वॉइस अगेन, लेकिन इसी गाने ने मुझे एक सच्चाई से मिलवा दिया। हॉलीवुड अपने लेजेंड्स को सेलिब्रेट तो बहुत करता है, बस उन्हें हायर करना बंद कर देता है। नीरज श्रीधर की आवाज आज भी उतनी ही फ्रेश लगती है, फिर नए गाने उनके पास क्यों नहीं जाते? और सिर्फ सिंगर्स ही नहीं, कंपोजर्स भी। एक सवाल आप खुद से पूछिए, आखिरी शंकर एहसान लॉय एल्बम आपने कौन सी सुनी थी, जिसके गाने आपने रिपीट पर सुने, जिसके लिरिक्स आज भी याद हैं आपको? सितारे जमीन पर जो आमिर खान की फिल्म थी उसमें उन्हीं का म्यूजिक था, लेकिन एल्बम वैसे कनेक्ट नहीं कर पाई जितना सबने सोचा था। और उसके बाद इंडस्ट्री फिर नए नामों की तरफ मुड़ जाती है। अजीब बात है राइट? अब से एक महीने बाद we all will be celebrating 25 years of one of the most iconic albums ever.

चाहता है। पूरा बॉलीवुड इस एल्बम को सल्यूट करेगा, उसकी लेगेसी सेलिब्रेट करेगा, लेकिन जब अगली बड़ी फिल्म बनेगी फोन शायद किसी और कंपोजर को जाएगा। नया हमेशा बुरा नहीं होता, लेकिन नया हमेशा बेहतर भी नहीं होता। नंबर 6 पर है कहर बाय गुरु रंधावा, और शायद यही आज के बॉलीवुड म्यूजिक का टेम्पलेट है। नंबर 6।

0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
1: मिर्ची इसका बना उसका बना सबका बना बना मुर्गा मुर्गा नबीत वाला मुर्गा मिर्ची मुर्गा।
2: हेलो
3: हेलो
2: कौन?
3: हेलो
2: हाँ बोलो कौन?
3: हेलो इधर से बोल रहा हूँ। आपने बोला था ये अपना सीवर साफ करने के लिए।
2: हाँ बोल कौन रहा है?
3: बोल कौन रहे हो? कंप्लेन करी थी आपने सीवर साफ करने की। नीचे से बोल रहा हूँ, आपके सीवर में घुसा पड़ा हूँ।
2: बोल कौन रहे हो?
3: आपने बोला था ये अपना सीवर साफ करने के लिए।
2: हाँ बोला था।
3: ओ भैया मेरी जान को बचाओ, यहाँ पे बहुत गहरा है यार। आप लोग खाते क्या हो? कितना गहरा कर दिया आपने?
2: तो पूछ के घुसे थे क्या अंदर?
3: ज्यादा सवाल मत करो, मेरी बात सुनो सिर्फ।
2: हाँ बोलो।
3: यार आपके टॉयलेट में अपनी कोई बैठा के खा के फेंक रहा यार ऊपर से। ओए बंद करो सर। ओ भैया मेरी जान को बचाओ, यहाँ पे बहुत गहरा है यार। आप लोग खाते क्या हो? कितना गहरा कर दिया आपने?
2: कौन बोल रहा है? कहाँ घुस गए यार?
3: हेलो इधर से बोल रहा हूँ, आपने बोला था ये अपना सीवर साफ करने के लिए।
2: हाँ हाँ बोला था। हुआ क्या है कुछ तो बताओ।
3: ज्यादा सवाल मत करो, मेरी बात सुनो सिर्फ। ओए यार आपके टॉयलेट में अपनी कोई बैठा के खा के फेंक रहा यार ऊपर से। ओए बंद करो सर।
2: कब आया था? कब घुसा अंदर?
3: फिर सवाल यार, मैं यहाँ पे अटका पड़ा हूँ, मुझे बाहर निकालो यार कैसे भी करके।
2: तो कहाँ से रहा है? तो नहीं हो गया है?
3: सीवर साफ करने की कंप्लेंट करी थी, नीचे घुसा पड़ा हूँ आपके सीवर में, बाहर निकालो यार।
2: मैं तो इधर ऑफिस में हूँ अपने।
3: ऑफिस क्यों गए? सीवर साफ करवाना था, मैं तो यहाँ पे घुसा पड़ा हूँ ना अंदर।
2: मेरी सीवर में घुसा है, किसी और के सीवर में घुस गया?
3: ये बदबू से पता चल रहा है सीवर तेरा ही है यार।
2: सीवर में मरा रहा है तू?
3: गाली तो मत दो।
2: हेलो
3: हेलो
2: फिर फोन कर दिया तूने?
3: अच्छा है सीवर साफ हो जाएगा। एक काम करो, एक चीज बोलो।
2: क्या बोलो?
3: कुकड़ुकू।
4: सर आई एम सो सॉरी, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। मुझे किसी ने बताया था कि आपने सीवर साफ करने की कंप्लेंट करी थी। आप रेडियो मिर्ची पे हैं और आपका मुर्गा बन गया।
1: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
5: दिस गोल्ड अपडेट इज ब्रॉट टू यू बाय राज ज्वेल्स, किंगडम ऑफ ज्वेल्स वेयर ट्रेडिशन मीट्स स्टाइल।
6: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
7: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
8: Kisi zamane mein maa haathon se ghisti, pyar se kootti, muskurakar peesti, apne ghar ke aangan mein din bhar un masalon ko sehlaye, khushiyon ke swaad chakhti. वही एहसास लाए दीप फूड्स चटनी। दीप खाओ तो जानो।
9: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए। इसीलिए लायन मॉर्गेज असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स, आल्सो ऑफरिंग जीरो क्लोजिंग कॉस्ट रीफाइनेंस ऑप्शन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155। लॉग ऑन टू lionmtg.com।
10: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
11: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
10: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
11: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
10: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू हिजलन।
12: ओक ट्री रोड लो बेस्ट डायमंड ज्वेलरी कोसम सर्च इस्तनारा कृष्णा ज्वेलर्स मी एक्सक्लूसिव डायमंड स्टोर।
13: टॉप क्वालिटी नेचुरल सर्टिफाइड डायमंड्स, GIA सॉलिटेयर्स, नेकलेसेस, रिंग्स, मरियो स्टनिंग पेंडेंट्स, कृष्णा ज्वेलर्स, ओक ट्री रोड, ईसलिन।
14: Namaste, New Jersey. Frontier Ras is now open in Edison, New Jersey. From handloom saris and bridal couture to menswear and ready-to-wear, discover a 70-year legacy of Indian craftsmanship. The USA flagship store of Frontier Ras is now open at 1655 Oak Tree Road, Edison.
15: Batting to kafi sare karte hain. Virat ek hi hota hai.
16: Kohli goes down the ground. Kohli goes out of the ground.
15: Filmon mein villain ko dhote to bahut hain, par Bachchan एक ही होता है।
17: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
15: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर वन, सिर्फ एक ही होता है,
18: एक ही होता है।
15: जैसे USA की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिसनरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।
18: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट नंबर 5.

शरारत। 20 हफ्तों तक जिस गाने ने नंबर वन पर रूल किया, आज पहली बार किसी और पोजीशन पर है। और इसका मतलब सिर्फ इतना नहीं है कि एक गाना नीचे आया है, इसका मतलब ये है कि इस काउंटडाउन को एक नया नंबर वन सॉन्ग मिलने वाला है। वैसे शरारत का मतलब होती है एक छोटी सी प्यारी सी गलती, अ प्लेफुल मिस्टेक। लेकिन बॉलीवुड में कुछ चीजों के साथ शरारत करने की इजाजत नहीं होती, कुछ फिल्मों के साथ, कुछ एल्बम्स के साथ, क्योंकि वो सिर्फ हिट नहीं होती, वो यादें बन जाती हैं। नंबर चार पर इस हफ्ते है चुनरी चुनरी फ्रॉम है जवानी तो इश्क होना है। गाना तो वापस आ गया लेकिन वो फीलिंग नहीं आई, और वही सबसे बड़ा चैलेंज होता है। क्लासिक को रिक्रिएट करना आसान है, उसकी रूह को वापस लाना नामुमकिन के बराबर। इसलिए आवारापन 2 को लेकर इतनी एक्साइटमेंट है। आवारापन सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, वो इमरान हाशमी की वो दुनिया थी जहां गाने खत्म होने के बाद भी हमारे दिलो दिमाग से निकल नहीं पाए। एंड देन वी हर्ड ऑफ आवारापन 2, जिसका नया गाना वे जुनून हमने पहली बार सुना।

Now on first listen, laga ठीक है. दूसरी बार सुना तो लगा एक सेकेंड जरा रुको. And then तीसरी बार I had goosebumps. ये गाना हिट होने की कोशिश ही नहीं कर रहा, ये आपके अंदर उतरना चाहता है, बिल्कुल स्लो पॉइजन की तरह, जहर की तरह. और तब समझ आया कि लोगों ने वो बात क्यों बोली थी. अखा बॉलीवुड एक तरफ, इमरान हाशमी एक तरफ. My special request of the week is the same team that is giving us Ve Junoon in Awarapan 2. Imran Hashmi aur unke saath is gaane ke composer Mithun. Aur isi combo ne ek aur gaane mein jadoo bikhera tha. Jab kai baar dil tootne ke bawajood phir mohabbat karne chalta hai. Special request song.

0: ऊंचा लंबा कट फ्रॉम वेलकम टू द जंगल। हाय, बॉलीवुड सीक्वल्स बहुत बनाता है, लेकिन इंसान, एक इंसान के सीक्वल्स बहुत कम देखने को मिलते हैं। इस हफ्ते रणवीर सिंह टर्न्ड 41 और मुझे एहसास हुआ कि पिछले 16 सालों में मेरी मुलाकात 3 अलग अलग रणवीर सिंह से हुई है।
1: मैं तो बॉलीवुड का सब्सक्राइबर रहा हूँ अपने बचपन से, लेकिन ओवर द इयर्स हमारी इंडस्ट्री में भी एवोल्यूशन आया है। जैसे कि पहला था, आज ऐसा बिल्कुल नहीं है। थिंग्स आर लॉट मोर कॉर्पोरेट, लॉट मोर स्ट्रीमलाइंड, प्रोफेशनैलिटी बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई है इंडस्ट्री में। तो मुझे खुशी है कि मैं ऐसे टाइम पर आया हूँ जब अलग टाइप की फिल्में बन रही हैं और इंडस्ट्री इतनी एक्सपैंड हो गई है। मैं आदि सर का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे अपनी पहली फिल्म दी, और मेरे तो बचपन का सपना पूरा हो गया जी, मैं क्या बताऊँ।
0: एक वो रणवीर था जो हमें बैंड बाजा बारात के बाद दिखा, नया, बेचैन, ओवर द टॉप। जैसे हर इंटरव्यू में वो दुनिया को ये यकीन दिलाना चाहता था कि मैं यहाँ टिकने आया हूँ।
2: क्या बोलूँ यार, इट्स अ वेरी ब्लेस्ड टाइम, अच्छा टाइम चल रहा है, टचवुड कुछ तो अच्छा किया होगा। बट ट्रूथ बी टोल्ड, इट्स वेरी ओवरवेलमिंग। इट्स लाइक लाइफ हाईलाइट आफ्टर लाइफ हाईलाइट। आई एम लाइक, व्हाट्स गोइंग ऑन, आई डोंट नो व्हाट एल्स टू डू बट सेलिब्रेट। And people are recognizing that now more than ever before. You know, they did kind of in like 13, 15. There was Lutera and Ramleela in 2013. Yeah. There was Dil Dharakne Do Bajirao Mastani in 15. Now it's like Khilji, Simba and Karni Boy. It's like, wow. So it's a conscious endeavor to, you know, showcase that versatility. And it's all happening. So I'm really happy about it.
0: Phir mila dusra Ranveer. Ab wo superstar ban chuka tha. Usse apne talent ka andaaza tha. Usse pata tha ki wo kitna achha actor hai. रॉनस की जगह यकीन आ चुका था, लेकिन उसकी एनर्जी अभी उतनी ही बड़ी थी जितना उसका एम्बिशन, लेकिन अब भी वो बेचैन था। और फिर आया तीसरा रणवीर, खामोशी, नो इंटरव्यूज, नो हेडलाइंस, नो एक्सप्लेनेशंस, सिर्फ एक फिल्म और उसके दो हिस्से जिसने दुनिया से बाकी सब कुछ कह दिया। अजीब बात है ना, करियर की शुरुआत में रणवीर चाहता था कि दुनिया उसे सुने, आज दुनिया उसे सुनना चाहती है, लेकिन मिल रही है तो सिर्फ खामोशी। I told you, आज we about to get a brand new number one song। लेकिन ये गाना brand new है नहीं, ये वो गाना है जिसे हमेशा number one होना चाहिए था, क्योंकि इसमें भी खामोशी है, एक गहरी वाली खामोशी। The number one song on the Mirchi Top 20. Number 1.

0: The Crown is now on the best song of the show. शायद इसी में इस गाने की सबसे बड़ी जीत छुपी है। इसने हमें याद दिला दिया कि हर चीज वायरल होने की जरूरत नहीं होती। कुछ फीलिंग्स, कुछ वाइब्स धीरे धीरे दिल में उतरती हैं और फिर वहीं रह जाती हैं। It's time to end this episode of the Mirchi Top 20, but फिर मिलूंगा। In fact, मैं भी वापस आऊंगा। So until the next time, Sureen, over and out.
1: Sureen ke saath, only on Mirchi. It's hot.

चीज कॉमन है, दोनों लैंग्वेज नहीं इमोशन समझते हैं. डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची और यौन दिखा विद यू टुनाइट ऑन क्लब मिर्ची. तो चाहे आप मेसी फैन हो, हालन फैन हो या बस गुड म्यूजिक का फैन, अगला गाना सबके लिए है.

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: Mirchi.
2: हेलो
3: हेलो बेटा नवनीत,
2: आप कौन?
3: पापा कहाँ हैं?
2: पापा तो बाहर हैं, आप बताइए।
3: बेटा ऐसा है, आपके पापा और मैं, हम हाँ। बचपन से बड़े अच्छे दोस्त हैं। मेरे को बता रहा था आशीष, आपके पापा ने बताया था मेरे को कि बेटा है, उससे बात कर लेना फोन पे कभी, उससे पूछ लेना। मेरे को आपके पापा ने कहा था कि मेरा बेटा कभी कभी शरारत भी करता है, चलो हर बच्चा कर देता है, लेकिन आशीष दिल का बड़ा अच्छा है, क्योंकि मेरे बचपन का दोस्त है ना आपका पापा, वो किसी को डांट नहीं सकता। अच्छा बेटा, तुम्हारे पापा ने मेरे से ये कहा था आशीष ने कि तू ना नवनीत को फोन कर लियो, क्योंकि वो तो कभी डांटता नहीं है आपको किसी भी बात पे। तो अभी अभी आपके पास एक मिनट है क्या?
2: लेकिन आपको काम क्या है?
3: बस एक मिनट तक मेरे को आपको डांटना था।
2: पापा ने कहा था?
3: चुप कर! पापा ने कहा था, मेरे दोस्त का पीछा ले रखा है तूने, उठा के पटक के रख दूंगा, बता रहा हूँ मैं तेरे को।
2: क्या हुआ अंकल?
3: बेटा आपके पापा ने कहा था मेरे से कि वो टाइम पे वो निकल गए हैं, उनको कुछ जरूरी काम था, आपको डांटने का दिल कर रहा था तो वो डांट नहीं पाए, तो मेरे से कहा था आप डांट देना मेरे, दोस्त तो दोस्त है ना हम आपस में।
2: अब मुझे क्यों डांट?
3: चुप कर!
2: किस तरह बात कर रहे हैं मेरे से? आप मेरी बात सुनो, मैं पापा से बात कर लूं।
3: पापा से बात करेगा दांत तोड़ दूंगा, ऐसे बैठे बैठे पापा की तरफ से डांट रहा हूँ मैं, क्यों कर रहा है तूने?
2: पापा को ऐसे किस बात का मतलब, मुझे ये भी नहीं
3: पापा को किस बात का बुरा लगा, इससे मेरे को क्या लेना देना है? असल में पापा आपके बड़े बिजी हैं आज, तो मेरे को मैसेज किया था उन्होंने कि वह उसको डांट देना।
2: लेकिन बुरी क्या
3: लगी? अंकल कल देखो एक मारूंगा।
2: बदतमीजी क्या करी
3: थी? ये अपने पापा से पूछना ना, मैं आपके बीच में क्यों पढ़ूं?
2: कह रहा हूं मैंने कोई ऐसी बदतमीजी की नहीं इन दिनों में।
3: एक मरना घुमा के मैंने की नहीं।
2: ठीक है, मैंने वो भी कर लिया, मैं बदमाशी।
3: ठीक है, मेरे साथ बोल कुकड़ू को बेटे।
2: क्या बोलूं?
4: नवनीत कुकड़ू को बोलो, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, तुम्हारे पापा ने मुझे तुम्हारा नंबर दिया था, तुम रेडियो मिर्ची पे।
2: आपको पापा ने ऐसे कब बताया था मेरा मुर्गा बनाने को?
3: चुप कर! मारूंगा घुमा के। पापा ने कब बताया था मुर्गा बनाने को?
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।
6: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
7: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
8: जय गुरुदेव। गायत्री चेतना सेंटर पिस्कैटोपे की ओर से आप और आपके परिवार को गुरु पूर्णिमा एवं रुद्राभिषेक महोत्सव में स्नेहपूर्ण आमंत्रण। शनिवार 1 अगस्त को सुबह 10 बजे शिवजी रुद्राभिषेक और शाम 5 बजे विराट दीप यज्ञ। रविवार 2 अगस्त को सुबह 10 बजे 251 कुंडीय गायत्री महायज्ञ। शांति कुंज हरिद्वार के पूज्य संतों द्वारा वैदिक विधि से अनुष्ठान और डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी की पावन उपस्थिति। अधिक जानकारी के लिए 7323578200। जय गुरुदेव।
9: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
10: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
11: नो
12: कार खराब मतलब दिन और मूड दोनों खराब, इसीलिए अपनी कार को सही केयर दो। राज ऑटो सेंटर विद 30 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, द फैमिली ओन्ड ऑटोमोटिव सेंटर प्रोवाइडिंग टॉप नॉच सर्विसेज बाय ASE सर्टिफाइड टेक्नीशियंस। विजिट राज ऑटो सेंटर एट 1400 जर्सी एवेन्यू, नॉर्थ ब्रंसविक टाउनशिप, 1213 न्यू जर्सी 27, सोमरसेट ऑटो बॉडी शॉप, 700 हैरिस एव, मिडिलसेक्स। इफ यू आर विद राज ऑटो सेंटर, यू आर इन गुड हैंड्स।
6: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
7: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
13: Tera kya hoga, Kalia?
14: Sardar, maine aapka namak khaya, Sardar.
13: Ab, mirchi kha.
15: Radio Mirchi, it's hot.
16: Ladies and gentlemen, we are gonna go, we are...

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: आ जाओ आ जाओ, आगरा वाले, दिल्ली वाले, मुंबई वाले, चेन्नई वाले, इंदौर वाले, जो भी जहां से भी है, सबके लिए डिस्काउंट है, डिस्काउंट।
2: शो स्ट्रीट वाला है पर ऑफर एलीट वाला है, रास्ता चाहे जो हो, मंजिल है विरानी ज्वेलर्स, क्योंकि वहां मिल रहा है 0% मेकिंग चार्जेस ऑन 22 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी।
3: विजिट viranijewelers.com, गेट द मैक्सिमम आउट ऑफ मिर्ची फ्रीडम फेस्टिवल फ्रॉम 4 जुलाई इंडिपेंडेंस डे टिल ऑगस्ट 15th इंडिपेंडेंस डे, सिर्फ फ्रीडम ही फ्रीडम,
4: ओनली ऑन 92.7 FM, रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी। इट्स हॉट।
5: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
6: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
7: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, लेकिन शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए, इसीलिए लायन मॉर्गेज, the king of mortgage industry.
8: Since over 15 years, Lion Mortgage has been assisting first-time home buyers with loan. Their experience and knowledge of mortgage industry really helps clients to get the best possible deals on refinance. A professional service with quick, accurate and impressive follow-up. Lion Mortgage offers special zero closing cost on refinance options.
6: For more information, call 732-339-3155. That is 732-339-3155.
9: कुछ आवाजें सिर्फ कानों को नहीं सीधे आत्मा को छू जाती हैं। दिव्य और पवित्र आरती अब मंदिर से सीधे आप तक। मंगल आरती प्रेजेंटेड बाय आरके जूल्स, बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस, रोज सुबह 6 बजे सिर्फ 92.7 FM रेडियो मिर्ची पर, आल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2।
10: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
11: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
10: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर,
11: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
10: मिस इंडिया आज ही विजिट करें, 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इजलिन।
12: Searching the best diamond jewelry on Oak Tree Road? Krishna Jewelers is your exclusive diamond store.
13: Top quality natural certified diamonds, GIA solitaires, necklaces, stunning pendants and rings. Krishna Jewelers, Oak Tree Road, Islin.
14: Gulabi saadi ani lali lal la.
15: T-Series present The Mall 4. Starring Ajay Devgan, Arshad Varsi, Ritesh Deshmukh and Javed Jaffrey. Directed by Indra Kumar. Releasing on the 10th of July. A complete family entertainer.
16: Enjoy your golden days with Kalyan Jewelers. Get up to 50% off on making charges. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Iselin, New Jersey. Conditions apply.
4: 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
17: It's 7:30 PM. Mirchi time check. RK Jewels. Get amazing deals on exquisite collection on wide range of flawless and stunning jewelry collection. RK Jewels. Best quality, best price.
18: Ladies and gentlemen, fasten your seatbelts and wait for the no smoking sign. We are gonna go. We are gonna go. We are gonna go.
19: On a ride.
20: Club Mirchi with Oyon Tikka and DJ Richard.

इस कॉमन है दोनों लैंग्वेज नहीं इमोशन समझते हैं. डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ऑल योर दिगा विद यू टुनाइट ऑन क्लब मिर्ची. तो चाहे आप मेसी फैन हो, हालन फैन हो या बस गुड म्यूजिक का फैन, अगला गाना सबके लिए.

बैक वंस अगेन. फुटबॉल का रूल सिंपल है, 90 मिनट्स में कुछ भी हो सकता है. और वीकेंड का रूल एक अच्छा गाना पूरा मूड बदल सकता है. एंड दैट इज व्हाट वी डू ऑन क्लब मिर्ची. सो कीप डांसिंग, कीप स्माइलिंग, वी जस्ट गॉट स्टार्टेड. डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ऑयो ऑन थिंक आउट विद यू टुनाइट.

वीकेंड रेजोल्यूशन, लेस स्ट्रेस, मोर बेस, ऑफिशियल मेल्स मंडे देखेंगे. आज सिर्फ प्लेलिस्ट, सब पार्टी प्लान्स डिस्कस होगा ऑन क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची और योंतिका.

यू नो हर स्क्वाड में एक फ्रेंड होता है जो हर गोल पे कमेंट्री करता है और एक जो सिर्फ रील्स बनाता है. आप कौन सी कैटेगरी में आते हो मुझे बताना है तो आ जाओ मेरे इंस्टाग्राम पे Ayontika AYANTIKA. I'm a gong and here's your next song on Club Mirchi.

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: वाओ, यही तो है मेरा ड्रीम लहंगा।
4: हर प्यारी ब्राइड का ये सपना पूरा करें। मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
3: एक्सप्लोर आवर स्टनिंग ब्राइडल लहंगास और एक्सक्लूसिव रिसेप्शन वेयर।
4: प्लस ग्रूम्स के लिए रॉयल शेरवानीज।
3: मिस इंडिया आज ही विजिट करें 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इजलिन।
5: Enjoy your golden days with Kalyan Jewelers. Get up to 50% off on making charges. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Iselin, New Jersey. Conditions apply.
6: This hour is brought to you by Raj Jewels.
7: Tera kya hoga, Kalya?
8: Sardar, maine aapka namak khaya, Sardar.
7: Ab mirchi kha.
9: Radio Mirchi. It's hot.
10: Ladies and gentlemen, we are gonna go. We are-

सेकंड क्लब मिर्ची में एक ही स्ट्रेटजी चलता है, गुड वाइब्स ओनली. मैच का स्कोर जो भी हो, टुनाइट एवरीवन इज विनिंग बिकॉज द प्लेलिस्ट इज एब्सोल्युटली ऑन फायर थैंक्स टू डीजे रिचर्ड. आई एम योर होस्ट मिर्ची ऑन योर ओन टाइम एंड दिस इज क्लब मिर्ची, द

शूट आउट हो या अंताक्षरी, प्रेशर सब जगह होता है। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि यहाँ मिस भी किया तो अगला गाना आपको फिर डांस करवा देगा। ऑफ कोर्स ऑन क्लब मिर्ची, डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ऑयो, दे गा विद यू टुनाइट।